उत्प्लन हो जाता है। उक्त रक्तचाप का होना, बीपी की प्रॉब्लम्स जिन्हें ज्यादा होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यह भी कारण बताता है आगे चल करके डायबिटिक होने का। साथ ही साथ हम यह बता दें कि शुगर लेवल तेजी से क्यों बढ़ता है। मिठाई, केक, पेस्ट्री और शुगरी ड्रिंक यानी कि जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, अन्य मीठे पदार्थ जिसको हम अगर लगातार लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है मैदा और रिफाइंड या आटे से बनी चीजें। मैदे से बनी चीजें भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा असंतुलित करती हैं। सुबह जल्दी उठना या इंसुलिन शेड्यूल, खुराक सही रूप से न लेना। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो इंसुलिन की खुराक ठीक से नहीं लेते हैं तो भी वह आगे चल करके ज्यादा डायबिटिक हो जाते हैं। समय पर नाश्ता न करना, ये सबसे बड़ा कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों को, कम एज के बच्चों को भी सुनने में आता है कि वह डायबिटिक हो गए हैं। सुबह उठकर के सर्वप्रथम हमें अपने लिए अपने संपूर्ण आहार वाला नाश्ता लेना चाहिए। कहा जाता है कि नाश्ता हमें राजाओं की तरह करना चाहिए। दोपहर का जो नाश्ता होता है, दोपहर का खाना हम साधारण रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमें रात का भोजन बिल्कुल हल्का लेना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत सवेरे ही होती है, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें चक्कर आना, हमें कमजोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं डायबिटिक होने के। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर में शुगर लेवल बढ़ने से कुछ जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हम दिन ब दिन धीरे धीरे ज्यादा हाई लेवल पर शुगर या फिर डायबिटिक होने लगते हैं। शुगर लेवल बढ़ने से टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए आप रात को जल्दी खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें और साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटिक के बारे में और उनके लक्षण। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाती है तो आजीवन बनी रहती है, जिसको हम कभी भी आजीवन में इसका उपचार तो करते रहते हैं लेकिन ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायबिटिक और मधुमेह है क्या। मधुमेह एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिसे शुगर डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमने आपको इसके कारण तो बता ही दिए हैं, आइए अब हम आपको योग के माध्यम से इसे औषधि की ओर कैसे ले जाते हैं इस पर बात कर लेते हैं। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सर्वप्रथम अभी हमने बताया कि सवेरे उठ करके आपको नित्य क्रिया करने के बाद में एकांत चित कहीं स्थान पर बैठ जाना है और आपको 3 प्राणायाम मुख्य रूप से शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए करना है। सबसे पहला प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम इसलिए क्योंकि अभी हमने लक्षणों के बीच में एक बात बताई थी कि तनाव और खराब खानपान, तो तनाव के कारण हम अपने आप को असंतुलित कर पाते हैं, यानी कि असंतुलित हम हो जाते हैं। तनाव को कम करने के लिए प्रणव प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है, एक ऐसी औषधि है जिसे करने के बाद में हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं। और साथ ही साथ जब हम एकांत चित होकर के इस योग मुद्रा में बैठते हैं तो हमें अपने आप को भी एक शांति और एक सुदृढ़ होने की कला मिलती है। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वैसे तो श्वास से निर्मित प्राणायाम है। आती जाती श्वास को किस तरीके से नियंत्रित करना है अनुलोम विलोम में बेहतर बताया जाता है।

साथ ही साथ अनुलोम विलोम करने से हमें पेट के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी ठीक करने के लिए कई ऐसे उपचार और लक्षण भी बताते हैं। अनुलोम विलोम को करने के बाद में हम तीसरा प्राणायाम और मुख्य प्राणायाम करते हैं, अग्निसार। वो इसलिए क्योंकि शुगर लेवल जब हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो हमारी पेट की अग्नि भी उस समय हाई लेवल पर बढ़ी रहती है। सवेरे जब आप उठें और नित्य क्रिया करने के बाद में ये तीसरा प्राणायाम लगातार 1 से 1.5 महीने आप करते रहें तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी या आपका शुगर ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से, पर आपको आने वाली छोटी छोटी तकलीफें जो शुगर से संबंधित होती हैं, डायबिटिक से संबंधित होती हैं, वह आपके रोजमर्रा के जीवन में नहीं होंगी। मैंने कई सीरीज में प्रणव प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अग्निसार बारी बारी कई बार इसकी प्रक्रियाओं को बताया है, लेकिन हम फिर से आज हम जब डायबिटिक पेशेंट को लेकर के बात कर रहे हैं तो हम तीनों का एक संक्षिप्त परिचय भी देते जा रहे हैं। सबसे पहला प्रणव प्राणायाम, जो कि आती जाती श्वास को महसूस करना है और बिल्कुल शांत चित होकर के बैठ जाना है। यह हमारा पहला प्राणायाम जो कि प्रणव प्राणायाम, इससे हमारा मानसिक तनाव और हमारी आंतरिक सभी शक्तियों को शांत कर देता है। दूसरा अनुलोम विलोम, दाई नौसिका को बंद करके बाई नौसिका से सांस छोड़ना और बाई नौसिका से सांस लेते हुए दाई नौसिका से सांस को छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। इसमें हमें श्वासों की गति को नियंत्रित करते हुए अपने आप को एकाग्र चित होकर के श्वास की तरफ ध्यान देते हुए पेट की गतिविधियों को भी मध्यम गति से चलाते रहना है। तीसरा प्राणायाम जो कि बहुत मुख्य है वो है अग्निसार। अभी अभी हमने बताया कि अग्निसार यानी कि पेट की अग्नि को शाना। आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि जब हमें तेजी से भूख लगती है तो हमारे पेट के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होने लगती है। हमें यह महसूस होता है कि इस समय हमें जो भी मिले हम उसे खा लें। इसका साफ साफ कारण ये होता है कि उस समय हमारी पेट की अग्नि जो है वह ज्वलनशील होकर के तेजी से हो जाती है, जिसके कारण से हमारा शुगर लेवल भी उस समय बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम कुछ न कुछ खाने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी जो पेट की अग्नि है वह शांत होने लगती है। सवेरे उठ करके अग्निसार करने से यह अग्नि पूर्ण रूप से इतनी तीव्र गति से कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। भूख जो कि समय पे लगती है, समय पर भूख लगने के बाद में आप आराम से खाना खाएंगे और फिर आपको इतनी ज्यादा बेचैनी उलझन नहीं होगी। अग्निसार कैसे करना है आइए अब हम बताते हैं। शांत चित होकर के हाथों की मुद्रा को बनाते हुए हम श्वास को एक साथ यानी कि तीव्र गति से श्वास को लेते हुए श्वास को रोक लेंगे और उसके बाद पेट को अंदर बाहर चलाते हुए इस गति को 1 से 1.5 मिनट तक करते रहेंगे। यह है अग्निसार। अग्निसार प्रक्रिया को हम 1 से 1.5 मिनट तक प्रारंभिक अवस्था में करेंगे और धीरे धीरे हम इसकी गति को बढ़ाते जाएंगे। तो ये था दोस्तों, आज शुगर लेवल को अगर बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करने के 3 औषधि रूप में प्राणायाम। अगर हम इसे नियमित रूप से करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमें जो बेचैनी और बहुत ज्यादा जो उलझन होती है वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वह सामान्य रूप से होने लगेगी। तो आइए दोस्तों, फिर से हम मिलेंगे एक नई औषधि के साथ में। तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गर्मियाँ प्रचंड रूप में आ गई हैं। कहा जाता है इस गर्मियों में हम अगर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो अपने आप को किस तरीके से हम महफूज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी मानना जरूरी है कि अगर हम इन गर्मियों में अपनी और अपने सभी की सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। पानी का त्वचा के लिए कई तरह से उपयोग किया जाता है। नियमित रूप से पानी पीना त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। जी हाँ,
आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के बारे में। हमारी त्वचा एक पतली सी झिल्ली की तरह होती है, जो कि जैसे कहते हैं ना कि अगर एक फूल को हम यूं ही तोड़ करके रख देते हैं तो वो अमूमन एक से दो दिन सही सलामत रहता है, लेकिन उसके बाद वो मुरझाने लगता है। उसकी पत्तियां अलग अलग होने लगती हैं, पत्तियों में सिलवट सी आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि अंकुरित बीज भी बिना पानी के यूं ही खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी स्किन की जो पतली झिल्ली होती है वो भी पानी से निर्मित बनी होती है। पानी हमारी स्किन के लिए इतना उपयोगी होता है जैसे एक मछली जल में रहती है और अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए ही नहीं जबकि हमारी स्किन के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दिन पानी ना पिए और उसके बाद अगर हम पानी को उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन में एक कालापन सा आने लगा है, एक मुरझाहट सी आने लगी है। त्वचा में एक निखार जो हमारा एक दिन पहले बना होता है ठीक बिल्कुल वैसे ही जर से नीचे हो जाता है। उसका कारण आपको पता है? क्योंकि पानी हमारे लिए स्किन में हाइड्रेट का काम करता है। जैसे पौधों में, पत्तियों में एक पानी की अगर हम छिनकार भी कर देते हैं तो फिर से वो जीवित हो उठते हैं, ठीक वैसे ही हमारी स्किन में पानी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जब हम पानी से अपना मुंह धुलते हैं तो हमारा चेहरा पहले से खिल उठता है, ठीक वैसे ही एक अगर पौधे की हम जांच पर रख करें तो मैं आपको परीक्षण बताती हूँ। अगर आपने एक पौधा यानी कि एक फूल आप कहीं से लेकर के आए हैं और आपको चाहिए कि यह सुबह तक मुरझाए नहीं, आपने एक गिलास लिया जिसमें वो डंठल सहित उस गिलास में डाल के आपने रखा। बचपन में ये परीक्षण हम लोगों ने बहुत किया है लेकिन आज इस परीक्षण को हम अपनी त्वचा से तुलना करके बताते हैं। और दूसरे गिलास में सिर्फ और सिर्फ आपने वो फूल रख दिया है, सुबह उठते ही आपने यह परीक्षण देखा कि जिसमें जो डंडी पानी में पूरी रात थी वह ऊपर ही ऊपर उसका फूल खिला हुआ मिलता है, लेकिन जिस गिलास में पानी नहीं था वह फूल बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है। ठीक वैसे ही हमारी स्किन में यदि पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं होता है तो हमारी स्किन की सभी कोशिकाएं मृत होती जाती हैं। फिर हम उसके बाद जितनी भी कॉस्मेटिक की क्रीम लगा लें, महंगी महंगी फेशियल या कई चीजों का उपयोग क्यों ना कर लें, पानी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आप सोच रहे होंगे कि आज योगिनी समता ने ये टॉपिक क्यों उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि अमूमन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हम कहीं ना कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर गई और पानी की कमी को महसूस किया। शाम होते होते मेरी स्किन पे वो कमी दिखने लगी। पानी, क्योंकि हम इधर उधर दौड़ धूप में घूमने फिरने में पानी की मात्रा हमने कम कर दी। शाम तक देखे तो हमारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। फिर हमने पानी पीना शुरू किया और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हमारा जैसा चेहरा था वैसा ही हो गया। फिर मैंने ये परीक्षण किया कि आपने देखा कि एक दिन, आधे दिन यदि आपने पानी नहीं पिया है तो आपका चेहरा किस तरीके से मुरझा सकता है। चेहरे की कई कोशिकाएं होती हैं, कई नस नाड़ियां होती हैं, जिसमें हमें पानी को पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक वैसे ही सर्दियों में हम पानी की मात्रा को कम कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की मात्रा वही बनी रहती है लेकिन काफी लोग

अंधेरों से उजालों की ओर, भटकाव से सत्य की ओर और भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ये है पहली किरण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आज की इस पावन सुबह में हम बात करेंगे उस संत की जिसने शब्दों से नहीं बल्कि सच्चाई से दुनिया को आईना दिखाया, जिनकी वाणी में सरलता थी पर अर्थ गहरे, जिनके दोहों में जीवन का सार छुपा है। जी हाँ, आज की पहली किरण समर्पित है संत कबीरदास जी को। कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये कहते हैं कबीरदास जी। तो दोस्तों, आज की सुबह हम खुद से मिलने की कोशिश करेंगे, कबीर की नज़र से दुनिया को समझेंगे और अपने भीतर छुपे सत्य को पहचानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं, ये है आत्मा जो जगाने वाली है आपकी, हमारी, हम सबके भीतर की वो किरण जो कहलाती है पहली किरण।

संत कबीर दास जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1518 में, यानी कि 15वीं सदी के एक महान भारतीय कवि, रहस्यवादी और समाज सुधारक थे हमारे कबीर दास जी। इन्होंने निर्गुण राम की भक्ति पर जोर दिया और जाति भेद, अंधविश्वास व आडंबरों का कड़ा विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, जो कि एक पुस्तक का जब उसको रूप दिया गया और नाम रखा गया बीजक, मुख्य रूप से सधुक्कड़ी भाषा में है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा का हिस्सा है। इनके जन्म की बात की जाए तो माना जाता है 1398 में काशी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ, लहरतारा तालाब के पास। जुलाहा दाम्पत्य नीरू और नीमा द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और मगहर में 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और अगर इनके भाषा शैली की बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए, और साथ ही साथ अवधी, पंचमेल, खिचड़ी, बोलचाल की भाषा को इन्होंने अपनाया है। चलिए इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं के द्वारा रचित एक निर्गुण सुनते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण भोरे भोरे की सुबह की, और उसमें आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। तो इनकी अगर सिद्धांत और शिक्षाओं की बात करें तो ये निराकार ईश्वर को मानते थे, यानी निर्गुण भक्ति करते थे। कबीर ईश्वर को निर्गुण मानते थे जो हर कण में व्याप्त है, ना कि केवल मंदिर या मस्जिद में। और इसके साथ में उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर पाखंड का कड़ा विरोध किया। कबीर ने प्रेम, भाईचारे और सादगीपूर्ण जीवन पर जोर दिया। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया। कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। अगर मैं ज्ञान की महत्ता की बात करूं तो इनकी एक रचना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी सज्जन की जाति नहीं उसका ज्ञान देखना चाहिए, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इसी प्रकार इन्होंने जब प्रेम पर अपनी पंक्ति दी तो वो कुछ इस प्रकार थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ ले वही सच्चा ज्ञानी है। और सच में अगर आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में प्रेम है ना, तो उससे आप सब कुछ सरल बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ज्ञान इनकी पिटारी से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी ने ज्ञान, प्रेम के अतिरिक्त और भी कई सारे विषयों पर अपनी बातें कही हैं। उनमें से एक और है, जी हाँ, हम सभी इंसान हैं ना, और इंसानों में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है आचरण को लेकर। तो आचरण के बारे में कबीरदास जी का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैंने दूसरों में बुराई खोजी तो कोई नहीं मिली, लेकिन जब मैं खुद के अंदर झांकने को चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। और ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे पहले चार उंगली हम पे खुद पे उठती है। तो बिल्कुल सही कहा हमारे कबीरदास जी ने। और किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने सादगी का महत्व बताया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं जिससे किसी का भला ना हो सके। बिल्कुल, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बड़े बनते हैं तो सच में बड़ा वही होता है जिसका हृदय विशाल हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो दूसरों का भला करना जानता हो। चलिए फिलहाल के लिए एक निर्गुण सुन लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कबीरदास जी की, और इनका कहना है कि धर्म हमें जोड़ने के लिए बना है, लेकिन जब वही धर्म हमें बांटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म नहीं अहंकार निभा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे। यानी अंत में सब एक ही मिट्टी में मिल जाना है, फिर ये ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किस बात का, सोचने की बात है। तो आप सोचिए, तब तक हम सुन के आते हैं प्यारा सा निर्गुण।

जी हाँ दोस्तों, आप शो सुन रहे हैं पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम में, वो हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी की अगर मैं बात करूं तो उनके हर एक पहलू पे जिंदगी के बड़े ही चर्चे हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय और मुद्दा रहा है इनकी जीवन का, वो थी इनकी मृत्यु। वो क्या थी, चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। और ये कहानी कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर दास जी ने पूरी जिंदगी एक ही बात सिखाई, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। लेकिन जब उनके अपने जीवन का अंतिम समय आया तो वही समाज जिसे उन्होंने जोड़ा था दो हिस्सों में बट गया। कहानी कुछ यूं है कि जब कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे तो हिंदू अनुयायी बोले, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और मुसलमान अनुयायी कहने लगे, नहीं, उन्हें दफनाया जाएगा इस्लामी तरीके से। बहस बढ़ने लगी, विवाद गहरा होने लगा। और वो संत जिसने जीवन भर भेद मिटाने की कोशिश की, उसके जाने के बाद भी भेद सामने खड़ा था। तभी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार, वो चमत्कार आप विश्वास भी नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं क्या हुआ। जब चादर हटाई गई तो वहाँ शरीर था ही नहीं, सिर्फ फूल का ढेर था। दोनों पक्ष शांत हो गए और समझ गए कि कबीर का अंतिम संदेश क्या था। फिर क्या हुआ, आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमान भाइयों ने, और दोनों ने अपने अपने तरीके से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, कबीर जी ने जाते जाते भी यही सिखाया कि हम चाहे किसी भी धर्म से जन्म लें, लेकिन अंत में हम सब एक ही सच्चाई के हिस्से हैं। वो शरीर नहीं, विचार बनकर जीना चाहते थे, और शायद इसलिए वो फूल बनकर खुशबू बन गए।

दोस्तों, कबीर अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोध में हमेशा आपको दिख जाएंगे।

की उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में उनका अनुसरण पाया जाता है। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मौला कहा। क्षिति मोहन सेन जी ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ बताए हैं। पहला कबीर साखी। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता यानी आत्म को यानी आत्मा को और परमात्मा को समझाने का प्रयास किया है। कबीर बीजक कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से सन 1464 में किया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं जो कि है रमायणी यानी रामायण, चौपाई और दोहे का पद जो कि लिखित है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में, सबद ये गेय पद है जो कि ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ही रचित है, साखी यानी साक्षी पद जो कि दोहों में रचित है और इसकी भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त कबीर शब्दावली। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। अगला है कबीर दोहावली। इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे दोनों सम्मिलित हैं। कबीर सागर ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। दोस्तों कबीर पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखित किया गया यानी संग्रहित किया गया। उनके 2 शिष्यों भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और कबीर की वाणी को विश्व पटल पर ले गए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। वाकई बहुत महान हस्ती थी कबीर साहब। आइए चलते हैं इन्हीं के एक और निर्गुण की ओर।

जी हाँ दोस्तों, कबीर साहिब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहिब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इनका अंदाज और इस बात का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है तो उनके दोहों से आपको साफ साफ लग सकता है। जैसे मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों से उन्हें लिखवाया। और कई दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर के अवतार थे। आप इस बात का अनुमान इनकी मृत्यु की कहानी से बेशक लगा सकते हैं। अगर चमत्कार है नहीं, अगर वो ईश्वर थे नहीं, तो फिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम देखा जाता है और इसकी महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। वे कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरी जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहिब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहिब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहार, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार, माया पापड़ी सब जग तो फांधे पड़िया गया कबीरा काटी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो पापिनी माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है ना, इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर उसे काटकर साफ बाहर निकल आए हैं। हरि भक्ति पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए फिर एक और निर्गुण की ओर आगे बढ़ते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भोरे भोरे का भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और अब बारी है उन प्रसिद्ध दोहों की जिससे चलते चलते हम कुछ ज्ञान लेके चलेंगे। वाकई बहुत कुछ है जो हम अपने जीवन में अगर कबीर दास जी के जीवन से उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और वाकई जीने लायक हो जाएगा। चलिए चलते हैं उन दोहों की ओर जो आज भी उतना ही जीवंत है जब ये लिखित हुआ था। कबीर हार चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है, जिसको मेरे द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती थे, वर्तमान में उसके कुल वंश यानी उसके वंशजों की अगर बात करें तो उसमें कोई भी उसके घर में इस वक्त दीप जलाने के लिए भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थाई है ही नहीं। है ना कितनी गहरी और सच्ची बात।

कबीर दास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर कबीर दास जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो लेकर घूमते हैं पर उनके मन का भाव कभी नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरकर कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ ताकि जीवन सरल हो सके। इसके अतिरिक्त मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता, जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं प्राप्त होता और पछताने के अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए आप जब तक हैं सत्कर्म करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन के साथ साथ सभी के जीवन में आनंद भरें। इसके अतिरिक्त इनका एक और दोहा है कि पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर साहिब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सदाचार करें, सदाचरण अपनाएं और अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं और इस समाज में कुछ तो नेकी करके जाएं।

दोस्तों, आज की सुहानी सुबह में हमने संत कबीर दास जी के शब्दों में छुपे जीवन की सच्चाई और उसके अर्थ को महसूस किया। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो करना है अभी करना है, खुद को बदलना है तो आज से ही शुरू करना है। जिंदगी की इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी भरी जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने भीतर झांकना है, क्योंकि असली शांति हमारे खुद के भीतर है, बाहर नहीं, आपके अंदर ही। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेती हूं आपसे विदा। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद जरूर लेकर आती है। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई रोशनी के साथ आपके अपने शो पहली किरण में। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागते रहिए और सुनते रहिए रेडियो गैनेसलेटी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा तो सब राखा, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉग कार जो इतना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, और ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल आज जो तारीख है वो महज तारीख नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है। ऑब्वियस सी बात है, हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। सिर्फ भाई बहन का जो एक सेफ्टी का, जो एक जिम्मेदारी का, जो एक हिफाजत का त्यौहार है वो ये ना हो करके, बल्कि हर उस चीज़ के लिए जिसकी हम हिफाजत करते हैं, जिसकी हम रक्षा करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हर उस चीज़ के लिए, हर उस शख्स को लिए आज का ये ख़ास दिन रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, इतने मुबारक दिन, इतनी प्यारी बातें हैं, इतना कुछ आज होने वाला है, बहुत सारा सेलिब्रेशन आज होने वाला है, एक साथ संग मिलकर के हम करने वाले हैं आपके साथ आपके आज के इस मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल इस वक्त जो है तेज़ी से घर घर में रक्षाबंधन का जो सूत्र है, रक्षा सूत्र, वो बांधा जा रहा है, क्योंकि ये जो वक्त है, किसी ने कल बताया था मुझे कि भाई मॉर्निंग का टाइम है। फिलहाल अब ये कमेंट करके आप बताने वाले हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, अगर आप अपने भाइयों की बहनें हैं तो बताइए कि भाई हाँ, भाइयों की कलाइयों पर बांध दिया है, और अगर आप भाई हैं तो क्या बहनों ने कलाइयों पर बांधा आपके रक्षा सूत्र? कुछ भी है तो ज़रूर मुझे अपडेट करते रहिए, क्योंकि आज जो आप अपडेट करते रहेंगे वो हम बताते रहेंगे, और वैसा ही हम आगे चलते रहने वाले हैं। और काफ़ी कुछ है जो आज बताने को है, जो आज सुनने को है, समझाने को है, और बहुत सारे सॉन्ग्स जो हम डेडिकेट कर सकते हैं अपनी सिस्टर्स को, सिस्टर्स कर सकती हैं अपने ब्रदर्स को। सो फिलहाल 10 बजे से कॉल इन प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर देंगे। जिन किसी को भी कॉल करना होगा वो स्टूडियो के नंबर 6393164329 पर कॉल कर सकेंगे 10 से 11 गुड मॉर्निंग गोंडा में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का दिन ऐसा होता है जब हम सेलिब्रेट करते करते बहुत सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं या यादों में रहते हैं, और वो बयां करना चाहते हैं, किसी से शेयर करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपका दोस्त, आपके संग इस शो में, जिनसे आप साझा कर सकते हैं, जिससे आप बता सकते हैं कि फ़िलहाल क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में, और क्या यादें जुड़ी है आज से, आज के इस त्यौहार से, और या फिर उस रिश्ते से जिसको लेकर के आज का ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार है ना। बड़ी खूबसूरत सी बात है। तो चलिए भाई, जो भी आप सोच रहे हैं और जो भी आपके जहन में चल रहा है उसको लेकर फटाफट से आप बयां कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है जब आपको हम बताने वाले हैं आज का थॉट ऑफ द डे।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

क्या बात है भाई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो थॉट ऑफ द डे आ रहा है वो आज की कई बार सिचुएशन से मैच हो सकता है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारी ज़िंदगी में, भाई बहनों का भी होता है और बहुत सारे झगड़े भी होते हैं हर रिश्ते में। सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी होता है, लेकिन कई बार ये जो लड़ना झगड़ना है जो बड़ी खूबसूरती से होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, यानी काफ़ी सीरियस हो जाता है कि महीनों सालों बात ही नहीं होती है। एंड लिटरली ऐसा होता है कि बहुत दिक्कतें हम लोग आपस में पैदा कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं भाई बहनों के बीच में, जिसको लेकर स्पेशली डेडिकेटेड है आज का ये थॉट ऑफ द डे कि जब तक किसी बात का प्रमाण ना हो उसे अपने मन की सच्चाई नहीं बनाना है, क्योंकि बेबुनियाद जो शंकाएं हैं मन को सबसे गहरे घाव देती है। जी हाँ, जब तक किसी बात का सबूत ना हो उसे मन की सच्चाई मत बनाइए, बेबुनियाद शंकाएं मन को सबसे गहरे घाव देती है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। आज का थॉट ऑफ द डे, किसी भी रिलेशन में अगर दूरियां आई हैं, कोई शक है कि इसलिए किया था, ऐसा किया गया था, तो आज का ये थॉट ऑफ द डे आपसे सीधे सीधे रिक्वेस्ट करता है कि भाई किसी भी बात को जब तक उसका प्रमाण ना हो, जब तक उसका एविडेंस ना हो, तब तक आप उसको सच मत मानिए, क्योंकि जो बेबुनियाद शक होता है, शंकाएं जो होती हैं, अजम्पशंस जो होते हैं, वो बहुत गहरे घाव देती है। और ये किसी भी रिलेशन में हम देखे हैं, लेकिन आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं भाई बहनों के उस रिलेशन के बीच में जहाँ पे किसी भी तरफ से अगर शंका आ गई है, अजम्पशंस किए जा रहे हैं, वो भी बेबुनियाद है, बिना किसी प्रमाण के, तो वहाँ पर वो रिश्ता ख़राब हो ही जाता है। लेकिन आज का चूँकि दिन ऐसा है जब हम सारी चीज़ें भूल करके और बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और वो सारी चीज़ें मिट जाती है, अगर ऐसा कुछ होता भी है। बाकी तो इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता है, ऐसा लगता है भाई तो आज के दिन थोड़ा सा डरे ही रहते हैं कि बहन क्या मांग लेगी, भैया लाके देना ही पड़ेगा। एंड लिटरली बड़ा मज़ेदार ये फेस्टिवल होता है काफ़ी ज़्यादा। मैंने बचपन से अभी तक बहुत बार इसको सेलिब्रेट किया है। इतना अच्छा लगता है कि भाई कौन सी ख्वाहिशें होंगी, कौन सी विशेज की जाएगी जिसको हमें मुझे पूरा करना है, और एक कुछ जिम्मेदारी भी होती है। लिटरली एक बड़ा मज़ेदार होता है किस्सा कि यार हाँ मुझे पूरा करना है और इस तरह से इसको करना ही करना है। सो जब जिसको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हो उनको लेकर के अगर पता चल जाए कि उनको ये चाहिए आपसे और उसके बाद आप देने के लिए हर संभव कोशिश करो, तो कितना सोचिए अच्छा होता है, कितना खूबसूरत होता है। सो ऐसी ही बातें जो है वो चलती रहती हैं। फिलहाल अब आपको ये ज़रूर जाहिर कर देना है कि हाँ, अगर आपके भी भाई बहन के रिलेशन के बीच में ऐसी कोई शंका है जिसका प्रमाण नहीं है, सिर्फ शंकाएं शंकाएं, तो आज का वो दिन कह रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई दूर कर दो, ऐसा कुछ भी है इसको दूर कर दो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म में चलाने वाली नहीं है। जब तक जिस बात का प्रमाण ना हो, जिस बात का एविडेंस ना हो, उस बात को इस तरह से करने का फिर कोई सेंस रह नहीं जाता है, राइट? तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई हमको इस बात को समझना होगा कि यस, अगर ऐसा कुछ भी है तो इन चीज़ों को भूल करके, इन चीज़ों को ख़त्म करके अब हमको आगे बढ़ना होगा। और आज का ये जो त्यौहार है ये सच में जिस तरह से ख़ास है उसी तरह से इसको सेलिब्रेट करते हुए आगे हम बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल आइए सुनते हैं आज का स्पेशल जो स्पेशली रक्षाबंधन के आज के त्यौहार को लेकर डेडिकेटेड है, हर भाई की तरफ से बहनों को और हर बहनों की तरफ से भैया लोगों को। ये सुपर्ब सॉन्ग डेडिकेटेड है रेडियो ग्यारह 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुंडा में।

0: रक्षाबंधन धागा है प्यार का। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आप ट्यून कर चुके हैं 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से। इसी एप्लीकेशन पर आप चैट पर जो कुछ लिखते हैं लाइव आपके गोंडा एफएम के आरजेस तक पहुंचता है। फिलहाल मॉर्निंग शो में जो कुछ लिखा है आइए पढ़ते हैं, किसने क्या लिखा है और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप आज रक्षाबंधन का स्पेशल फेस्टिवल।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

राखी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज का दिन आपके लिए भी और ज़्यादा ख़ास हो। प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच लिखती हैं, बहुत बहुत ऑसम थॉट, आपसी शंका मिटाओ, प्रेम बेशुमार दौलत पाओ, है ना। ये एक ऑफ़र है आज का, स्पेशल ऑफ़र। वैसे रक्षाबंधन में अक्सर मैंने देखा है वो लोग भी थोड़ा सा मायूस होते हैं जिनके भाई नहीं होते, वो सोचती हैं बहनें कि क्या किया जाओ यार, जिन भाइयों की बहनें नहीं होती वो सोचते हैं भाई अब ये रक्षा सूत्र कैसे बनवाएं। सो कोई नाउमीद होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, चूँकि अगर आप इस धरती पर हैं और कुदरत ने आपको पैदा किया है तो नो डाउट हर चीज़ का इंतज़ाम है। आज हर उस रिश्ते के अलावा, हर उस चीज़ से जिसकी आप हिफाजत करते हैं, जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसका आज फेस्टिवल है, उसका आज दिन है। तो नाउम्मीद होने जैसी बात कुछ भी नहीं है। जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं और जिसकी हिफाजत करते हैं उसको लेकर के आज का ये दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी आ गए हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग, और रक्षाबंधन का त्यौहार अजय जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मुझे लगता है कि भाई ये दिन जो मैंने बताया ना कहीं सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सो इसलिए नाउम्मीद होने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, बस खुश रहिए और जिस भी चीज़ की आप हिफाजत करते हैं आज के दिन वो जिम्मेदारी आपको एहसास दिलाती है कि आपको आगे भी हिफाजत करना है, आगे भी इस बात को समझना है। और साथ ही साथ इस बात को समझते समझते कहीं ना कहीं हमको इस बात को भी समझना होगा कि भाई हाँ बेशक जिम्मेदारी के साथ साथ हम जो है वो हर उस चीज़ को जो भी हमारे लिए इतनी ख़ास है, जिसकी हम रक्षा करते हैं या करते जा रहे हैं या करने वाले हैं या करते रहेंगे, आज उसका दिन है, एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने के लिए। दोस्त आपको तो बरकरार रखना है इसे।

0: बात बात में कई बार ऐसी कुछ कहानियां निकल आती है जिसके बारे में थोड़ा सा यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन वो होती है सच्चाई और सच होता है। ऐसी कुछ स्टोरीज आज हम आपके सामने लाने वाले हैं जिस पर हम बातचीत भी करने वाले हैं, एंड आई होप कि आपको ऐसी बातचीत पसंद भी आने वाली है। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो देखिए वैसे ये त्यौहार जो है सच कहा जाए तो बहुत मस्ती भरा भी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आज के दिन बहुत सारे चैलेंजेस भी एक दूसरे को दिए जाते हैं और बहनें ऐसे ऐसी डिमांड्स भी रखती हैं कि भाई थोड़ा सा चक्र आ जाए। ऐसा लगता है उस दिन बहनों को जो है आरजे अदनान वाला मूड आ गया कि आपने भाई को आज परेशान करना है थोड़ा सा, है राइट। और राइट, सो अगर आप भी ऐसा कुछ यूनिक कर रहे हैं आज और कुछ ऐसा प्लानिंग की हुई है तो उसको लेकर के भी आप बता सकते हैं हमको। और चूँकि हमने कहा ना 10 से 11 आपसे हम बात करने वाले हैं गायका गुंडा विद आरजे अदनान, तो आप हर बार अटेंड करते ही हैं संडे को, लेकिन आज है फ्राइडे और फ्राइडे को स्पेशल हो रहा है रक्षाबंधन कॉल इन प्रोग्राम, यानी लाइव कॉल इन प्रोग्राम में आप कॉल करने वाले हैं और आज के सेलिब्रेशन के बारे में बताने वाले हैं और अपने भाई के बारे में या फिर अपनी बहन के बारे में। एक ऐसी आदत जो आपको बहुत ज़्यादा हंसाती है और सच में आपको आपका बॉन्ड, आपका जो रिश्ता है और मजबूत करने के लिए इंस्पायर करता है। सो होती ना सभी की कुछ ना कुछ ऐसी आदत होती है, तो अगर आपको भी कोई ऐसी आदत मिली हुई है या ऐसा लगता है कुछ ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल रितिन आगे हैं, हैप्पी रक्षाबंधन, थैंक यू। पूर्णिमा लिखती हैं गुड गुड गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, साथ में आपने रक्षाबंधन को बोला है, विशेस दी है, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन पूर्णिमा, बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ देखिए ये मुबारकबाद तो चलती रहेगी और हम आपको बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे। कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं भाई बहन के जो एक मिसाल बन गए हैं और फिलहाल हम लोगों तक चूँकि अब वो आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना चाहिए, आपसे बताना भी चाहिए। और ऐसा क्या कुछ हुआ है, ऐसा क्या है, चलिए आपको ले चलते हैं उस स्टोरी की तरफ। उससे पहले ये सॉन्ग एंजॉय करेंगे, वापस से आएंगे और उसके बाद बताएंगे क्या है आज की स्टोरी में।

0: सो भाई हमने वादा किया है कि भाई चलिए आपको हम ले चलते हैं कुछ ऐसी स्टोरीज की तरफ जो बन गई फिलहाल मिसाल। और ऐसी स्टोरीज ऑब्वियस सी बात है कि जब मिसाल बन जाती है तो कहीं ना कहीं लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो चलिए भाई एक ऐसी स्टोरी की तरफ आपको ले चलते हैं जो अपना ध्यान आपकी तरफ खींचने वाली और आपका ध्यान जाने वाला है इस स्टोरी की तरफ। ये तो बहुत ज़्यादा हमने भाई बहनों के प्यार के बारे में सुना है, पढ़ा है, क्योंकि हम खुद अपने घर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि भाई हाँ टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता होता है, इधर लड़ना उधर झगड़ना, फिर मनाना, फिर नहीं होने पे एक दूसरे को याद करना, उसके बाद ये सोचना कि भाई ये क्यों नहीं है। चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, कोई भी हो, इस तरह से हमारा जो रिश्ता होता है भाई बहनों का, जब हम लोग मिलते हैं तो इतने बड़े क्राइम पार्टनर्स बन जाते हैं और घर में पेरेंट्स को चकमा देते हैं। सो इन रिश्तों के बारे में तो भाई इसका कुछ भी नहीं कहना, बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता होता है। लेकिन इसी रिश्ते में जब ऐसी बातें आ जाएं जो आप देखें कि भाई एक लाइफ पार्टनर कर सकता है, उस तरह से कोई बहन के लिए भाई कर सकता है, भाई के लिए बहनें कर देती हैं, अक्सर ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन हम एक ऐसी स्टोरी आज बताने वाले हैं, एक ऐसे भाई की ज़ुबानी जिसको सुन लेने के बाद आप खुद ही सोचिएगा कि आखिर इस रिश्ते में कितना ज़्यादा प्यार रहा है और कितना ज़्यादा डेडिकेशन रहा है। भाई कहता है कि मेरी दीदी चल नहीं सकती पर ज़िंदगी जीना जानती है और हर दिन मुझे भी सिखाती है। मेरी बड़ी बहन अल्फा को सेरेब्रल पल्सी है। जी हाँ, बचपन से ही उसे हमारी ज़रूरत थी। मैं 1.5 साल का था जब पापा को स्ट्रोक आया और कुछ साल बाद वो हमें छोड़कर चले गए। फिर हमारी माँ ने ही हम दोनों को पाला। घरों में बर्तन धोए, फैक्ट्री में मजदूरी की, फिर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाया। अल्फा के इलाज से लेकर मेरी पढ़ाई तक माँ ने हर मुमकिन कोशिश की। मुझे भी उनका हाथ बटाना था, इसीलिए अच्छी नौकरी की तलाश में मैं बैंगलोर गया। कभी बार्स तो कभी कैटरिंग तो कभी अमेजन वेयर हाउस में काम किया। हालात ऐसे थे कि कई बार खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। अक्सर सोचता था कि क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा। फिर एक दिन मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर लौटने के बाद मेरी ज़िंदगी में अल्फा दीदी हर दिन का हिस्सा बन गई। जी हाँ, मैंने उसे इस बार और करीब से देखा। उसे खाना खिलाना, कहीं घूमने जाना, वो रोए तो उसका हाथ थामना। एक दिन मैंने चुपके से अल्फा का एक वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। फिर क्या था, लाखों लोगों ने अल्फा के जज्बे की तारीफ की और तब मुझे समझ में आया ज़िंदगी ठीक होने का इंतज़ार करते करते ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी जिम्मेदारियां बहुत हैं पर एक बड़ी बहन की तरह वो मुझे हर दिन संभाल लेती है। मुझे लगता था मैं उसे संभाल रहा हूं पर सच ये है कि वो मुझे जीना सिखा रही है। ये कहना है एक भाई का अपनी बहन को लेकर के, जिस बहन को ऐसी बीमारी है जो खुद से चल नहीं सकती बिना सहारे के। बचपन से ही वो बीमारी है, जिस बात को लेकर लगता था भाई को कि भाई मैं उसे पाल रहा हूं, एक दिन उसको एहसास हुआ कि मेरी बहन तो मुझे जीना सिखा रही है। अच्छा होता है ऐसा, हम जो देख रहे होते हैं, हमें जो लग रहा होता है, अक्सर वो नहीं होता है, उसके उलट होता है। कई बार लगता है कि हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, बाद में ये रियलाइज़ होता है, ये फील होता है कि हम खुद सीख रहे थे, हम खुद समझ रहे थे। इसी तरह से आज ये स्टोरी जो भाई बहन के प्यार की है, उसमें भाई को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी बड़ी बहन जो उम्र में बड़ी थी, दीदी थी, वो बचपन से चल नहीं पाती थी और भाई को लगता था कि उसको सहारा देना मतलब वो इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन उसको अपनी बहनों की एक्टिविटी, उनका बिहेवियर, उनकी सोच से बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहन के साथ रहते रहते, हंसते खेलते घूमते, कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी जी रहा है। यानी हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद, मानसिक स्थिति सही होने के बावजूद, वो जीना भूल गया था, क्योंकि वो भी मेरी यानी आरजे अदनान और आपकी तरह वो भी ये सोच रहा था कि कभी तो ज़िंदगी सही होगी, कभी तो चीज़ें बेहतर होगी। लेकिन उसको रियलाइज़ हुआ कि इसका इंतज़ार करते करते हम बैठे नहीं रह सकते हैं। ज़िंदगी को जब जैसे पलटना है वो तो पलटेगी ही पलटेगी, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ है चीज़ों को इंतज़ार ना करते हुए बल्कि उनको महसूस करना और आगे बढ़ना, और वो शायद भाई ने करना सीख लिया है ना। कितनी गज़ब की ये स्टोरी है। आइए फ़िलहाल आप क्या कहते हैं इस स्टोरी को लेकर, कुछ जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, ज़रूर बताइए।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग, तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए एनजेपीजी कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में डीएमसी की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है बीए, एमए और बीकॉम की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज गोंडा।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: तो भाई ये राखी के लिए जो भाई बहनों का मान मनोवल है वो तो बड़ा ही प्यारा होता है, और जिस तरह से लड़ते झगड़ते राखी का त्यौहार आ जाता है ऐसा लगता है कि भैया बड़े ही शरीफ ये भाई बहन हैं आपस में, है ना। लेकिन उसके बाद जो जंग शुरू होती है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है, इंटरेस्टिंग होती है। ये सभी घर का हाल है, और यही तो मज़ेदार चीज़ होती है कि भैया जैसे भी हो लेकिन मेन रक्षाबंधन वाले दिन एकदम सब कुछ सीधा साधा एकदम सिंपल सा वाला है। राइट, सो चलिए भाई 10 बज चुके हैं, ठीक 10 बज गए हैं आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, और अब आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें अपने भाई की कोई बात, अपनी बहन की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद आती हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं 89.6 एफएम के आज के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आरजे अदनान के साथ, क्योंकि समय हो चला है आपसे बातचीत करने का, समय हो चला है रक्षाबंधन को और भी ज़्यादा स्पेशल बना करके सेलिब्रेट करने का, और इन सभी समयों के बीच चलिए फ़िलहाल समय ये भी हो गया है कि आप कॉल कर सकते हैं और आपसे हम बातचीत कर सकते हैं। सो फिलहाल चलते हैं पहले कॉलर की तरफ और देखते हैं पहली कॉल पर आज हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: सर पूर्णिमा बोल रहे हैं।
0: पूर्णिमा तो कल थी।
1: नहीं सर आज है।
0: अच्छा पूर्णिमा आज है, ऑलराइट।
1: जी बिल्कुल आज है।
0: ऑलराइट, सो कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे, किम छो?
0: मोजामा छे एंड बात करा छे अबाउट द राखी।
1: हैप्पी रक्षाबंधन सर।
0: थैंक यू सो मच, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसा आज की शुरुआत बताइए, कैसी रही रक्षाबंधन की?
1: सर शुरुआत तो बहुत खूबसूरत रही और बच्चों के झगड़े से रही।
0: अरे वाह, बच्चों के झगड़े से कैसे, मतलब क्या रहा?
1: मेरा मतलब है कि इस बार ना उसकी बहन ने ना चांदी की राखी ली है अपने भाई के लिए।
0: अरे वाह,
1: तो भाई कह रहा है कि जो है चांदी की राखी बांधोगी तो जितनी भी चांदी की राखी है उससे डबल पेमेंट मुझसे लोगी।
0: हाँ बात सही है, और उसका
1: हक भी है। धागा वाले ही बांधो।
0: अच्छा तो इस
1: अब उसने सोचा कि मैं चांदी की राखी भाई को बांधूंगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे।
0: मतलब बहनों का लगता है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा आज के दिन।
1: हाँ, तो वो कह रहा अभी तो मैं दीदी कमाता नहीं हूँ ना, जब मैं कमाऊंगा तो पैसे दूंगा, पापा के पैसे 100 रुपए में काम चला लो।
0: अच्छा।
1: तो कह रही 100 रुपए में काम नहीं चलेगा, अकेली हूँ और ज्यादा चाहिए।
0: वाओ, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी कहाँ ये झगड़ा कहाँ पहुँचा, इसका कुछ सलूशन निकला है अभी?
1: झगड़ा सर हाँ, मतलब एक की कलाई पे तो राखी ऑलरेडी बन चुकी है 9:30 से पहले ही।
0: अच्छा 9:30।
1: हाँ, और एक आएंगी दीदी आएंगी ना, तो 1 बजे से फिर मतलब मुहूर्त है क्योंकि राहु कल लग चुका हुआ। हाँ, तो फिर वो बनवाने आएंगी।
0: अच्छा,
1: और मम्मी तो... सर मामा के यहाँ जा रही है, मामा को राखी बांधने के लिए।
0: अच्छा मामा के यहाँ जा रही मम्मी?
1: जी हाँ, और हम भी जा रहे हैं इस बार।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आप
1: बहुत टाइम बाद जा रहे हैं मामा के यहाँ।
0: आप लोग वेस्ट बंगाल जा रहे हैं?
1: नहीं नहीं नहीं सर,
0: मामा कहाँ पास में? अच्छा बहराइच में ही है। अरे वाह
1: जी, बहराइच में है, बड़े वाले मामा की दरअसल तबीयत नहीं ठीक रहती ना।
0: अच्छा अच्छा ओके,
1: तो आ नहीं पाएंगे, और वो एक मतलब छोटे वाले मामा आएंगे तो मम्मी एक ही को राखी बांध पाएंगे, लेकिन जो मम्मी जाएंगी तो सभी को राखी बांधेंगी।
0: करेक्ट, सही बात है।
1: जी जी, तो इसीलिए।
0: क्या बात है, सो ये बताइए कि आप किसको बांधने वाली फिलहाल आज?
1: सर मेरा तो हमेशा का ही है, मैं जब से मेरे भाई की जब डेथ हो गई तब से मैंने कभी किसी की कलाई पे राखी नहीं बांधी।
0: ओके
1: हाँ, तो मैं कान्हा जी को चढ़ा देती हूँ, मम्मी कहते हैं कान्हा जी को बांधो, तो मैं मंदिर में कान्हा जी को बांध देती हूँ।
0: कान्हा जी को आप सुबह मंदिर में बांध देती
1: हूँ? खीर का भोग लगा के सुबह सुबह खीर बनाती हूँ ना रक्षाबंधन पे।
0: अच्छा
1: हाँ, तो उसमें मिश्री वगैरह खूब ढेर सारा डाल के कान्हा जी को भोग लगा के उनको रक्षा सूत्र चढ़ा देती हूँ, मैं उन्हीं को भाई मान के अर्पण कर देती हूँ।
0: वाह
1: जी, मैंने कभी किसी की कलाई पे राखी नहीं बांधी।
0: ओके, कभी आपने नहीं बांधी ऑफ कोर्स उसके बाद से, लेकिन क्या आपकी कलाई पे किसी ने बांधी?
1: हाँ दीदी ने बहुत बार कोशिश की मैं छोटी को बांध देती हूँ, तो हाँ। मैंने कहा कि आप मेरे भाई थोड़े ना हो, तो कहती है कि भाई नहीं इसका मतलब थोड़े ना कि नहीं बांध सकते।
0: सही बात है,
1: तो बांधती है। इनफैक्ट मैं जब अपनी क्लास में थी 10th और 12th में, तो वहाँ की जो क्लासमेट होती थी एक लड़की थी उसका नाम रिया था।
0: ओके,
1: वो मेरी कलाई पे हमेशा बांध देती, तो मैं भी उसकी कलाई पे बांध देती थी, वो ही राखी लेकर आती हम दोनों के लिए।
0: ओके अच्छा, रिया लेकर आती थी कलाई।
1: हाँ, तो ऐसा होता था तो मुझसे पूछती थी, क्योंकि उसका भी कोई भाई नहीं है, वो अकेली है, तो उसको भी बहुत याद आती थी। रक्षाबंधन में बहुत मिस करती थी सभी चीजों को, तो क्योंकि रक्षाबंधन पे तो छुट्टी होती थी।
0: करेक्ट।
1: तो एक दिन पहले हम एक दूसरे की राखी को एक्सचेंज कर लेते थे।
0: अच्छा
1: ऐसा होता था। और जो टिफिन में से ना लंच लिए जाते थे हम लोग, मतलब लेकर जाते थे, उसको शेयर कर लेते थे।
0: ओहो, क्या बात है।
1: ऐसा कुछ होता था मेरा सर।
0: वाओ, दैट्स वेरी नाइस। इसके अलावा मुझे ये आपसे जानना है, जैसे बहनें होती हैं, भाई नहीं होता है, तो बहनें आपस में भी कई बार बांध लेती। कई ऐसे घर है जहाँ सिर्फ भाई भाई हैं, बहन है ही नहीं, उनके लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हो सकता है उसमें से कोई हमको सुन रहा हो इस वक्त।
1: बेशक मुझे लगता है कि खून के रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है दिल का रिश्ता। और जहाँ के आपके जज्बात मिले, जहाँ आपके इमोशन समझे जाएं, जहाँ आपको सच में रिस्पेक्ट मिले, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज के दिन त्योहार है तो आप कलाई पे राखी बांधो शो के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सच में हमेशा आपको अपना माने, अगर कहीं भी है, दूर है, तो वो आपसे मिलने आए, या अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकते, तो आपका फर्ज बनता है आप जाओ।
0: चलिए मान लीजिए ये सब ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल कोई ऐसा बहन उनको भाई नहीं मानती है, लेकिन उनको बड़ा वो मिस कर रहे हैं कि काश को मेरी बहन होती तो आज वो मेरी कलाइयों पर राखी बांधती। तो आज के दिन आप ऐसे भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या आपका संदेश है?
1: मैं तो यही कहूंगी कि उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहन नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भी तो कोई भाई नहीं है। जज्बात ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जहाँ भी है खुश रहे। और अगर किसी को कोई बहन या कोई भाई किसी को राखी बंधवाना चाहता है, या कोई बहन राखी बांधना चाहती है, तो बेझिझक बांधना चाहिए।
0: ओके अच्छा, और उन भाइयों को क्या कहेंगे, उन लोगों को जो आज मारे डर के घर से बाहर नहीं निकलते हैं कहीं राखी ना बांध दी कोई।
1: ऐसे
0: भी कुछ लोग होते हैं।
1: मेरे यहाँ तो और किसी फेस्टिवल से सर लड़ाई हो या ना हो, बट रक्षाबंधन में हमेशा मॉर्निंग की शुरुआत इसी से होती है।
0: अच्छा,
1: तो वो हमेशा बचने की कोशिश करता कि मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे पास जो भी पॉकेट में नहीं वो दीदी ले जाएंगी।
0: सही बात है। दीदी कहाँ से?
1: मैं साल भर इकट्ठा करता हूँ, और साल में एक दिन आता है जो दीदी सारा लेकर चली जाती है, मैं मना भी नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल सही बात है भाई, दीदी का हक है, वो तो चाहिए ही चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। सो बहुत अच्छी शुरुआत आपने बताई कि भाई घर में इस तरह जो नोक झोंक के साथ हमेशा शुरुआत होती है, आज भी वैसी हुई, और चांदी की जो राखी थी वो आपकी ऑफकोर्स घर में ही बच्ची ने ली थी अपने भाई को बांधने के लिए, और भाई की परेशानी है कि भाई अभी मैं कमाता नहीं हूँ, कैसे दूंगा उसका दोगुना खर्चा। तो
1: वो उल्टा कहता है, सर आपको पता है, कहता है कि दीदी आपकी शादी में तो इतने सारे खर्चे करेंगे, अब मैं अकेला हूँ, मैं ही आपकी शादी में पैसे खर्च करूंगा, तो अभी मुझसे क्यों ले रही हैं आप। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है सर दोनों के बीच, सुन के बड़ी हंसी आती है, और झगड़ा होता तो शांत भी करवाने मन नहीं करता, क्योंकि वो फनी सा लगता है।
0: मजे आप लेते हो झगड़े उनके, वो मजे आप लो।
1: कहता ले लो हंसी मजे ले लो, सारे पैसे दीदी लेकर जा रही है।
0: वाओ क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड थैंक यू सो मच पूर्णिमा के आपने कॉल किया, विशेस दी, और साथ ही कुछ स्टोरीज बताई।
1: मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगी कुछ।
0: यस प्लीज।
1: ओके हम

0: वास्ता है रूह का राबता। थैंक यू।
1: वाओ क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया, और कॉल करने के लिए उससे ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू, बाय बाय सर,
1: बाय बाय, टेक केयर। और भाई ये थी हमारे साथ में पूर्णिमा, जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और साथ ही साथ देखिए ना कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी प्यारी प्यारी बातें हो गई। और इसी के साथ में अब मुझे लगता है कि हमें अगले कॉलर की तरफ चलना चाहिए। अगले कॉलर में देखते हैं कौन है। हाँ जी हेलो,
2: जी नमस्कार, मैं विजय पांडे।
1: नमस्कार विजय जी, कैसे हैं?
2: बलरामपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी विजय जी, पचपड़वा बलरामपुर से आपका स्वागत करते हैं गोंडा एफएम पर, और हैप्पी रक्षाबंधन आपको।
2: कुछ लाइन हम बोल दें।
1: जी जी,
2: वर्ष में एक बार आता है रक्षाबंधन का त्योहार, श्रावण पूर्णमासी को पढ़ते भाई बहन का प्यार, बहना भैया की कलाई पर बांधे रेशम की डोरी, ईश्वर से करे प्रार्थना रक्षा करे ये तोरी, भैया मनाए बहुत खुशी देख बहना का प्यार, बहना को करे प्रसन्न देकर कुछ उपहार, सदियों से चली आई है ये समाज की रीत, रेशम की डोरी में बधी रहे भाई बहन की प्रीत, जुग बदले चाहे बदले समाज ना बदले प्यार की रीत, इतिहास हमारा कहता है सदा हुई है प्यार की जीत, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय हो सभी लोगों को।
1: बहुत बहुत बढ़िया आपने विशेष दी है रक्षाबंधन की सभी सुनने वाले श्रोताओं को, और आपने चूंकि बलरामपुर पचपड़वा से कॉल किया है सो पचपड़वा से सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज इतना भी स्वागत करते हैं, और आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी जी धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद आपका भी, और कुछ कहना है आपको रक्षाबंधन को लेकर?
2: रक्षाबंधन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि आज एक फिल्म का गाना है, फिल्म छोटी बहन, और गीत के बोल हैं बहना ने लाई है राखी के कलाई में, ये गीत मैं अपनी मोबोली बहन अनु पांडे को समर्पित करना चाहूंगा।
1: ओके, बहुत बढ़िया।
2: क्योंकि जब मेरे कलाई में मेरी मोबोली बहन राखी बांधेगी तो मेरे आंखों में प्यार के आंसू बहेंगे।
1: वाह क्या बात है, तो आपने छोटी बहन जो मूवी है उसके गाने को डेडिकेट किया है।
2: जी, जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ कि भाई आपकी मुंह बोली छोटी बहन जो है हमेशा खुश रहें, और इसी चंचल व्यवहार के चलते हमेशा सभी की प्यारी बनी रहें।
2: धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये तो थे हमारे विजय कुमार जी, जो कि पचपड़वा बलरामपुर से कॉल कर चुके थे, और जैसा कि आपने कुछ लाइंस डेडिकेट की और बड़ा अच्छा लगा रक्षाबंधन को लेकर के। फिलहाल इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
3: हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी रक्षाबंधन।
1: गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी, और मुझे लगता है ये मुंह बोली बहन आप भी गई। मुंह बोली बोलते हैं या मुंह भोली? आप भोले तो हो नहीं,
3: तो भैया ही बता पाएंगे।
1: आप दोबारा कॉल लगेगी तो पूछेंगे। नहीं क्या बोला, क्या जाता है, मुंह बोली बोला जाता है या मुंह भोली बोला जाता है, क्या बोला जाता है?
3: बोला तो जाता है मुंह बोली,
1: मुंह बोली, मुंह पे ही बोले खाली।
3: अरे नहीं,
1: हाँ
3: ऐसे मुंह बोली बोलते हैं,
1: मुंह भोली बोलते हैं। अच्छा तो भैया ये बताइए, आज रक्षाबंधन का त्योहार आपका कैसे शुरू हुआ? आपके भी भैया लोग हैं, आप बहने लोग हैं, तो बड़ा धमा चौकड़ी होती होगी, और कैसे भैया इंसाफ करते हैं, किस बहन को क्या गिफ्ट देना है, क्या सबको एक समान दिया जाता है या अलग अलग, जैसे जैसे खतरनाक बहने होती उनको ज्यादा अच्छा दिया जाता है, सीधी साधी बहन को थोड़ा बहुत पकड़ा करके छोड़ दिया जाता है, क्या होता है आपके घर का सिस्टम क्या है?
3: सर पहले पहले तो बताओ ना, मैं रात में मिठाई बना रही थी।
1: अच्छा,
3: मैंने कुछ करते बनाया खुद से, कुछ मार्केट से दिया।
1: अरे
3: तो भैया रात में पहुंचे बड़े वाले भैया, हमको तो चक्करे खाए, हमने थोड़ा सा दिया, बोलते इतने में क्या होगा और दो, अरे उसके सारा इसी टाइम खा लोगे तो सुबह क्या खिलाएंगे।
1: सही बात
3: तो
1: है।
3: बोले पहले इस टाइम तो खा लूं, वहां देखा जाए। और अच्छा। इतनी रेल गाड़ी है तो इतनी तो मेरे लिए बहुत जैसा मुझे खिलाओगी खुद भी खा जाओगी, हमको तो लगता है रात भर खुद ही साफ कर दोगी।
1: अच्छा
3: हम भी ऐसा नहीं है, रात में ही हुआ सुबह फिर क्या हुआ जब हम लोग राखी बांधने के लिए भाइयों को बुलाए सब लोग बैठ गए रेडी हो गए एकदम से, माही आ गई, माही राखी लेकर आ गई, भैया को बांधी हम लोग भी बांधी, उसके बाद वो मुझसे भी राखी बनवा रही है माही, उसी आप भी बांधो बड़े वाले भैया से बनवाई और हमसे को रखवा रही बांधो, जब माही राखी बांध रही थी हम लोग जब राखी बांधे भैया को तो हम लोगों ने मिठाई खिलाई अपने हाथ से, और जब माही बांध रही थी तो भैया ने क्या किया माही को खुद मिठाई खिला दिया खुद नहीं खाए, और छोटा वाला भाई वो ना हम लोग राखियां बांध रहे हैं वो खुद ही सब जाके मिठाई खाते जा रहा है।
1: वाह सेल्फ सर्विस है।
3: हम के थोड़ा सा रुक जाओ अभी हम खिला रहे हैं, अरे कह रहा है इतना सबर नहीं हो रहा है मिठाइयां देख के।
1: वाह तो क्या बनाया था मिठाई में आपने?
3: मैंने सर खुद से तो बर्फी बनाई थी।
1: अच्छा और आज गिफ्ट में क्या मिला आपको?
3: और गिफ्ट की बात सर पता है सबसे पहले माही की सुन लो, वो बोलती है भैया से खुद राखी बनवाती है और बांधती भी है, बोलती है गिफ्ट लाओ तो भैया बोले 2 रुपए दूंगा, कहीं नहीं हमको ए ग्रेड की पेंसिल देने के लिए बोले थे वो बी ग्रेड की, बी ग्रेड की पेंसिल दो और उसके बाद पैसे दो और फटाफट बड़ी वाली जो निकालो, अगर बड़ी वाली तो भैया 2 रुपए लेकर आएंगे अभी 2 रुपए देता हूँ, क्या नहीं बड़ी वाली नोट लाओ, अगर बड़ी वाली नोट नहीं निकाली ना तो फिर कई नोट निकालनी पड़ेगी बड़ी बड़ी वाली
1: धमकी।
3: और सर ऐसे ना कमर पे हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए, खड़े बड़ी वाली नोट लेकर आओ वरना कई नोट निकालनी पड़ेगी बड़ी वाली। अब सब लोग तो ऐसे ऐसे लोटपोट होते जा रहे थे।
1: वाह क्या बात है। सो क्या मिला अभी आप लोगों को?
3: कुछ पैसे मिले।
1: अच्छा कुछ पैसे मिले, सबको बराबर मिले कि ज्यादा कम मिला है?
3: नहीं नहीं सर ऐसा नहीं सबको बराबर ही मिला है, खाली माही को छोड़ के।
1: माही को सबसे ज्यादा मिला है?
3: वो तो हमेशा ज्यादा लेगी सर।
1: हाँ वो छोटी है ना।
3: हाँ
1: कोई बात नहीं,
3: लेकिन सर अभी हाँ भी हाँ जी आज भी ना मैं 5 रुपए वाली नोट यूज करती हूँ।
1: अच्छा 5 रुपए वाली।
3: जब मैं छोटी सी रहती थी हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे बड़े पापा थे तो हम लोग बड़े पापा को राखी बांधते थे, तो बड़े पापा ना 2 दिन पहले 5-5 रुपए की नोट निकालते थे ताजी ताजी, और उसको देख के बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश हो जाती थी कि 5 रुपए की हरी हरी नोट मिली ताजी नोट है।
1: वाह क्या बात है।
3: जब बड़े पापा पैसे निकालते थे ना वो अपना बटुआ खोलते थे तो उसमें 1 रुपए और 2 रुपए की नोट नोट ढेर सारी होती थी, तो मेरा मन करता था इसके साथ साथ 1-2 रुपए वाली नोट भी दे दे तो कितना अच्छा रहेगा।
1: बस आपको हमेशा से नोट पाना था है धावा डाल कर।
3: नहीं सर तो 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए वाली नोट ज्यादा अच्छी लगती
1: है। अच्छा चलिए भगवान करे आपको 10 रुपए ज्यादा कोई नोट ही ना दे रक्षाबंधन के त्योहार पर।
3: अरे आप तो 5 रुपए कुछ भी नहीं है, तो 5 रुपए
1: और है। उससे मतलब नहीं है, जो पसंद है वो मिलना चाहिए।
3: नहीं ऐसा तो नहीं है।
1: वैसे थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए और इतनी सारी बातें रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बताने के लिए।
3: एक बात और,
1: हाँ जी
3: मेरे जितने भाई है वो कोंडा के है या पूरे इंडिया के त्रिपुरा के आसाम के शिमला के बल्लारपुर के, सभी भाइयों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी दिल से दुआ है कि

0: साथ ही अगर आप अपने बहन अपने भाई के बारे में कोई ऐसी बात बताना चाहे जो आपको बड़ी यूनिक लगती है, बड़ी अलग लगती है और बड़ी पसंद आती है, वो आप ज़रूर मेंशन करें। फिलहाल 6393 3164 29 ये नंबर है, यानी 6393 3164 29। इसी में आइए चलते हैं, फिलहाल देखते हैं कि अगली कॉल आखिर किसकी है। हाँ जी हेलो।
1: चंदन की फूलों का हार, चंदन की लकड़ी फूलों का हार, अगस्त का महीना सावन की बहार, भाई की कलाई बहन का प्यार, मुबारक हो सभी को रक्षाबंधन का त्योहार। नमस्ते सर।
0: नमस्ते भैया, ये कौन बोल रहा है? आवाज हम पहचान भी पा रहे हैं और नहीं भी पहचान पा रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए।
1: सर मैं रिवांशी पांडे बात कर रही हूँ।
0: हाँ, हमने पहले ही कहा था रिवांशी है, तो सुन ही नहीं पाया आप। अच्छा है रिवांशी, कैसी है आवाज? क्या हाल चाल है आपके?
1: सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताइए कि आप कैसे हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ। पहले काम की बात करिए, कितनी कमाई हुई आज?
1: सर कमाई तो बहुत कम हुई है भैया, ना चिढ़ा के मुझको 2 रुपए दिए।
0: अरे अरे अरे, ये तो भाई मतलब हमें लगता है अब तो आपको डाका डालने का पूरा हक है, मतलब आप ले सकती हैं, ये आपका मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है।
1: शाम तक देंगे ना, अभी ना मुझे सुबह सुबह चिढ़ा के 2 रुपए दे रहे थे, छोटे सिस्टर को दे रहे थे, वो नहीं थी, वो बोली मैं नहीं लूंगी 2 रुपए, मतलब चिढ़ाते हम लोगों को।
0: बताइए 2 रुपए क्या मिलता है 2 रुपए में?
1: वो छोटी सिस्टर बोल रही है ना कि रिवांशी दीदी को दे दो, मैं नहीं लूंगी 2 रुपए।
0: आप बताओ 2 रुपए में हमारे ख्याल से 2 रुपए वाला गुलमंजन भी नहीं आता अब तो।
1: तो मैंने भी बोला कि मुझे 2 रुपए दे, ये 2 रुपए रख के और जो धागा मिलेगा अगली राखी को वही बांधूंगी, मिठाई तो खरीदूंगी नहीं।
0: और ये कई साल तक चलता रहेगा।
1: और पता है सर, भैया ना रात से ही मिठाइयाँ खा रहे हैं।
0: अरे मतलब इतना दाम तो मिठाइयों का ही खा गए होंगे, मतलब उनको देना तो चाहिए।
1: इससे ज्यादा का खा गए, रात में मिठाइयाँ खा रहे हैं, अभी क्यों खा रहे मिठाइयाँ, राखी तो कह रहे हैं इसी टाइम से राखी लग गई है।
0: वाह भैया, यही तो मजेदार थी।
1: एक दिन सो लिए उसके बाद उठ के गए मिठाई खाने के लिए।
0: अच्छा, सो क्या क्या बनाया आप लोगों ने घर पे?
1: हम लोगों ने
0: जी जी जी आप लोगों ने, मैंने तो नहीं बनाया ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
1: सर कई 2 तरीके की मिठाइयाँ बनाई थी।
0: 2 तरीके की मिठाइयाँ, पहले खाने वाली, दूसरी नहीं
1: और
0: खाने वाली।
1: मार्केट से भी लेके आई थी।
0: अच्छा मार्केट से, तीसरी तरह की मिठाई आई थी। तो ये क्या
1: भैया, मिठाई बहुत खाते हैं ना, केवल रागी बनवाते हैं, मिठाई तो खुद से हाथ से खाते हैं, और खुद खिलाओ तो थोड़ा सा खिलाओ, लेकिन जब वो खुद खाते हैं तो ढेर सारा खा लेते हैं।
0: तो मिठाइयों का दाम तो जोड़ करके उसका बिल दे दिए कि भैया इतना बिल बना है मिठाइयों का।
1: और पता है मेरी दोस्त थी, मैं उसे मिस करती हूँ, और उसने सुबह सुबह मतलब कॉल किया था, उसका नाम नादिया है। और वो मेरे को हमेशा राखी बांधती थी।
0: अरे वाह,
1: पर 2 साल से वो मेरे को राखी नहीं बांध पाती है, तो कॉल जरूर करती है मेरे पास।
0: राखी नहीं बांध पाती है? आपकी कलाई ज्यादा चौड़ी हो गई है या क्या बात है, मतलब क्यों नहीं बांध पाती?
1: सर वो दूर रहती है मुझसे।
0: दूर रहती, कितना दूर रहती है?
1: बहुत ज्यादा दूर रहती। पहले जब हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो नजदीक थी, अब वो अपने मामा के यहाँ चली गई तो और दूर हो गई मुझसे।
0: ओहो, चलिए ये इसका जवाब हमारे पास जो हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है, हम उनसे जानना चाहते हैं। आपको पता है हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है?
1: आपने बताया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा।
0: चलिए अभी पता चल जाएगा। हमारे साथ छोटी सी रिंकी मौजूद है। रिंकी बेटा बताओ आप कि अगर कोई दूर रहता है तो उसको राखी कैसे बांधा जाए?
2: आजकल तो जमाना हो गया फोन का, तो फोन पे मैसेज कर दिया जाए।
0: फोन पे मैसेज कर दिया जाए, आ जाता है मैसेज कि नहीं आ जाता है?
2: हाँ आ जाता है, जाता भी है।
0: नहीं इनसे हम पूछ रहे हैं, रेवांशी से।
1: सर पता है फोन पे तो मैंने राखी भेजे थे, तो वो कह रही कि उसने मेरे को भेजे थे, तो मैंने उससे बोला कि मैं इसे निकाल के बांधूं कैसे।
0: ये अलग मसला है भाई, ये अलग मसला है।
1: और भी भेजे थे।
0: अच्छा तो फाइनली आपको मिल गई ना व्हाट्सएप पे? अच्छा नहीं मतलब व्हाट्सएप पे आपको मिल गई ना फाइनली? आपकी आवाज जा रही है जैसे आपने पीसेस काटे थे मिठाई की, वैसी आपकी आवाज हो के पीसेस कट रहे हैं। हेलो। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। सो फिलहाल

0: छोटी सी जो रिंकी जी बैठी है हमारे साथ में, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके, आज आप मिलने आई हैं?
1: नहीं, आज तो मैं आई हूँ राखी बांधने के लिए आपको, तो आते आते इतना देरी हो गई कि मुझे बहुत गुस्सा है। पहले तो रास्ते में 9 बजे निकली हूँ, 1 घंटा लग गया पहुँचते, इतना भीड़ और कोई कोई खुला भी नहीं दे रहा था, सब 100-100 को नोट पकड़ा रहा था रिक्शा वालों को, और बेचारा वो क्या करे, वो कहाँ से, उनके पास भी खुला नहीं था, इसके लिए देरी हो गया। नहीं तो टाइम तो था 5:30 बजे से लेके 9:45 बजे तक की टाइम था बांधने की सुबह।
0: बांधने का सुबह, कोई बात नहीं, जैसे हम भी जब चलते हैं तो कैंची लेके चलते हैं, जैसे 500 का फुटकर नहीं तो 5 जगह काट देते हैं तो 500 बन जाता है 100-100 का।
1: नहीं,
0: आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कभी?
1: नहीं,
0: 500 का छुट्टा कोई नहीं दे रहा तो लो कैंची से 5 बराबर काट ले।
1: नहीं, ऐसा नहीं करते, मैं तो दुकान पे जाके कुछ 10 रुपए का कुछ ले लेती
0: हूं। आप बहुत सीधे हो फिर, मैं तो यही करता हूँ, 500 का अगर फुटकर नहीं मिल रहा तो 5 बराबर भागों में काट देता हूँ कैंची से।
1: सीधी तो हूँ नहीं, इतनी शैतान करती हूँ, अभी आ गई आपको शैतानी करने के लिए।
0: तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप स्टूडियो में मौजूद है, बहुत सारी शैतानी अब करने वाली हैं आप। फिलहाल एक और कॉलर को जोड़ रहा है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अपना शुभ नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: राकेश जी फ्रॉम?
2: जी फ्रॉम शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: वाह, फ्रॉम शिमला हिमाचल प्रदेश से देखिए आवाज गूंज रही है गोंडा FM पर, और आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश जी, कैसा आपका आज का दिन रहा, शुरुआत कैसी रही, बहन है आपकी?
2: जी बहन है, अभी तो शुरुआत से, अभी मेरे पास जो है 5 राखियां, तो अब मैं बांध चुका हूँ और बाकी 5 आने वाली है।
0: ओहो, 5 राखी बंध चुकी, 5 और। आप तो बड़े ही ब्लेस्ड हैं, मतलब इतनी सारी बहनों के आसपास रहते हैं, कितना ज्यादा
2: जी,
0: मतलब आपको अच्छा लगता होगा। तो क्या नोक झोंक तो होती है?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब साल में एक बार त्यौहार आता है, क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन का, तो हम बड़े खुश होते हैं कि जब एक साथ सभी बहनें आती हैं तो सभी जो हैं बहनें राखी बांधती हैं, मिठाई एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है।
0: सो आज का मतलब, कभी ऐसा नहीं होता है कि बहनों का भी जैसे डिमांड ज्यादा हो और आपका बजट कम हो और आप समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बहन समझने की कोशिश ना कर रही हो?
2: जी, ऐसा कोई होता है तो फिर पहले तो हम कोशिश करते हैं, जैसे कि आज रक्षाबंधन है तो उससे पहले डिमांड वो कि आज इस बार हम रक्षाबंधन पे क्या देने वाले हैं, उस बार क्या क्या क्या तोहफा आपसे मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि इस बार तो चलो पैसे से काम चला दो इस बार, तो बोलो नहीं पैसे तो हमारे पास, हम कुछ ऐसा चाहिए, तो फिर समझाने की कोशिश करते हैं, उनमें से कुछ मान जाती है कुछ नहीं मानती, तो फिर थोड़ा बजट करना पड़ता है।
0: तो कितने महीने पहले आप बजट बजाना शुरू करते हैं कि कब से इसको जमा करना है, कैसे क्या होना है?
2: जो अगर अगर ऐसा होता है तो जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है तो 1 हफ्ते पहले हम पहले बजट बना देते हैं कि भाई हम इतना बचाएंगे और इतना ये करेंगे, तो फिर उससे पहले जो है उनको क्या बोलते हैं, जब हम बजट करते तो हम उनको नाराज कर लेते हैं, हम उन्हें बोला इस बार तो तुम्हारा कुछ नहीं है, आपने राखी बांधनी तो आ जाओ, इस बार तो कुछ नहीं, लेकिन जब राखी बांधते तो फिर क्या बोलते दे देते, लेकिन हम उनके पास नहीं बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम्हारे लिए ये लाया था, लेकिन हम ये बोलते हैं हमने तो इस बार तो कुछ नहीं।
0: वाह, क्या बात है, बहुत सही। अच्छा देखिए, दिन ब दिन जैसे महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ों की रेट बढ़ जाते हैं, बहनें नहीं बताती हैं कि इस साल भैया थोड़ा सा महंगाई बढ़ी हुई है, इस बार टैक्स इतना लगा के इतना नहीं इतना देना होगा, कभी ऐसी कोई बात हुई?
2: नहीं देखो, वो ये तो बचपन की बात कह रहा हूँ मैं, देखो हमारी जो बहनें हैं जैसे चाचा ताऊ की हैं, वो तो जैसे हम कुछ दे देते हैं तो वो क्या बोलते कि नहीं है ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो है सिस्टर कुछ समझदार होगी, और मेरी सिस्टर तो एक ही सिस्टर है, बाकी ताऊ की है और दो चाचू की है, तो जितना भी हम देते हैं क्या बोलते वो मान जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जैसे कि उनका तो घर परिवार है, तो फिर वो समझ जाती है कि भाई इतना नहीं है और हमें कैसे करना चाहिए, तो आप ये साल में तो आता है, लेकिन आप श्रद्धा से आपने 1 रुपया भी दे, वो भी हमारे लिए कीमती है।
0: वाह क्या बात है। अच्छा अपनी बहन की कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत पसंद आती है और आप चाहते हो कि ये चीज मुझ में भी होनी चाहिए।
2: जी जी जी जी, ये चीज जो है हम में तो हो नहीं सकती है। देखो जैसे बहन की एक चीज अच्छी है, और जैसे कि आप सिस्टर की बात करूँ तो उसकी एक बात अच्छी की भी, और जैसे कि वो बोलते हैं कि कम खर्चा करना चाहिए और ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि हम इतने अमीर भी नहीं है कि हम इतने क्या बोलते हम इतना कर पाए। लेकिन कई बार बोलते कि आप अगर आपके पास आमदनी ज्यादा होती है तो आप उस हिसाब से कीजिए। अगर मानो कि आपके पास आमदनी कुछ नहीं है तो फिर आप ऐसा कुछ कर लेते तो फिर आपको फिर टेंशन भी हो जाती है कि हमने जिससे हमने कर्ज किया था हम कैसे चुकाएंगे क्या करेंगे। तो इससे अच्छा कि ज्यादा दिखावा करने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ जितना हो सके उतना कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ये ठीक है, लेकिन हमें ये आदत नहीं बन गई। हम सोचते कि चलो हम कर लेंगे जैसे करके।
0: सो ये बड़ी अच्छी बात है आपने कही।
2: ये चीज होती है क्योंकि हम जैसे जेंट्स होते हैं क्या बोलते हम परवाह नहीं मान, जैसे हम सोचते कि चलो हम करेंगे चाहे बहनों के लिए करना हो या अपने लिए करना है, लेकिन हमने करना ही करना चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो जैसे लड़कियां होती है तो ये सब सोच समझ के जो है कैसे बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी जो है घर को संवारती है, क्योंकि वो पैसा बजट वही, क्योंकि घर की बहन हो चाहे कोई भी हो लेकिन घर का बजट वही बना सकते हैं। लेकिन हम लोग हम तो सिर्फ उड़ाना जानते हैं, हम में ये कमी है।
0: तो भाई लोग जो है वो उड़ाना जानते हैं, बहनें उसको मैनेज कराना और घर को संवारना संभालना और इन फ्यूचर को देखते हुए चीज़ों को बेहतर कराना जानती हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। एंड बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी शिमला से कॉल करने के लिए और रक्षाबंधन को इस तरह से हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए।
2: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच। सो भाई ये तो थे हमारे राकेश जी की बात से कितना सहमत हैं रिंकी जी हमारी, बताइए।
1: हाँ सही बोला उन्होंने। मैं भी तो पहले बहुत खर्चा करती थी।
0: अच्छा
1: अब जाके थोड़ा थोड़ा संभल रही हूँ।
0: पहले बहुत ज्यादा खर्चा करती थी, मतलब पहले क्या आप नोट उठ पे बैठ जाती थी?
1: नहीं नहीं बैठ उठ नहीं जाती थी। अच्छा। जैसे कि अभी कुछ साल पहले की बात बता रही
0: हूँ,
1: अब यहाँ पे हो गया 7 साल आते हुए, तो 7 साल में मैंने 3 कढ़ाई खरीदी हूँ, 2 कुकर खरीदी हूँ, 4 तवा खरीद लिया हुआ। आप सोचिए,
0: मतलब उतने की जरूरत नहीं थी जितना आपने खरीद
1: लिया। जी नहीं, अब जाके अफसोस हो रहा है कि मैंने इतना सारा बर्तन तो खरीद लिया हूँ।
0: तो बर्तन किसी को खींच के मारने के लिए लिया था, किस लिए लिया था, या खाना बनाने के लिए?
1: खींच के लिए खींच के लिए नहीं।
0: अच्छा अच्छा,
1: खाना बनाने के लिए थी पर ज्यादा ले लिया हूँ अब। अच्छा। ठीक है अब कुछ भी नहीं लेंगे।
0: ऑलराइट चलिए बहुत अच्छी बात है, अगली कॉल को लेते हैं। हाँ जी हेलो
3: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
3: रेणु
0: तिवारी जी। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: आपको भी शुभकामनाएं सर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज हम किस्सा सुन रहे हैं, मुझे अपनी बहनों का किस्सा याद आ रहा है। बचपन में पैसा बचाने के लिए वो लोग जो बोरे की सुतली आती थी वो बांध दिया करती थी और पैसे ओरिजिनल वाले लेती थी।
3: तो भाई में तो है।
0: तो मुझे वही याद आ रहा है कि बड़ा
3: आपका जनगणना उसी भाइयों में है।
0: बिल्कुल सही कहा, मेरी जनगणना उन्हीं भाइयों में है। तो वही मुझे याद आ रहा है कि आज का जो दिन होता है भाई बहनों का बहुत प्यारा दिन होता है, बहुत झगड़े होते हैं और बड़ा प्यार होता है।
3: बहुत प्यारा होता है सर, जिसका भाई करीब होता है उसका तो दिन लौटता है।
0: सही बात है, बहुत सही कहा।
3: दूर होता है बहुत से दूर,
0: सही बात
3: है, बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ भी होती है साथ साथ।
0: बिल्कुल, तो आपने भाई की कलाई पे राखी बांधी आज?
3: जी नहीं, मेरा भाई बहुत दूर है।
0: ओ तभी आपने दूरी वाली बात कही है,
3: वही तो तकलीफ है सर।
0: अच्छा वैसे एक और बहन यहाँ पे हैं रिंकी जी, इनके भाई भी काफी दूर हैं।
1: जी बहुत दूर है, ईस्ट बंगाल में दुर्गापुर में है।
0: वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में है इनके भाई। देखिए
3: बहुत तकलीफ होता है, उन बहनों से पूछो आप जो जिसका भाई बहुत दूर है या जिस मतलब जो बहने बहुत दूर है।
0: सही बात है ये तो। मुझे लगता है रेनू जी ना कि जब आप भाइयों के घर जाती हैं तो एक बार वो मायके वाला फील आता है, मतलब कि इतने टाइम तक आप ससुराल में थे, है ना, ऐसा लगता है घर में वापस आ गए हैं, कोई ऐसा घर जहाँ बहुत आराम से इत्मीनान से हम कुछ घंटे या एक दो दिन। बहुत सही बात है। अच्छा कुछ बातें बचपन की, कुछ खट्टी मीठी बातें बताना चाहेंगी आप भाई के साथ?
3: भाई के साथ बहुत मस्ती होती थी, एक ही भाई था भाई मौके पर।
0: अच्छा
3: बहुत मस्ती होती थी।
0: वाह क्या बात है। आपकी क्या डिमांड रहती थी?
3: क्या सर?
0: आपकी क्या डिमांड रहती थी रक्षाबंधन पर, क्या चाहिए होता था आपको?
3: सर हमें कुछ नहीं, सिर्फ भाई का प्यार चाहिए, उससे जो समझ में आए वो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
0: अच्छा
3: कोई डिमांड नहीं होता था।
0: अच्छा कोई ऐसी आदत जिसकी वजह से आपके भाई आपके मम्मी पापा से बहुत डांट खाते थे? बहुत बहुत हमारे अंदर बहुत ऐसे कांड हमने किए ना, मेरी बहनें बहुत शिकायत करती थी। क्या नहीं था?
3: डांट खाने वाली बात नहीं थी हम लोगों
0: को। अरे कुछ तो होगी, एक बात तो होगी, आप बता नहीं रहे भैया, आपके सुन रहे हैं क्या? अच्छा ड्यूटी पर है, आज भी ड्यूटी पर है? ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन यादें तो बहुत सारी होंगी, आपको याद भी आता होगा।
3: यादें तो बड़ी रहती है सर,
0: यादों के सहारे फिर जिंदगी कटने लग जाती है।
3: आप मुंह मीठा किया कि नहीं?
0: अब आ गई हैं हमारी रिंकी बहना।
3: जी।
0: बस होने वाला है अभी, अब आप लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जैसी कर चुकेंगे उसके बाद बिल्कुल
3: मीठा करते रहो कि आवाज और मधुर निकले।
0: आहा देखिए ये होती है भाई बहनों की प्यार और उसकी चाह,
3: बहनों को चाहिए कि मुंह मीठा करती रहे आपका।
0: सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तो
3: आवाज भी मीठा और निकले।
0: बिल्कुल, और क्या, आज की जो खास बात ये है कि भाई इतनी दूर है लेकिन आपने वापस से कॉल किया, और आपको अपनापन अगर थोड़ा सा भी फील हुआ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी।
3: रक्षाबंधन में,
0: अरे वाह बहुत बढ़िया।
3: अच्छा
0: अच्छा,
3: वो भी मजबूर है, एलएनटी में उसका ड्यूटी चल रहा है।
0: हाँ बिल्कुल समझते हैं उस चीज को। तो आप भाई बहनों का प्यार सदा ऐसे ही बना रहे, बहुत सारा आशीर्वाद।
3: आपको भी भाई मानकर आपसे बात कर लिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, और हम जरूर कोशिश करेंगे, हम बहुत सारी दुआएं देंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें।
3: जी
0: सर, नमस्ते। जी नमस्ते, धन्यवाद। सो ये थी हमारी रेनू जी, और जिन्होंने हमको कॉल किया गोंडा से ही, और देखिए ना कि ऐसे भी भाई बहन हैं जो आज के दिन भी फ़िलहाल नहीं मिल पाए हैं और किसी कारण से दूर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन आइए फ़िलहाल अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन है अगली कॉल पे। हाँ जी हेलो।
4: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, महाराष्ट्र से आ रही है क्या ये आवाज़?
4: अरे वाह, फिर तो नाम भी बताइए।
0: नाम हमारी रिंकी जी बताएंगे। रिंकी जी आप पहचान नहीं, कौन है ये?
1: जी तनुश्री है।
0: आहा।
4: अरे अरे अरे, गोंडा गोंडा तो मेरा इतना दिन के करीब हो गया कि सब आ रहे मुझे पहचानने लगे।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे ये जो रिंकी जी हैं ये आप ही की तरह रेडियो बहुत अच्छे से सुनती हैं, और आज रक्षाबंधन के दिन मुझसे स्पेशली मिलने आई थी।
4: अरे वाह, फिर तो आप दोनों को और हमारे सभी सुनने वालों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामना।
0: आपको भी बहुत सारी शुभकामना, लेकिन आप पहले ये बताएंगे कि आज आपकी शुरुआत कैसे हुई?
4: कैसे हुई मतलब?
0: मतलब भाई बहन के झगड़े से हुई, आपने कोई डिमांड करी, आपके भैया ने क्या किया, ये आप बताएंगे।
4: सर मैं सब बताना चाहती हूँ, मैं और मेरी बहन मतलब हम दोनों ही है, तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए, वो मुझे भाई मानती है मैं उसे बहन मानती हूँ, जब राखी का त्योहार आते है तब वो मुझे राखी बांधती है मैं उसे राखी बांधती हूँ।
0: क्या बात है भाई, ये तो सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा। मतलब आपने जो बताया है कि बहने हैं आप दोनों, लेकिन एक दूसरे को भाई बांधती है और एक दूसरे को राखी भी बांधती है।
4: भाई नहीं,
0: नहीं गलती करने में बांध देते होंगे ना भाई समझ करके। हाँ मतलब माँ और भाई में ज्यादा फर्क तो है नहीं, माँ के ऊपर थोड़ा सा एक गोला बना दो आगे जा करके तो माँ भा बन जाता है, तो इसलिए भा और माँ में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है।
4: और वो मुझे जब मैं राखी बांधती तो वो मुझे गिफ्ट देती है, जब मैं राखी बांधती तो मैं मतलब वो राखी जब मुझे बांधती तो मैं उसे गिफ्ट देती है, इसलिए हम दोनों में मतलब वही बचपन की मतलब भाई बहन हो या सिस्टर हो मतलब ना तो वही आता है ना, भाई के साथ भी वही और बहन के साथ भी वही।
0: अरे वाह, तो क्या आप लोग की आपस में कोई डिमांड होती है कि नहीं?
4: बहुत सर।
0: बहुत होती है, क्या क्या डिमांड रहती है, कैसी कैसी चीजें आप लोग मांगते हो एक से?
4: मतलब बहुत सर, जब खेल में वो हार जाते तो मुझसे पैसे, मतलब जब मैं खेल में हार किसी मतलब हम बेट लगाते किसी खेल में बेट लगाई और वो जीत गए तो मुझसे पैसे लेती लेती है।
0: अच्छा।
4: पर वो जब जब वो हार जाती है ना तब मुझे लेने का मन नहीं होता, जब वो मुझसे छोटी है ना तब फिर भी मैंने उससे पैसे लिए ना फिर दूसरे दिन उसे चुपका देती हूँ मैं।
0: ये देखिए भाई रिंकी जी कि भाई नहीं है लेकिन देखिए मस्ती कितना आराम से हो रही है, भाई मान भी रहे हैं और बहने बहने कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
1: जी ऐसा तो होना चाहिए, और मैं बचपन की अपनी बता रही हूँ।
0: हाँ।
1: मेरा भाई बहुत हम लोग तीनों चारों भाई बहन बहुत शरारती थे।
0: अच्छा।
1: तो बचपन में हम लोगों को 5 रुपया मिलता था, वो 5 रुपया लेके सामान खरीदती थी। और मैं अपने भाई के बारे में बता रही हूँ, वो बचपन में अपना नाम बोलता था, उसका घर का नाम है राजू, तो राजू नहीं बोल पाता था, आजू बोलता था।
0: आजू।
1: साइकिल को बोलता था डिंगडांग
0: डिंगडांग।
1: जी ऐसी बातें याद आ,
0: ऐसा ऐसा कुछ आप भी बोलते हो तनुश्री, कोई अलग सा नाम किसी चीज को लेकर गया?
4: नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में तो मेरी नानी के घर थी ना, तो फिर जब मतलब बड़ी हो गई ना तब मेरे पास आई ना, तब जब बचपन में हम जो शरारतें नहीं करते हैं ना बड़े होकर मतलब शरारतें करने लगे।
0: अच्छा चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हो क्या बात है भैया, बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी मचाया बहनों ने मिलके। वैसे बहन उर्फ भाई जो भी आप मानती हैं अपनी छोटी बहना को, उसके लिए डेडिकेट करेंगी कोई 2 लाइन गाना गा करके?
4: जी सर जी, जब वो मुझे याद आती है ना सर, ये की गाना मुझे याद

0: क्या बात है,
1: याद आता है।
0: थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिश्ता है आप दोनों बहनों का, और ये रिश्ता यूं ही कायम रहे, यूं ही आप लोग एक दूसरे को भाई और बहन दोनों ही मानते हुए सारी उम्र गुजार दे हंसी खुशी, हम यही चाहते हैं।
1: ओके बाय
0: बाय,
1: सबको फिर से एक बार राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में तनुश्री, जिन्होंने बातचीत किया महाराष्ट्र से, और देखिए ना लगातार कॉल साथ ही जा रही है। पिंकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, सोच रही हैं कि भाई हम अपनी बात कब करेंगे अगर हम साथ कॉल सी लेते रहेंगे। खैर हम बिल्कुल आपको मौका देंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉल। हाँ जी हेलो।
2: हेलो
0: जी, हमारे अविनाश जी आपका स्वागत है।
2: अरे वाह क्या बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अविनाश जी।
2: जी जी आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो क्या बोलते हैं हमारे ज्ञानस्थली की जितने भी बहना है सभी आपके हाथों में भर भर के राखी पहना है।
0: आपने लिए क्यों नहीं बोला आपने? अच्छा आप जैसे कुछ लोग हैं जो आज मार्केट में निकलते नहीं है कि कोई राखी ना बांध दे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: जी जी, क्योंकि अगर अगर सबसे अगर बनवाने चलेंगे तो आपका जितने भी जमा पूंजी सारा खाली हो जाएगा।
0: इसीलिए वैसे पता है अविनाश जी, ये जो आज का दिन होता था ना, जब हम लोग अपना 9th 10th फर्स्ट ईयर और 12th में थे, तो कोचिंग आज के दिन बिल्कुल नहीं जाते थे, हिलते ही नहीं।
2: ये बात तो सही है, क्योंकि जब जब भी वहाँ पर जाते थे मतलब कि क्या बताए, वो जो जितने भी हमारे जब पढ़ते थे कोचिंग में या फिर स्कूल में होते थे, मतलब कि सभी पूरी तैयारी के साथ आते थे, और हम लोग मतलब कि वहाँ से किसी तरह से पत्ती गले से निकलने की कोशिश करते थे, यहाँ से बच के निकल जाए,
0: है ना?
2: जी जी बिल्कुल, ये बात सही है।
0: अब हमें नहीं पता कि आप कैसे थे, लेकिन मेरी हरकतें बिल्कुल ऐसी थी नहीं, तब भी हम लोग पता नहीं क्यों बचते थे। एक डर था, डर था कि डर कहीं तो कोई बांध ना दे पकड़ करके। और मुझे लग अविनाश जी, अविनाश जी मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं बाकी लोग, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा हाँ ये तो हम भी करते थे। कोई नहीं बोलता है, हम और अविनाश जी थोड़ा सा ज्यादा ही आत्मविश्वास के साथ बोल रहे
2: हैं। डर ये था ना कि घर में जो बहने वही हमसे नहीं समझ ले जाती, उनके डर से मतलब कि हम कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते, और अगर बाहर इतने साल मिल जाए तो फिर तो मतलब कि हम लोग ऐसे दबोचे जाएंगे कि अब घर में भी खतरा है बाहर में भी खतरा है, जाए तो जाए
0: तो जिए कहाँ, जिए कहाँ। वाह क्या बात है। बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे बहन को लेकर के, आज का कोई संदेश आपकी तरफ से?
2: जी संदेश तो बस यही कहेंगे कि मतलब कि जितने हमारे बहने हैं वो सभी खुश रहें, और भाई इसी तरह से उनको सुरक्षा के जो दायित्व वो रक्षा जब बांधती है बहन, तो उनके भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ करते हैं, तो सभी भाइयों को यही अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक हम जीते रहेंगे तब तक हम अपने बहन के लिए मतलब जीत और जी लगा देंगे कि मतलब कि उनकी सुरक्षा देने के लिए, और उनकी मतलब कि अच्छे से अच्छे परवरिश हो या फिर सुरक्षा हो, मतलब कि उनको जैसे कि हम अपना बहन बेटी इसी तरह से मान के चलें, और जो भी हमारे जो भाई हैं अगर ऐसे सभी अगर सोच रखें तो हमारे जो देश में जो आजकल जो हमारे काफी महिला हो या बहन बेटी हो उन सबके साथ जो कुछ दुष्कर्म होता है, तो इस सबसे हम सभी अपने मतलब कि काफी हद तक हम संभाल पाएंगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल
2: जी, तो आपने
0: बेशक बिल्कुल जिस तरह से आपने बात अपनी रखी, थैंक यू सो मच अविनाश जी। और मुझे लगता है आपको भी एक बार वापस से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जो जो बहने बच गई थी वो आज आके आपको राखी बांध दे। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: इसमें इसमें मैं अगर बोलूँ तो मेरे 3 बहना है और उन्होंने क्या है कि बचपन में मेरा बहुत बहुत पिटाई होता था, इसलिए जब उनकी शादी हो गई तो मैं बहुत खुश था, चलिए अब तो मैं अपने अपने मन का अपना मन का राजा हूँ। लेकिन बाद में पता चला अरे जब तक वो थी तब तक मैं एक अनुशासन में था, उसके बाद कोई मतलब कि अब कोई देखिए अगर हम कुछ टारगेट ले जिंदगी में या फिर मतलब किसी का अनुशासन रहे तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब अपने मन का हो जाते हैं तो फिर हम अपने जो दिशा होता है वहाँ से भटक जाते हैं कभी कभार।
0: बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं उन 3 बहनों की बात नहीं कर रहा था, उन 3 के अलावा वाली जो बच गई थी कभी किसी जमाने में वो आज आके बांधे, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ताकि आप अभी आगे आगे जिंदगी में भी अनुशासन में ही रहे आप।
2: मैं अपने मतलब कि दायरे में तो हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि आप मतलब कि एक हरकत में बंधा रहूँ।
0: नहीं नहीं, बंधे आप बिल्कुल नहीं रहे, आप पूरी उड़ान उड़िए, मतलब आप कमेंट्री करते रहिए दिल से और उसके अलावा आप अनुशासन में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल बेशक, थैंक यू। सो ये हमारे अविनाश साहब थे जिन्होंने हमसे बातचीत किया, और देखिए ना लगातार हम लोग कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है। वैसे चलिए अगले कॉलर को लेते हैं। हाँ जी हेलो, मुझे लगता है कि आप किसी स्पीकर के पास में हैं और थोड़ा सा दूर हट जाएं या उस स्पीकर को बंद कर दें क्योंकि हमारी आवाज़ रिटर्न आ रही है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
3: बस वही पुराने।
0: पुराने?
3: हाँ।
0: रिंकी जी ये पुराने कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग?
4: बादल जी हैं शायद।
0: बादल जी हैं? ये तो कई दिन से घेरे हुए हैं। ये यहाँ भी आ गए? ये यहाँ भी आ गए?
3: हमारी बहन जी अभी बदल भी रही है, बाहर निकल के देखिए।
0: अरे वाह। कैसे हैं आप, अपना हाल चाल बताइए।
3: बस चंगा जी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपका दिन कैसा रहा, थोड़ा सा शुरुआत के बारे में बताइए प्लीज।
3: शुरुआत वैसे हुई थी जैसे रोज होती है।
0: रोज जैसे कैसे हो गई? आज थोड़ा सा अलग होना चाहिए था ना, धमाका माका होना चाहिए था।
3: धमाका भी होगा, अभी तो बहुत बाकी है।
0: अभी बाकी है
3: और क्या,
0: पिक्चर अभी बाकी है।
3: पिक्चर अभी तो ट्रेलर है।
0: वाह क्या बात है। तो बहन आपकी हैं या आप भाई भाई हैं?
3: नहीं बताया तो वर्षा बादल अंबर पहले ही बताया उस दिन, अभी संडे को ही बताया, आप भूल गए इतना जल्दी।
0: नहीं यहाँ पे अभी हैं घर पे कि नहीं, हम ये पूछ रहा।
3: नहीं वो लखनऊ है, अभी चलेंगी।
0: अच्छा अभी वहाँ से चलेंगी। जेबें आप लोगों ने टाइट कर ली है? जेबें टाइट कर ली है अपनी अपनी?
3: जेब से अब काम कहाँ चलता है, अब तो ज्यादा खर्चा करना पड़ता है।
0: क्या मतलब, 2-4 जमीन अमीन जो है उसमें से एक लिखना पड़ता है क्या? क्या बात। अच्छा ये पक्का जब 2 घंटा बचता है बहन, जैसे वहाँ से चलती है लखनऊ से, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास का सफर है, तो 2 घंटे से पहले क्या क्या तैयारी आप करते हैं?
3: हमें कौन सी तैयारी करनी है?
0: अरे मतलब क्या,
3: भोजन की तैयारी किया जाता है बस।
0: भोजन की तैयारी करते हैं, उसके बाद जब बहाने के मन में सोचते होंगे कि अगर ये पूछा तो ये बोलना है, फिर ये पूछा तो ये बोलना है।
3: नहीं बहाना कुछ मारने की गुंजाइश रहती
0: है। अरे आप हमसे इतना मार लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं।
3: नहीं, नहीं, वहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती।
0: अब वहाँ पकड़ लिए जाते हैं, दिक्कत ये है।
3: हाँ, जाओगे कहाँ?
0: जाएंगे कहाँ, क्योंकि भैया बचपन से तो देखा है, रग रग से वाकिफ हैं आपके।
3: नहीं, घर में दरवाजा एक ही है ना।
0: अच्छा भागने का दूसरा द्वार भी नहीं है।
3: दूसरा द्वार भी है।
0: और अगर भागते भी है तो दूसरा भाई द्वारपाल बन के पकड़ लेता होगा।
3: दो दरवाजे होता है तब तो आदमी पीछे से निकल जाए।
0: सही बात है, हम गए हैं तो तुम कैसे बच सकते हो। वैसे सुनने में आता है आप भी अपने कोचिंग टाइम पे जाते नहीं थे आज के दिन।
3: कोचिंग हमारा सब हमारा को कॉलेज नहीं था कोई, हमारा सब बॉयज ही था।
0: अरे तो उसमें रक्षाबंधन कैसे मनाते थे आप लोग?
3: कहाँ रक्षाबंधन, छुट्टी रहती थी।
0: छुट्टी रहती थी? नहीं तो मतलब आप घर वर से बाहर निकलते नहीं थे, मैं ये मतलब जहाँ तक पता है।
3: अब घर में ही थे, मामा की बिटिया हैं, सिस्टर हैं, तो बहुत लोग घर में ही थे, तो बाहर जाने।
0: उसके बाद शाम में भी नहीं निकलते थे आप?
3: शाम में निकलते थे वैसे मार्केट मान लीजिए,
0: हाँ
3: फिलहाल कोई भेंट नहीं होती,
0: भेंट नहीं होती थी। दो तीन दिन सार्वजनिक स्थान पे आप नहीं जाते थे, परहेज करते थे?
3: नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
0: अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, तब ठीक है।
3: हमारा 1-5 तक जो है स्कूल में रक्षाबंधन होता था।
0: 1-5, अच्छा।
3: तो वहीं पर जो है हमारी एक वहाँ सिस्टर थी विभा सिंह, वो हमको राखी बांधती थी।
0: अरे वाह,
3: 5 साल वही। उसके बाद फिर 6 से हमारा सब कॉलेज बॉयज हो गया।
0: कॉलेज
3: जब से कभी जो है ये सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ।
0: ओहो हो हो जी। कभी किसी दोस्त से, कभी किसी भाई से मिलकर बहन वाली फीलिंग नहीं आई?
3: ना ना ना ना।
0: कि भाई ये तो हमारी बहन की तरह हड़का रहा है, ये तो उनकी तरह सवाल जवाब कर रहा है, ये तो हिसाब किताब बहन की तरह ले रहा है।
3: ऐसा कुछ नहीं था।
0: अच्छा। अच्छा, वैसे वाकई बहनें जो है रग रग से वाकिफ होती है। जब कभी आप किसी अपने दोस्त के साथ बैठे और बहन आंखों आंखों में इशारा करे कि ज्यादा मत बनो बेटा, नहीं तो अभी
3: और खुल जाएगी।
0: उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा हम लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं, बड़े उसमें, अरे नहीं भाई ऐसा का कुछ।
3: और अभी खुल जाएगी कुछ देर बाद।
0: बहुत मजेदार, मतलब इस रिश्ते को तो जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत खूबसूरत होता है ये रिश्ता, सच में बहुत खूबसूरत होता है।
3: वो तो है ही
0: है। बिल्कुल। और मैं
3: जो कंटिन्यूटी लोग बहुत ही जो है उमंग के साथ बनाते हैं,
0: सही बात है,
3: और जिसमें जो है कोई भी चेंज कभी हुआ नहीं, वही रक्षाबंधन, वही मिठाई, वही सब कुछ, कुछ भी इसमें चेंज होने की गुंजाइश नहीं है, जो शुरू से आ रहा है वही है।
0: बेशक, सही फरमाया आपने। और ये त्योहार बहुत शदीद सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब सभी लोगों के जरिए बहुत ज्यादा माना जाता है। और इस खास
3: राजस्थान कल्चर में घेवर है, तो घेवर आज भी सब जगह पसंद किया जाता है।
0: घेवर बिल्कुल,
3: समाज में सेवई की खीर बनती है तो वो सबके यहाँ वही बनती है, मतलब कुछ भी ट्रेडिशनल भी चेंज कुछ नहीं हुआ।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
3: दीपावली वगैरह में तो दिया की जगह लाइटिंग ने ले ली, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व रहा जहाँ पे ट्रेडिशनल जो शुरुआत से चलता आ रहा है वही सेम टू सेम है,
0: वही रहा। जैसे आप अपना परिचय बताते हैं, हम वही पुराने है ना,
3: हम वही पुराने
0: ट्रेडिशनल। अचानक से मुझे याद आ गया आपका ट्रेडिशनल, हम बस वही आपका नाम ही पड़ जाएगा यहाँ पे, वो पुराने भैया कॉल किए थे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, आपने कॉल किया और बहुत अच्छा लगा, और आपको एक बार वापस से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद प्रभु, आपको भी, ज्ञानस्थली परिवार को भी।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो भाई, ये थे हमारे साथ में बादल गोयल जी, जिन्होंने गोंडा से ही कॉल किया था। और देखिए कितनी प्यारी बात की। अब बात आई है हमारी रिंकी जी, पिंकी जी बैठी हुई हैं। हम रिंकी बोले या पिंकी बोले?
4: पिंकी मत बोलिए, पिंकी मेरी बहन थी, वो अब इस दुनिया में है नहीं।
0: ओके, रिंकी हूं। आप रिंकी हैं,
4: घर का नाम रिंकी था पर सविता दुबे मेरा असली नाम है।
0: तो नकली नाम?
4: नकली नहीं है वो। अच्छा। बचपन घर की नाम है रिंकी।
0: कोई बात नहीं, रिंकी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्या हम लोग रिंकी बुला सकते हैं आपको?
4: बोल सकते
0: हैं। ठीक है, मैं पक्का ना बाद में कोई मुकदमा तो नहीं दायर करेंगे?
4: नहीं, कुछ नहीं, क्या मुकदमा दायर करूं, कुछ भी नहीं।
0: सो आज आपका दिन कैसा रहा, सुबह आपकी कैसी रही?
4: सुबह का दिन सही रहा। मैं चाहती थी कि बहुत जल्दी आ सकूं वहाँ पर, आ नहीं सकी, इतना भीड़ था रास्ते में कि मैं आ नहीं सकी। 9:30 तक पहुंचना चाह रही थी।
0: अच्छा,
4: 10 के बाद पहुंची।
0: अरे वाह, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि नियत बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपने किसी चीज़ को चाहा है, नियत है, आपकी आने की नियत थी मिलने की, और देखिए आप आ गई, आपसे मुलाकात हुई, ये बहुत बड़ी बात है। कॉलर और आ रहे हैं, ले ले हम, अगर आप इजाज़त दें। ओके, सभी को कुछ ना कुछ कहना है। हाँ जी, हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, रईस साहब बोल रहे हैं।
5: जी साहब, सलाम भाई,
0: कैसे हैं आप?
5: मैं एकदम ठीक हूँ। आप सविता दुबे जी को नमस्कार।
4: नमस्ते आपको भी।
5: आप ठीक ठाक हैं सविता दुबे जी?
0: थोड़ा सा आप स्पीकर से दूर हो हट जाइए क्योंकि ये बार-बार आवाज जो है रिपीट हो रही है। हाँ
5: जी सर।
0: हाँ अभी अभी बताइए कैसे हैं आप?
5: मैं एकदम ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रक्षाबंधन को लेकर के?
5: मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा रक्षाबंधन पे, जो भी सुन रहा है हमारे रेडियो देशवासियों को। और आज सविता दुबे जी जो बोलती हैं तो उनकी आवाज पतली आती है, लेकिन आज जब बोल रही थोड़ा सा आवाज भारी आ रही है।
0: आज बटखरा रख के बोल रही है।
5: अरे थोड़ा सा भारी है आवाज।
0: एडमिशन कराया गया था इनका नर्सरी में ही, फिलहाल आज बैग वैग ले करके आई है यहाँ पे।
5: और मैं ये कहना चाहूंगा अपना कि एक एक कस्टमर को पहचानती है हमारी सविता दुबे,
0: है ना, सबसे बड़ी बात।
5: अभी तनुश्री का फोन आया तो उनको बता दिया, फिर बादल भाई का बता दिया।
0: असल में रोज रेगुलर बनी रहती है ना 89.6 एफएम पर।
5: जी जी जी।
0: तो ये रिंकी जी का हमारा हमसे कहना है कि रईस भाई जो ऐसे मुबारकबाद दे रहे ऐसे माना नहीं जाएगा, मतलब रक्षाबंधन है तो मतलब
5: दुकान पे हमारे जो भी हम खिदमत कर
0: देंगे। अरे बहुत बड़ी बात है ये आपने कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं बस ये प्यार ही बहुत बड़ी बात है जो आपने कहा, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज का दिन ऐसा होता है कि सही में हम जिसको बहन मानते हैं जो वो रिश्ता होता है, तो वाकई बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं आज के दिन को लेकर के, ये बात सच है। और मैं चाहूँगा जो आप जिस मूड में मुझे लग रहे हैं, मैं लगता है एक गाना तो आप डेडिकेट करने वाले हैं बहनों को, तो दो लाइन ज़रा सुना दीजिए आप भी।
5: दो लाइन कोई गाना?
0: हाँ, लगे हाथ आपका भी हम नाम इसमें लिस्ट में दर्ज कर दें, नोट कर लें।
5: बस दो लाइन सुना देता हूँ।
0: बस दो लाइन, बस दो लाइन, ढाई भी नहीं, दो सिर्फ। हाँ
5: जी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है।
0: क्या बात
5: है, सबका कहना है, सभी को मुबारकबाद भैया। अरे
0: वाह। और ये हमारे रईस जी हैं जो कि ईदगाह मार्केट से सुनते हैं, और सभी को आपने मुबारकबाद दी रक्षाबंधन की, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रईस जी, आपको रक्षाबंधन की।
5: शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। सो इनको तो आप जानती होंगी हमारी रिंकी जी, बताइए।
4: जी सुनती हूँ, पर इनका दुकान सुकान नहीं जानती।
0: अच्छा, इनकी दुकान नहीं जानते? कोई बात नहीं, कोई भी आप ईदगाह के सामने से कभी गुजरी कह दिए वो जो बहुत बढ़िया गाना गाते हैं उनका ज़रा आप दुकान बता दो, तुरंत ऐसे लोग बताएंगे वो वाली दुकान है, वो वाली दुकान है। और आप दुकान के पास जाओगे जब मार्केट में हॉर्न हर तरफ सुनने को मिल रहा होता है, उस वक्त रईस साहब की मीठी सी आवाज़ में आपको गाने सुनने को मिलेंगे। देखिए इस वक्त रईस साहब सुन रहे होंगे, उनको ऐसा लगा होगा हाँ देखिए मैं उनके बारे में कितना ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं उसी रास्ते से गुजरता हूँ ना, तो अक्सर वो गुनगुनाते हुए मिल जाते हैं।
4: अच्छा,
0: 7-8 लोग वहाँ पास में बैठे रहते हैं, आराम से सुना करते हैं उनके गीत को।
4: अच्छी बात है, गुनगुनाना तो चाहिए इंसान।
0: बहुत गुनगुनाना चाहिए, और वो बहुत अच्छा उम्दा गुनगुनाते हैं, ये रईस साहब भी जान रहे हैं हमारी बातों को सुन करके। थैंक यू सो मच। फिलहाल एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। हाँ जी हेलो। हेलो, हाँ जी एक बार वापस से।
6: हेलो,
0: हाँ जी हेलो, अपना नाम बताइए।
6: नमस्कार, ओमश्री देवी प्रसाद, उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया वाले।
0: नमस्कार देवी प्रसाद जी, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है, कैसे हैं आप? हेलो जी देवी प्रसाद जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, ऑलराइट। सुबह ये हमारे साथ में देवी प्रसाद जी जुड़े, लेकिन फ़िलहाल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फ़िलहाल प्रोग्राम को पूरा मुकम्मल करने का वक्त भी आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम रिंकी जी की तरफ से एक बार वापस चलेंगे और पूछेंगे कि जाते जाते क्या संदेश है आपका रक्षाबंधन को लेकर के।
4: रक्षाबंधन का मेरा संदेश यही है कि भाई बहन का पर्व है, पर आपको जो आज जो जूझ रहे जिस चीज़ से, जो नेपाल में हुआ है वो किस लिए हुआ है वो सभी को पता है, बर्फ़ पिघल के गिरा है इसके लिए हो रहा है, पर इसके लिए इंसान को ही रक्षा करना चाहिए। पेड़ पौधे जिस तरह से काटा जा रहा है, जिस तरह से प्लास्टिक का व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, ये सब ना होना चाहिए। इसके वजह से आज हमें इस साल देखियो असम में भी हुआ है ऐसा अवस्था, आज परसों को जो हुआ है, सब इसके पीछे इंसान का ही दोष है मैं मानती हूँ।
0: सविता जी, और मतलब आपने इतनी बड़ी बात, इतनी अहम बात की तरफ इस बातचीत को मोड़ दिया है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले दो दिन से हम रील देख रहे हैं लगातार कितनी तबाही मची है नेपाल में
4: जी।
0: और आपने कहा कि जिस तरह से हमने पूरी प्रकृति को ही बदल कर रख दिया है कि अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और पिघलने से न सिर्फ वो त्रासदी आ रही है बल्कि आने वाले भविष्य का खतरा मंडरा रहा है कि इंसान कैसे सर्वाइव कर पाएगा इस धरती पर जिस तेज़ी के साथ गुजरते सालों में और वक्त में चीज़ें बदल रही हैं
4: जी सर।
0: और आपने कितनी अच्छी बात कही, हम रक्षा की बात तो करते हैं बहनों की, मुझे लगता है बहनें हो या भाई, किसी की बहन हो या ना हो, भाई किसी का हो या ना हो, प्रकृति हम सब की है, हम सब प्रकृति के हैं। तो आज उस प्रकृति को, उन पेड़ों को, उन धुएं से रक्षा, उन प्लास्टिक से रक्षा, उन फालतू बहते पानियों से रोकना, ये हमारी जिम्मेदारी है।
4: जी जी सर,
0: बहुत प्यारी बात कही आपने, थैंक यू सो मच कि आपने इस बात को लेकर आए और हम सब लोगों का ध्यान आकर्षित कराया एक ऐसी बात की तरफ जिस पर हमारा पूरा भविष्य, हमारी पीढ़ी, हम खुद उस पर डिपेंडेंट है।
4: जी
0: थैंक यू सो मच।
4: और मैं दो लाइन गुनगुना चाहती
0: हूं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज।
4: बहनों ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा ये सॉन्ग आपने गुनगुनाया, डेडिकेट किया, थैंक यू सो मच। और देखिए इसी बीच में हमारे ऑफकोर्स आजा जी ने बोला है, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन सभी भाई बहनों के जीवन में खुशियां, समृद्धि और प्यार लेकर आए, भाई बहन का ये खूबसूरत रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत और खुशहाल बना रहे, थैंक यू सो मच। मिश्रो ऑप्टिकल गोंडा की तरफ से सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आपको भी थैंक यू। एंड हमारी गीता श्रीवास्तव जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो नगेश्वर का भी मैसेज आ गया है, आप भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश से नगेश्वर, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो है हमारे मुकेश जी भी मौजूद हैं, मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है, स्वागत है। साथ ही आज का ये ख़ास प्रोग्राम कैसा रहा हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते अब एक और ऐसा जो गीत फ़िलहाल रक्षाबंधन को लेकर के डेडिकेटेड है वो हम आप तक पहुंचाए देते हैं, लेकिन आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमको ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9286-9860-9817-96। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे समता, क्या हुआ, क्यों इतना खांस रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ये थर्मामीटर ये क्यों रखा है? तुम्हें बुखार है क्या? अरे यार, कुछ तो बोलो सही।
7: हाँ दीदी, राधे राधे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और खांसी भी आ रही है। लग रहा है थोड़ा बुखार भी है।
8: किरण दी, मैंने समता दीदी को काढ़ा भी पिलाया है और दवा भी दी है, अब शायद उनको आराम हो गया होगा।
9: अरे नन्हे

0: अरे दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे भी छींक आ रही है रात से और गले में दर्द भी है।
1: काढ़ा पियो काढ़ा। किरण दी, आज गांव नहीं चलेंगी क्या?
2: चलूंगी चलूंगी बाबा, पर समता और शिवानी को यहीं छोड़ दूंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो परेशान भी हो जाएंगी।
3: नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी गांव। मैंने दवा भी खा ली है और काढ़ा भी पी लिया है।
4: देखा मेरे बनाए हुए काढ़े का असर? किरण दी, जरा आप इन लोग को बता दीजिए मैंने काढ़े में क्या क्या डाला है।

0: जया ने काढ़े में अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और अमरूद की पत्ती, सहजन की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गुड़ और हल्दी, ये सारी चीजें पानी में डालकर थोड़ी देर पकाया है।
1: अरे वाह, अब तो मैं भी बनाकर अपनी नानी को पिलाऊंगी, उन्हें बहुत खांसी आ रही है।
2: हाँ हाँ रचना, क्यों नहीं, उनको भी दे दो।
3: अरे किरण दी, एक बात बोलूं, आप क्यों ना यही गांव में ही छप्पर के नीचे किरण आयुर्वेदिक केंद्र खोल लीजिए, जिसमें आप अनेक बीमारियों से ठीक होने की घरेलू जानकारी और दवा दोनों ही दीजिए।
4: सवर रंग मोर पिया नी को न लागे। हे सवर

0: हाँ किरण दी, इससे गांव वालों को कुछ घरेलू दवाइयों के बारे में जानकारी भी होगी।
1: हाँ हाँ, और तो और रोज शहर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
2: हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम सब मिलकर मेरा शहर से पत्ता काटने में लगी हुई हो।
3: तो क्या दिक्कत है किरण दी, हम सब एक हफ्ते आकर आपसे मिल जाया करेंगे, क्यों जया?
0: हाँ बिल्कुल समता दी, क्यों नहीं।

0: तो बताइए किरण दी, आप अपना केंद्र कब खोल रही हैं?
1: हाँ हाँ शिवानी, बिल्कुल अपने नाम से ही खोलेंगे, किरण आयुर्वेदिक केंद्र। लेकिन थोड़ा सोच विचार भी कर लेने दो भाई।
2: हाँ हाँ, आप खूब सोच विचार कर लीजिए, आपको सोचने का पूरा मौका दिया जा रहा है। पर आपको कुछ तो करना होगा गाँव वालों के लिए, क्यों दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, जो मुझे आता है और जो अपने लिए करती हूँ। देखो, घरेलू सामानों से अपनी परेशानी को कम किया जा सकता है। हमारे रसोई घर में तमाम ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम सब्जी वगैरह में तो प्रयोग करते हैं, पर दरअसल सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें ये पता नहीं होता है।
3: बिल्कुल सही कह रही है दी, अगर उसे हम सिस्टमैटिक ढंग से इस्तेमाल करें तो उसका कुछ और भी फायदा हो सकता है। तो अब आप बताइए कि हम लोग किस मसाले को कैसे इस्तेमाल करें, क्यों समता दी?

0: बताती हूँ, सुनो सब लोग गौर से। अरे अरे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी हमारी काकी जी आ गई हैं।
1: का बताई बहन जी, हमारे लोग तो बहुत परेशान हैं। पेटवा तो हमेशा बगद जात है और खोखी दिन रात आवत।
2: काकी जी इधर आके बैठ जाइए, काका आप भी आइए, इधर बहुत जगह है, बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर।
3: हाँ दी, बताइए क्या बताने जा रही हैं आप।
0: तो सुनिए, सब लोग आराम से पहले बैठ जाइए। देखिए, मेथी का उपयोग आप सभी लोग सब्जी बनाते समय पहले डालती हैं, फिर सब्जी छौंक लगाती हैं। तो वही मेथी दाना अगर रात में सोने से पहले 25 से 30 दाना फाँक कर पानी पी लीजिए, इससे आपका पेट तो साफ ही होगा और आपको ताकत भी मिलेगी।
1: हाँ बहने, हमार तो पेटवा ना साफ होत है, दिनम कई बार सिवाने जायत है, का करी। अब सोवे से पहले मेथी खाए लेवा करब, तब देखी शायद फायदा कई जाए।
4: भाभी खोलो

0: किरण दी, एक बात मैं भी बता दूं कि अगर आपको सर्दी खांसी परेशान कर रही है, बार बार सर्दी जुखाम हो जाता है, तो अदरक घिसकर उसका रस निकाल लें और एक चम्मच शहद मिला लें और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर सुबह शाम उसे चाट लें, तो बार बार सर्दी जुखाम नहीं होगा।
1: वाह समता दी, अब आप भी चप्पर छा लीजिए गाँव में।
0: अरे नहीं शिवानी, ये सब हमने किरण दी से ही सीखा है और अपने घर में इसे अप्लाई भी कर रही हूँ और इसका ज्यादा, बहुत ज्यादा असर भी हुआ है।
2: अरे वाह समता दी, वेरी गुड।
1: बहिनी, अब हम सब है वही करबे जो ना आप कही हो। बताओ, दिना रतिया चोकोम रहित है, लेकिन ई न जानित है कि कौन मसलवा कब खाई की इतना फायदा कही जाए।
3: काकी जी, आप जब सुबह टहलने जाती है तो ब्रश करके जाती है ना, तो रास्ते में अगर अमरूद का पेड़ मिल जाए तो दो पत्ती अमरूद की, दो पत्ती पीपल की, थोड़ी सी करी पत्ती, सब मिलाकर कूच कूच कर खा लें। फिर घर आकर आधा ग्लास गुनगुना पानी पी लिया करिए। ऐसा 15 दिन लगातार करिए, फिर देखिए

0: किरण दी, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सबके लिए है, चाहे कोई गांव का रहने वाला हो या शहर का।
0: ओके ओके। किरण दी, घर भी चलना है, मुझे शादी में जाना है, जल्दी चलिए ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जया, शीघ्र ही चलती हूँ।
2: बहने, और कुछ हो बता दो हमें सबका।
3: काकी, इस बार जितना किरण दी ने बताया है उतना करिए, फिर अगले शिफ्ट में हम लोग आएंगे और बहुत कुछ बताया जाएगा।
2: ठीक है दीदी, चलिए, आपका ड्राइवर गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है, चलिए आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ।
1: तो चलो चलते हैं, सभी को राम राम, राम।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन. भाई वक्त हो चुका है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, क्योंकि बज चुके हैं 12. आज दिन है शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी. जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, जहाँ होती है आपकी सेहत की बात. भैया देखिए, आजकल ना मौसम थोड़ा सा रंगीन हो गया है, रंगीन और रंग बदलता भी रहता है. वो इसलिए देखिए, अभी धूप है, अभी बारिश हो जाएगी, अभी बादल हैं, अभी कुछ, और बारिश कभी तो एकदम झमझमा के होगी और कभी कभी ऐसी होगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा बारिश हो रही है या फिर सिर्फ भगवान बूंद बूंद गिरा रहे हैं. लेकिन भाई ये जो बारिश है ना, ये जितनी देखने में सुहानी लगती है, अच्छी लगती है, उतनी ही ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन भैया जिंदगी का आनंद भी तो लेना है. अब इसीलिए मैं आज का विषय लेकर आई हूँ, यानी कि मॉनसून स्पेशल एक टॉपिक है जिससे आप बारिश का फायदा भी उठा पाएंगे और साथ ही साथ इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे. लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज भाई मैं अकेली नहीं हूँ. आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट सृष्टि. हेलो सृष्टि.
1: हेलो मैम,
0: कैसी हो?
1: मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए.
0: मैं बहुत ठीक हूँ. और भाई बारिश देख के तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है?
1: बारिश देख के तो बहुत अच्छा ही लगता है सबको ही.
0: जी, बारिश देख के, और बारिश देख के हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि भैया गर्मा गर्म चाय मिल जाए. हाँ,
1: हो ही जाए,
0: चाय पकौड़े हो जाए. लेकिन भैया ये जो चाय पकौड़े है ना, इसको तो हम एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम हेल्थ की बात करने वाले हैं. तो पता है आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं?
1: नहीं मैम, क्या है आज का टॉपिक?
0: अरे आज का टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. देखो, कल रात मेरे हाथ में अचानक से खुजली शुरू हो गई थी. सुबह मैंने देखा तो एक गोल गोल रेड पैच था. पता है वो क्या था?
1: अरे, और ये तो सबके साथ हो रहा है. किसी को फुट में इचिंग, किसी को अंडर आर्म्स में रैशेस. मॉनसून अपने साथ रोमांस, चाय पकौड़े के साथ अनइनवाइटेड गेस्ट भी लाता है, स्किन प्रॉब्लम्स.
0: जी हाँ, और यही स्किन प्रॉब्लम मुझे हो गई, जिसे हम दाद भी कहते हैं. अब देखिए, दाद, खाज, खुजली, ये सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये जो दाद, खाज, खुजली होती है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान करती है. उठने बैठने में, अपने रोजमर्रा के काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है. तो आज स्वास्थ्य संगनी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉनसून में स्किन की सुरक्षा पर. कौन से इन्फेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं.
1: मेरा सवाल ये है मैम कि मॉनसून में ये स्किन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है?
0: भाई देखो, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है सृष्टि. देखो, मॉनसून में हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो हम सभी जानते हैं. ह्यूमिडिटी 70-80% तक चली जाती है. इससे हमारी जो स्किन का जो स्वेट है वो प्रॉपरली इवेपोरेट नहीं हो पाता, और वो स्वेट स्किन पर जमा रह जाता है.
1: मतलब जहाँ मॉइस्चर है, वॉर्मथ है, वहाँ बैक्टीरिया फंगस का ग्रो करने का परफेक्ट मौका मिल जाता है.
0: एग्जैक्टली. और स्पेशली स्किन फोल्ड में, जैसे कि अंडरआर्म्स हो गए, हमारे थाइज एरिया हो गए, जहाँ मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, यानी मॉइस्चर रुक जाता है, बिल्कुल वैसे ही घर की दीवारों में भी मॉनसून में सीलन आ जाती है.
1: और दूसरी वजह?
0: अरे वही जो कॉमन प्रॉब्लम है यार, गीले कपड़े, गीले जूते. बारिश में देखो, भीगने के बाद हम लंबे टाइम तक गीले कपड़े पहने रहते हैं, जूते पहने रहते हैं, जिससे मॉइस्चर स्किन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है. और तीसरी वजह भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो है कंटामिनेटेड वाटर. सड़कों पर तुमने अधिकतर देखा होगा, जब भी अपने घर से आती होगी तो भाई सड़कों पे कोने कोने में, और कहीं कहीं तो सड़क के बीच में ही गड्ढा है और वहां पे ही पानी जमा हो रखा है. ड्रेन्स जो है, सीवेज जो है, वो बाहर निकले, सब मिक्स हो रखा है, हर जगह बस पानी ही पानी है. और पानी पानी में फैलते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस होते हैं.
1: फिर तो मैम सनलाइट भी कम मिलती है मॉनसून में, इसका भी कोई असर होता है क्या?
0: बिल्कुल. देखो सृष्टि, सनलाइट नेचुरली स्किन को ड्राई रखती है और बैक्टीरिया फंगस को किल करती है. उसकी कमी से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर देता है. तुमने नोटिस किया होगा कि जब हमारे घर के कोई अनाज है, कोई चीज है जिसमें फंगस लग गए हों, तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि जाओ बेटे से धूप में रख आओ, है ना?
1: यस मैम, ये तो मैंने देखा है, पर कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता था.
0: तो आज तुम्हें पता चल गया कि क्या होता है. देखो, हमारी दादी नानी के हर काम में ना कहीं साइंस छुपी होती है.
1: तो ह्यूमिडिटी, वेट क्लोथ्स, कंटामिनेटेड वाटर, कम सनलाइट, वीक ह्यूमिडिटी, सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं.
0: जी हाँ, वो भी स्किन प्रॉब्लम के लिए, ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है
1: मैम. लेकिन एक फैक्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मॉनसून में स्किन पेशेंट 30-40% तक बढ़ जाते हैं.
0: बिल्कुल सही सृष्टि। देखो और एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। देखो भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में जहाँ ह्यूमिडिटी ऑलरेडी साल भर हाई रहती है, मॉनसून के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये सिर्फ एक दो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश में मिलियंस लोगों की प्रॉब्लम है और लोग इससे डील भी करते हैं हर साल।
1: मैम ये सिर्फ एडल्ट की प्रॉब्लम नहीं है ना, बच्चे भी काफी अफेक्टेड होते हैं।
0: अरे बच्चों की क्या बात करते हैं भैया, देखिए मौसम जो ये बारिश का है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यारा होता है, क्योंकि भाई बच्चे जब तक नाव नहीं बना लेंगे, बारिश के पानी में दो बार छपाक नहीं मार लेंगे, तब तक उनका बारिश जाता नहीं है। और जो भी तुमने बात कही वो तो बिल्कुल सही है। देखो बच्चे स्पेशली वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो बारिश में खेलना पसंद करते हैं, उनकी स्किन अभी भी डेवलपिंग होती है जो अडल्ट्स की कंपैरिजन में ज्यादा सेंसिटिव होती होगी। स्कूल्स, डे केयर सेंटर जैसे क्राउडेड प्लेसेस में क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक बहुत ही ज्यादा तेज फैल जाता है।
1: और वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी तो बुरा हाल होता है, डेली कम्यूट, वेट सूज, पूरे दिन ऑफिस में बैठना।
0: ये तो शायद तुमने मेरी ही कहानी बता दी। देखो बिल्कुल भाई ऐसा ही होता है, और एल्डरली लोगों की स्किन नेचुरली थोड़ी सी थिन और लेस रिजिलियंट होती है, जिसमें वो भी इन्फेक्शंस से ज्यादा प्रोन होते हैं। देखो हम ये जानते हैं कि बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो स्किन प्रॉब्लम सभी को हो सकती है, लेकिन बच्चों की स्किन क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा होती है इसीलिए उनमें ज्यादा हाई चांसेस होते हैं।
1: तो मैम ये तो क्लियर हो गया कि क्यों ये सीजन इतना चैलेंजिंग होता है हमारे स्किन के लिए। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शन की। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन, जिनमें रिंग वॉर्म, एथलीट फुट और कैंडिडाइसिस शामिल है, लेकिन ये सुनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
0: हाँ भाई मुझे भी लगता है कि ब्रेक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ये लोग तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। और लिसनर्स आप भी समझ रहे होंगे कि कितना बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही हमें दांत, खाज, खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी इन सबसे भी मिला देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का शो सुनने के बाद ना आप स्किन प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने इस शो को बहुत ही ध्यान से सुना, अपनाया और अपनी जिंदगी में लागू किया ना, तो मेरी गारंटी यह है कि अगर आपने साफ सफाई के साथ इन सारी बातों को माना तो आपको इस बारिश के सीजन में स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो भाई आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, अरे वही भाई बने रहना हमारे साथ आज के शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं मॉनसून स्पेशल यानी कि मॉनसून में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स की। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना शो स्वास्थ्य संगनी।
4: जी हाँ भाई, स्वास्थ्य संगनी आ चुका है ब्रेक के बाद लेके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
3: तो चलिए शुरू करते हैं रिंगवर्म, जो आपको हुआ था मैम।
4: अरे हाँ यार, रिंगवर्म ने तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जो रिंगवर्म होता है वो डर्मेटोफिटिस फंगस होते हैं। जी हाँ, देखिए नाम में वॉर्म लगता है ना, लेकिन कोई कीड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये गोल गोल इची पैचेस होते हैं, रेडनेस आ जाती है, रेड पैचेस बन जाते हैं। जो इसका कोना होता है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है, खुजली होती है। ये अक्सर आपके अंडर आर्म्स में होता है, थाई एरियाज में होता है, और वो एरियाज होते हैं जहाँ पे स्किन थोड़ी सी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहती हो, यानी कि थोड़े से जॉइंट्स हो वहाँ स्किन आपकी मुड़ती है। ये हाईली कंटेजियस होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर टावल, कॉम्ब या फिर ऐसी चीजें जो आप शेयर करते हैं, इनसे भी फैल सकता है। और सबसे स्केरी बात पता है क्या है लिसनर्स? भाई देखिए, ये पेट्स के थ्रू भी फैल सकता है। अब इसे आप समझ चुके होंगे। अरे चलो थोड़ा और आसान भाषा में बता देते भैया, ये रिंग वॉर्म वही होता है, यानी कि दाद।
3: ओहो, लेकिन मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या अब हम पेट भी नहीं पाल सकते घर पे?
4: नहीं नहीं, पाल सकते हैं, बिल्कुल पाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी और सफाई के साथ। देखो माइल्ड केसेस में एंटी फंगल क्रीम जैसे क्लोट्रिमेजोल, लेकिन 2 से 4 वीक्स तक रेगुलर लगानी पड़ती है वो, चाहे सिम्टम्स पहले से इम्प्रूव हो जाए या फिर वो पूरी तरीके से ठीक होने लग जाए। आपको ये क्रीम 4 हफ्ते तक तो लगानी ही लगानी है, वरना इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो ये एक छोटी सी क्रीम होती है जो आप अभी से मंगा के रख ले, और अगर आपको लगता है कि भैया दाद होने वाला है या हो रहा है या हो गया है, तो आपको ये क्रीम जरूर मंगा के लगानी है।
3: मैम मैंने सुना है कि एथलीट फुट भी कुछ होता है, जो कि ऑफिस जाने वाले लोगों को ज्यादा होता है, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है ये।
4: तो आज के तुम सारे ऑफिस वालों के पीछे ही पड़ी हो? चल अच्छा चलो ठीक है भाई, जो तुम्हारी कंफ्यूजन है वो तो कई लोग की कंफ्यूजन है, एथलीट फुट। जी हाँ, देखो इसमें टोस के बीच, यानी जो हमारे पैर की उंगलियां होती हैं, उसके बीच में आपको इचिंग होने लग जाएगी, खुजली होगी, बर्निंग, ऐसा लगेगा कि जलन हो रही है, स्किन आपकी वहां से पील होने लग जाएगी, यानी कि निकलने लग जाएगी। जब हम गीले जूते पहनते हैं या गीले सॉक्स पहनते हैं और लंबे टाइम तक उसको पहने रहते हैं, और फीट का जो मॉइस्चर होता है वो इससे इवेपोरेट नहीं हो पाता, और फंगस बहुत ही तेजी से ग्रो होने लग जाता है। आपने देखा होगा, और जैसा कि अभी तुमने भी कहा, और कई लोग ये कहते हैं कि ये ऑफिस जाने वालों को बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि देखो, जब कोई ऑफिस जाता है बारिश में, तो उनके जूते में अगर पानी घुस गया, क्योंकि गली में नुक्कड़ पे पानी भरा हमें मिल ही जाता है, या फिर मान लो बारिश शुरू हो गई, तो उनके जूते पक्का गीले हो जाते हैं, और जब जूते गीले हो गए, आपका पैर का जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकल आया, तो फिर भैया आपको ये होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़े से खुले जूते पहने।
3: लेकिन मैम अब इसका सलूशन क्या है?
4: देखो सॉल्यूशन इसका बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है, गीले शूज सॉक्स को तुरंत बदलना। एक्स्ट्रा सॉक्स, अगर आपको शूज पहनना कंपलसरी है तो आप एक्स्ट्रा सॉक्स बैग में रख लें, और मॉनसून में स्पेशली आपको कॉटन सॉक्स का यूज करना चाहिए, जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। फीट्स डेली वॉश करें, स्पेशली टोज के बीच में, क्योंकि भैया हम बहुत ही ज्यादा आलसी हैं भारतवासी, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये बस नहा लेते हैं और सही से अपने शरीर का कोना कोना साफ नहीं करते। लेकिन इस मॉनसून में आपको अपना शरीर का हर कोना साफ करना है, चाहे वो आपके पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा ही क्यों नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि खुले जूते पहनने हैं, आप कोशिश करें कि आप अगर ऐसे फुटवेयर पहने जिसमें आपका पैर खुला हो, एयर पास आउट हो सकती है, उसका आप इस्तेमाल जरूर करें।
3: और तीसरा फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस।
4: ये कैंडिडा ईस्ट होते हैं जो स्किन पर ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, लेकिन मॉइस्चर वार्म्थ में ये थोड़ा सा ओवरग्रो कर जाते हैं। अंडर आर्म्स, जहाँ पे आपके बॉडी में फैट ज्यादा होते हैं वहां पे

0: PhD जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं, फॉलिक्यूलिटिस में फॉलिकल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्मॉल पस फिल्ड हो जाता है, पस तो हम सभी जानते हैं, और दाने हमारी बॉडी पे नजर आने लग जाते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग और टाइट कपड़े से ये बहुत ज्यादा होता है। शेविंग के बाद भी ये हो सकता है क्योंकि स्मॉल कट्स बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा जब भी आपने अपनी बॉडी को शेव किया होगा तो हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं उस पे पस जम जाता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाती है और वो जो एरिया होता है जहाँ आपने शेव किया होता है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा हो जाता है।
1: मैम, ये इम्पेटिगो ये तो बच्चों में ज्यादा होता है ना?
0: इम्पेटिगो बच्चों में कॉमन है, रेड सोर से शुरू होता है और फिर ये फट जाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हनी कलर्ड क्रस्ट बन जाता है, हाईली कंटेजियस होता है, स्कूल में ये बहुत तेजी से फैलने लगता है क्योंकि बच्चे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। देखो, इसीलिए कहते हैं कि जब हमें कोई बीमारी होती हो या ऐसा मौसम चल रहा हो जब बीमारी ज्यादा फैले तो अपनी चीजों को अपने तक ही सीमित रखें, ज्यादा शेयरिंग ना करें।
1: पर मैम, बच्चे मानते कहाँ हैं? अगर ये किसी बच्चों को हो जाता है तो उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
0: देखो भाई, पेरेंट्स की जो कैटेगरी होती है हमारे भारत में बहुत समझदार कैटेगरी होती है, इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम को माइल्ड केसेस में लेना चाहिए जिससे ये ठीक हो सकता है, और जब तक सोर्स हील ना हो जाए बच्चों को स्कूल बिल्कुल ना भेजें। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो दूसरे बच्चों को भी ये बीमारी फैल सकती है। अपने नेल्स और बच्चों के नेल्स दोनों को छोटा रखना है क्योंकि भैया इससे बच्चे स्क्रैच जरूर करेंगे और स्क्रैच करने से इन्फेक्शन और भी ज्यादा फैल सकता है।
1: तो मैम, कहीं ना कहीं स्कूल वाले इसलिए भी हमारा नेल कट करा के रखते थे।
0: वही जो पीटी सर थे ना, पीटी सर से तुम पीटी हो कभी?
1: अरे मैम, उनसे कौन बचा है यही बताइए।
0: तो भैया पीटी सर का एक बार धन्यवाद जरूर करिएगा कि सर अच्छा हुआ आप हमारे नेल्स को कट रखते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने नेल्स कट ही रखने चाहिए, नहीं तो स्क्रैच करेंगे और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है।
1: तो मैम, ये जो बॉयल्स होता है वो क्या होता है?
0: अरे बॉयल्स तो सबसे पेनफुल चीज का नाम है, इसमें दर्द होता है, पस भर जाता है और जो हेयर के लम्स होते हैं, फॉलिक्यूल्स होते हैं, उसपे डीप इन्फेक्शन यानी कि बहुत गहरा इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सृष्टि कि बॉयज को खुद से कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, इससे इन्फेक्शन और भी ज्यादा डीप हो जाता है और फैलने लग जाता है। ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकते हैं जो कि डेंजरस हो सकता है।
1: तो फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमें बॉयज हो जाए तो?
0: देखो, छोटे बॉयज के लिए हमें वार्म कंप्रेस की हेल्प लेनी चाहिए। अब ये वार्म कंप्रेस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए भैया, गर्म पानी लेना है किसी भगोने में या फिर किसी पतीले में, और उसमें एक कपड़े को भिगो देना है। जब कपड़ा गर्म हो जाए, पानी उसमें अच्छे से आ जाए, फिर उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेना है और इन्फेक्टेड एरिया में रख देना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आप किसी कपड़े को गर्म पानी में भिगो के और सिकाई करते हैं ना, जस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। देखो, ये थोड़ा सा तो गर्म होना चाहिए क्योंकि अगर आपको पेन है तो ये आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता जा रहा है, साथ में फीवर भी हो रहा है, तो मेरी सलाह और डॉक्टर की सलाह आपसे यही है कि मेडिकल हेल्प जरूर लें। ये सबसे ज्यादा सेफ होता है बॉयज में, क्योंकि अगर एक बार हो जाए और अच्छे से इलाज ना हो, पूरी तरीके से ये ठीक ना हो, तो ये बाद में भी फैल सकता है।
1: अरे मैम, आपने तो बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताई हमें।
0: हाँ भाई, इन्फॉर्मेशन तो यूजफुल है ही है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक इसलिए क्योंकि भैया देखो, बारिश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें बारिश में एक कप चाय तो बनती है ना सृष्टि?
1: हाँ मैम,
0: पियोगी?
1: चलिए,
0: चलो ठीक है, हम दोनों जाते हैं दोस्तों, चाय पीकर आते हैं इस छोटे से ब्रेक में। आप भी जाइए, चाय बनाइए और चाय लेके बैठ जाइए, क्योंकि हमारी चाय तो भैया बनी बनाई इंतजार कर रही है, लेकिन आपको तो शायद बनाना पड़ेगा। लेकर आते हैं चाय को और बात करते हैं, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और बात करते हैं इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे और प्रिवेंशन। क्योंकि घरेलू नुस्खे इसीलिए दोस्तों, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हम जब तक घरेलू नुस्खा नहीं आजमाएंगे हमारी कोई भी इलाज जो है वो पूरा नहीं होता। स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी, साथ में मेरे हैं सृष्टि, जो कि बहुत सारे सवाल लाई हैं और आज मुझसे ऐसा लग रहा है कि सारे मॉनसून का खजाना निकलवा के ही रहेंगी। अब आप ये सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कुछ मॉनसून के स्पेशल स्किन इन्फेक्शन की, क्योंकि मॉनसून अकेला नहीं आता, इन्फेक्शन को साथ लेकर आता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खे के, यानी कि जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं और उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो मैम चलिए हम नीम से शुरू करते हैं। मुझे याद है बचपन में मम्मी नीम के पत्ते ले आती थी।
0: अरे नीम का पत्ता, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज वाला होता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। देखो नीम का पानी जो होता है, अगर हम नीम को पानी में उबाल कर उससे नहाएंगे और उसका पेस्ट जो है हम अपने इन्फेक्टेड एरिया में लगाएंगे, तो ये जितनी बीमारियां हैं ना जिसकी बारे में अभी हमने बात की, ये और भी ज़्यादा कम हो सकती हैं। उसके बाद हल्दी, देखो हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है। बेसन के साथ पेस्ट बनाकर इसको लगाएं, क्योंकि ये देखो एक ट्रेडिशनल तरीका है और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस भी है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो छोटे मोटे ये प्रॉब्लम है ना, ये ठीक हो सकते हैं जस्ट घरेलू नुस्खे को आजमा के।
3: मैम कहीं ना कहीं ये घरेलू नुस्खे सही हैं, क्योंकि ये सब हमने कभी ना कभी किया है अपने लाइफ में। अगर हम बात करें कोकोनट ऑयल की, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी?
0: देखो कोकोनट ऑयल जो है वो सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं लगता, बल्कि उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ये इसमें कूट कूट के भरी है और ये स्किन मॉइस्चराइज भी रखती है और बिना पोर्स को ब्लॉक किए ड्राई क्रैक्ड स्किन के लिए भी ये वर्क करती है। स्पेशली फीट्स के लिए मॉनसून में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है हमें, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। इसीलिए मॉनसून में ट्राई करें कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। देखो इसी के साथ साथ तुम एक चीज़ को भूल रही हो।
3: वो क्या मैम?
0: तुलसी। अरे वही जो हमारे आंगन में है, जिसकी तुम चाय बहुत पीती हो। देखो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और देखो तुलसी भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर हम इसको मिला के या फिर इसको अलग अलग भी यूज कर लेते हैं, तो हमारे स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं।
3: मैम ये सब तो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, किचन में ही मिल जाती है।
0: लेकिन सृष्टि एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी जरूरी है ना?
3: बिल्कुल, लेकिन वो है क्या मैम? लेकिन मैम एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर भी तो जरूरी है ना?
0: बिल्कुल। देखो अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, स्प्रेड हो रहा हो या कुछ दिनों में इम्प्रूव ना हो, तो होम रेमेडीज पर हमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अब सब लोग सोचते हैं कि नहीं भैया डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की प्रॉब्लम को क्या ही करेंगे, लेकिन मैं बताऊं भैया स्किन की प्रॉब्लम डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब लोग ऐसी डिग्री लेके बैठे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। देखिए इनके पास आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि स्किन अगर डैमेज हो गई तो ये हमें बड़ी बीमारियों के चपेटे में भी डाल सकती है।
3: तो हमें मैम ज्यादा देर ना करते हुए डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट अटेंड कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
3: तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आप बताना चाहेंगे कुछ?
0: क्या?
3: जैसे कि प्रिवेंशन टिप्स।
0: ओ हाँ, प्रिवेंशन टिप्स, चलो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले जो है वो आता है, स्किन को ड्राई रखें, बारिश में भीगने के बाद तुरंत टॉवल से उसे पोंछ लें और स्किन को ड्राई कर लें। और अगर आपने गीले कपड़े पहन रखे हैं तो उसको आपको बिल्कुल से ड्राई करना है। और नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो भैया वो है लूज और ब्रीदेबल कॉटन कपड़े। अगर आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं वो भी बारिश में, तो मैं आपको बता दूं भैया डायरेक्टली आप न्योता दे रहे हैं बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को। इसीलिए कपड़े थोड़े ढीले पहने, कॉटन के पहने, टाइट बिल्कुल भी ना पहने, और वो पहने जिसमें आपकी स्किन ब्रीद कर पाए।
3: तो नंबर थ्री मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, फुटवियर का ख्याल रखना, वाटरप्रूफ या क्विकली ड्राइंग शूज प्रेफर करें, मल्टीपल पेयर्स रखें ताकि रोटेट कर सकें।
0: और नंबर फोर मैं बताती हूँ, देखो भैया रेगुलर आपको नहाना है, क्योंकि हम जो भारतीय होते हैं वो नहाने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं। इसीलिए बारिश अगर हो रही है तो अगर आप बारिश में भी बारिश के पानी में नहा कर आए हैं तो भी आपको एक बार साफ पानी से नहाना चाहिए। उसके बाद स्किन फोल्ड को स्पेशल केयर दें, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, आपकी थाई एरिया हो गया, यहाँ पे आपको मेडिकेटेड पाउडर जरूर यूज करना चाहिए जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
3: नंबर सिक्स, कंटेमिनेटेड वाटर अवॉइड करें, और अगर अनअवॉइडेबल हो तो बाद में क्लीन वाटर से वॉश करें। नंबर सेवन, पर्सनल आइटम जैसे टॉवल, कॉम्ब, रेजर्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: और नंबर एट है दोस्तों, बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर प्रॉब्लम दो या तीन दिन से ज़्यादा हो रही हो और इम्प्रूव ना हो रही हो ज़रा सी भी, और साथ ही साथ फैलती जा रही हो, ये आपको फीवर पेन दे रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
3: और सेल्फ मेडिकेशन, स्पेशली बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम्स अवॉइड करना चाहिए, ये इन्फेक्शन को मार्क्स या वर्सन कर सकता है।
0: बिल्कुल सही सृष्टि। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं सभी को बताना चाहती हूँ, सृष्टि तुम भी इसको ध्यान से सुनना। देखो जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें मॉनसून में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए। हाई ब्लड शुगर वाले को ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों की ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं, इसीलिए उनमें इसका खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को कैंडिडियासिस और बॉयस जैसे इन्फेक्शन का रिस्क डबल होता है।
3: मैम तो उन्हें क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली?
0: देखो अगर मैं बात करूँ सिर्फ उन्हीं को क्या करना चाहिए, तो भैया अगर आपको ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो स्ट्रिक्टली उन्हें आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अपनी स्किन फोल्ड जैसे अंडर आर्म्स हो गए, थाई एरिया हो गए, वहाँ पे स्पेशली उनको आपको ड्राई रखना है। अगर कोई भी अनयूजुअल रैशेज या इन्फेक्शन दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस इन्फेक्शन को डॉक्टर को दिखाएंगे उतनी ही जल्दी ये ठीक हो सकता है।
3: बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं ये, नहीं बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं मैम। तो दोस्तों ये था हमारा जरूरी प्रिवेंशन टिप्स। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड के आखिरी हिस्से के तरफ।
0: जी हाँ, आखिरी हिस्से के बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक। देखो जैसे हमारी चाय तो खत्म हो चुकी है, अब चलते हैं भाई ये कप धोने को दे दें, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जाते हैं दोस्तों, हम लोग बस यूं जाते हैं और यूं आते हैं, और आपसे मिलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में और भी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुके हूँ वापस। मैं आपकी आरजे आयुषी, मेरे साथ को होस्ट सृष्टि, लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं बारिश में होने वाले कुछ स्किन प्रॉब्लम की। अभी हमने काफी सारे स्किन प्रॉब्लम्स की बात की, जो कि आपको भी होते हैं, आपके घर के बच्चों को भी होते हैं और बुजुर्गों को भी होते हैं। तो इनके बारे में हमने ये तो जान लिया कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए भैया, ये मौसम बड़ा ही खूबसूरत होता है, लेकिन खूबसूरत के साथ बहुत सारी चीजें ये लेकर आता है,
4: लेकिन इस ब्यूटीफुल सीजन के साथ थोड़ी हेल्थ चैलेंजेस भी आती हैं, और हमने देखा कि स्किन प्रॉब्लम उनमें एक मेजर कंसर्न है। फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंग वॉर्म, एथलेट फुट, कैंडिडियासिस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसे फॉलिकुलिटिस, इम्पेटिगो, बॉइल्स।
3: लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये सिंपल प्रिकॉशन से ठीक हो सकता है, काफी हद तक ये सही हो जाता है और काफी लोगों को ये हेल्प भी पहुंचाता है। स्किन बस आपको ड्राई रखना है, सही तरीके से कपड़े पहनने हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है और टाइमली मेडिकल कंसल्ट लेना है। ये बेसिक स्टेप आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे इन स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए।
4: और दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी अपने को स्किन प्रॉब्लम हो रही है या जो इम्प्रूव नहीं हो रही है, प्लीज इग्नोर मत करिए डर्मेटोलॉजिस्ट को। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने में शर्म मत करिए।
3: बिल्कुल सही। और आखिर में भैया, मॉनसून की इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जरूरी ये भी है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। एक छोटा सा एफर्ट जैसे कि गीले कपड़े को तुरंत बदलना, पैरों को ड्राई रखना, हमें इन कॉमन लेकिन अनोइंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैं ये भी कहूंगी कि अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों और अपने पूरे फैमिली का इस सीजन में एक्स्ट्रा ख्याल रखें, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, वर्किंग या प्रोफेशनल या एल्डरी, और अपना भी ख्याल रखें।
3: बिल्कुल सही दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। और जानना ही सिर्फ काफी नहीं होता, इसको अपने जिंदगी में लागू भी करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो भैया, जाते जाते मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बस मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने इन इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा खुरेदा, सही से इसका इलाज नहीं कराया, तो ये आगे चलकर स्किन कैंसर का भी रूप ले सकती हैं। इसीलिए इन्हें छोटा समझने की भूल ना करें। दिखती बड़ी आम सी बीमारी है, लेकिन ये आम सी बीमारी है नहीं, इसको ठीक करना है। हमें इसके लिए जागरूक होना है और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी को साफ और सुरक्षित वे से आगे बढ़ाना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जो कि होने वाला है आपका बुधवार। बुधवार को आपकी आरजी उन्नति आएंगी लेके आपके लिए कुछ हेल्थ की टिप्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जो कि आपको जानने चाहिए, सीखने चाहिए, समझने चाहिए और उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में सुरक्षित रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं और अगर कोई परेशानी आए तो आयुष्मान संपर्क 24 घंटे कैसे करते हैं और आयुषी चैट बॉट कैसे आपकी मदद करती है इसमें। इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्यारे सेहतिया भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी।
2: जी,
3: मैं बढ़िया हूँ और आज तो दिल खुश करने वाली खबर भी लेकर आया हूँ। हमारे गाँव की उर्मिला दीदी है।
2: अच्छा।
3: उम्र करीब 55 साल, कई महीनों से दिक्कत में थी, पेट में दर्द रहता था लेकिन पैसे की चिंता में अस्पताल जाने से डरती थी। एक दिन आशा दीदी ने उन्हें समझाया कि उर्मिला दीदी, आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, चलिए अस्पताल चलते हैं। उसी दिन आशा दीदी के साथ वे नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल गई। अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड स्कैन किया और बिना एक भी रुपए लिए उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई। आज उर्मिला दीदी ठीक है और खेतों में काम भी कर रही हैं।
2: ओहो, अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, अस्पताल का पता न मिले या योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछे? और मतलब ये है मेरा कहने का कि कोई ऐसी जगह है जहाँ दिन रात कोई उनके सवाल सुनकर उचित जवाब दे सकता है?
3: बिल्कुल है आरजे आकांक्षा जी।
2: जी,
3: आयुष्मान योजना के लिए सरकार ने आयुष्मान संपर्क नाम का 2400 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर बना रखा है।
2: अच्छा।
3: आप बस 1800-1844-44 डायल कीजिए और उधर से कोई ना कोई तुरंत बात करने आ जाएगा।
2: एक बार फिर से नंबर बता दीजिए,
3: 1800-1844-44।
2: अच्छा।
3: और मान लीजिए आपने कॉल किया, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसके कार्ड पर कौन सी सुविधाएं मिलती हैं या किसी को अस्पताल में ओपीडी या भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो बस कॉल कीजिए, कॉल सेंटर वाले आपको एक एक चीज समझा देंगे।
2: बहुत अच्छे।
3: कई बार मरीज अस्पताल से लौट आता है लेकिन आगे की दवा या जांच कहां करानी है ये समझ में नहीं आता, ऐसे में भी आयुष्मान संपर्क वाले बताते हैं कि नजदीक में कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां फॉलो अप मिल जाएगा। अगर आपको अस्पताल में गलत जानकारी दी गई या शिकायत दर्ज करवानी है तो वो भी आप इस नंबर पर बता सकते हैं। एक बात और, ये सिर्फ जानकारी देने वाली जगह नहीं है, यहां लोग आपकी राय भी पूछते हैं कि सेवा कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सेहतिया भैया, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है तो क्या आयुष्मान योजना के लिए भी कोई ऐसी सुविधा है जहां लोग बिना कॉल किए मोबाइल या कंप्यूटर पर तुरंत अपना सवाल पूछ सकें, मतलब बस लिखें और तुरंत जवाब मिल जाए?
3: देखिए, आयुष्मान योजना की अपनी एक वेबसाइट है आयुष्मान UP.in। इस वेबसाइट पर आपको आयुषी नाम का एक चैटबॉट मिलता है, आयुषी बड़ी ही मददगार है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपका कार्ड बना है या नहीं, योजना में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं या आपके आसपास कौन सा अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है, तो बस वेबसाइट खोलिए और आयुषी से बात शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही अपना सवाल टाइप करेंगे, आयुषी तुरंत जवाब दे देगी। ना किसी का इंतजार, ना कॉल लगने की टेंशन, बस मोबाइल में लिखिए और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हो। चाहे आप लाभार्थी हो या अस्पताल चलाते हो, आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है। आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है।
2: हाँ सेहतिया भैया, हमारे एक एडिटर साहिबा भी हैं जिनका नाम आयुषी है, वो भी हर एक समस्या का समाधान करती हैं, एकदम ऐसे ही जैसे कि ये आयुषी चैट बॉट है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो PMJA है, इसमें किन किन बीमारियों को कवर किया जाता है?
3: देखिए, आयुष्मान PMJAY बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे अगर किसी को जनरल सर्जरी की जरूरत है, मतलब पेट का ऑपरेशन, हार्निया, अपेंडिक्स वगैरह, योजना में सब शामिल है। फिर आता है ENT, यानी कान नाक और गले से जुड़ी परेशानियां। अगर किसी का कान से पानी बह रहा है या टॉन्सिल की दिक्कत है, तो इसका इलाज भी इस योजना के तहत होता है। मोतियाबिंद से परेशान लोगों की सर्जरी भी आयुष्मान PMJAY में होती है। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत काम की है। प्रसूति और स्त्री रोग यानी डिलीवरी, महिलाओं की सर्जरी या अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। हड्डी वाली परेशानियां जैसे फ्रैक्चर, जोड़ बदलना या हड्डी में दर्द की समस्या भी इस योजना में आती है।
2: सिहतिया भैया, अभी आपने कई तरह के इलाज बताए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, जैसे दिल की बीमारी या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या, तो क्या उसका भी इलाज आयुष्मान PMJA कराता है?
3: बिल्कुल कराता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना बस छोटे मोटे इलाज तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान PMJAY कठिन और महंगे इलाजों को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट में कई चोट लग जाए, कई जगह फ्रैक्चर हो जाए, इसे ही पॉलीट्रॉमा कहते हैं। ऐसे में इलाज बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में इसका खर्च कवर होता है। फिर आता है दिल का इलाज, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्टेंट लगाने में बड़े ट्रीटमेंट भी इस योजना में शामिल है। लोग लाखों के खर्च से बच जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग और नसों यानी न्यूरो सर्जरी की। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो या सिर में चोट के बाद ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो भी आयुष्मान PMJAY के तहत कराया जा सकता है। कैंसर का इलाज हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में कैंसर की सर्जरी कवर होती है।
2: तो सेहतिया भैया, अब एक सवाल और है आपसे कि क्या चेहरे का ऑपरेशन, जलने का इलाज, छोटे बच्चे की सर्जरी जैसी बड़ी इलाज भी आयुष्मान PMJAY मतलब PMJAY में कवर होती है?
3: आयुष्मान PMJAY महंगे ऑपरेशन भी कवर करता है, जैसे प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे हादसे में किसी के चेहरे या हाथ पैर पर चोट आ गई या शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इस सर्जरी से डॉक्टर मरीज को ठीक कर देते हैं। इसका खर्च भी योजना उठाती है। फिर है चेहरे और मुंह की सर्जरी। किसी को चेहरे में चोट लग गई, जबड़े में समस्या है या कोई जन्मजात दिक्कत है, तो इन समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान PMJAY के तहत होता है। अब बात करते हैं कार्डियो थोरैसिक और वास्कुलर सर्जरी की। ये छाती, दिल के आसपास और शरीर के नसों से जुड़ी बड़ी सर्जरी होती है
2: जी।
3: ये इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आयुष्मान PMJAY इन्हें भी कवर करता है, जिससे लोगों को लाखों का खर्च नहीं उठाना पड़ता। फिर है बर्न्स मैनेजमेंट यानी जलने के बाद का इलाज। अगर कोई घर में खाना बनाते समय झुलस जाए या किसी दुर्घटना में जल जाए, तो उसका पूरा इलाज, ड्रेसिंग, सर्जरी सब कुछ योजना में शामिल है। और इस योजना की सबसे प्यारी बात बच्चों का इलाज है। अगर बच्चे को किसी बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत है तो ऐसी सर्जरी भी आयुष्मान पीएम जय में कवर है। छोटे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन इस योजना से माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है।
2: अरे वाह भैया, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपकी तबीयत नासाज होते हुए भी सर्दियों का असर है आप पे, आप इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए। चलिए एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि अभी तक आपने जितनी भी सर्जरी वाली सुविधाएं बताई, मतलब कई सारी सुविधाएं बताई, हमने समझी भी उसे, लेकिन क्या जनरल मेडिसिन, नवजात शिशुओं की देखभाल या गुर्दे मूत्र से जुड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में आते हैं?
3: आयुष्मान पीएम जय सिर्फ ऑपरेशन वाला इलाज ही नहीं करता
2: जी।
3: बल्कि कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर करता है, जैसे यूरोलॉजी यानी गुर्दे, मूत्र नली और प्रोस्टेट से जुड़ी परेशानियां। अगर किसी को किडनी स्टोन है, मूत्र रुक रहा है या प्रोस्टेट बढ़ गया है तो इन सब का इलाज भी योजना में हो जाता है। फिर आता है जनरल मेडिसिन, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बुखार, संक्रमण जैसे आम लेकिन गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। अब बच्चों की बात करते हैं
2: जी।
3: बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम से लेकर इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत, ब्लड से जुड़ी समस्याएं इत्यादि का इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में होता है। नवजात शिशु की देखभाल भी इस योजना में कवर है। कई परिवार कैंसर का नाम सुनकर ही टूट जाते हैं क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में बच्चों के कैंसर का इलाज भी शामिल है।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्कीम है। सेहतिया भैया, एक बात और जाननी जरूरी है कि क्या कैंसर की दवाइयाँ, रेडिएशन, इमरजेंसी इलाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में कवर होते हैं?
3: बिल्कुल कवर होते हैं। आयुष्मान पीएम जय का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कई बार तो महीनों तक चलती हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर को विकिरण से जलाकर खत्म करना। ये भी बहुत हाईटेक महंगी सुविधा है, पर योजना इसका खर्च भी अपने जिम्मे लेती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस योजना में शामिल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई गंभीर मानसिक विकार का इलाज भी योजना में आता है। और अंग प्रत्यारोपण सबसे अहम है। दिल, किडनी, लिवर जैसे बड़े प्रत्यारोपण का खर्च सोचकर ही लोग कांप जाते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में अंग प्रत्यारोपण भी कवर है।
2: सेहतिया भैया, जिन मरीजों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है, उनके तकलीफों को कम करने वाला उपचार भी क्या आयुष्मान पीएम जय में मिलता है?
3: देखिए, कई बार बीमारी ऐसी होती है कि मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज या कोई और गंभीर रोग। ऐसे में पॉलिएटिव केयर बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब मरीज की तकलीफ कम करना, दर्द कम करना, सांस की दिक्कत ठीक करना, उसे आराम देना। आयुष्मान पीएम जय में ये सुविधा भी कवर है। अब आते हैं उन खास इलाजों पर जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट जिससे बच्चों को सुनने की शक्ति वापस मिलती है, या किडनी प्रत्यारोपण। इन सब के लिए आयुष्मान पीएम जय में विशेष पैकेज है।
2: तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आयुष्मान पीएम जय देश की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। ये योजना करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाती है और अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खोलती है। 5 लाख रुपए तक का सालाना उपचार किसी भी गरीब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा है। जब इलाज बिना पैसे के, बिना भागा दौड़ी के कैशलेस हो जाता है तो घर के लोग राहत महसूस करते हैं। श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आयुष्मान पीएम जय के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे आशा और ANM की भूमिका, ऑनलाइन समाधान, अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली फॉलोअप केयर के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पर हाँ, जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
4: विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
5: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
6: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
5: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
6: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
5: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
0: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य

ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना
6: क्या,
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ,
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम

प्ले ग्रुप 2 क्लास 12 गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज समता और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही स्पेशल सा दिन। यानी कि दिन तो सारे स्पेशल से होते हैं, लेकिन आज कुछ खास है और बहुत खास है। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
5: सुन सहेली,
1: और मैं हूँ आपकी आज समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
1: तो आइए एक सारे की फ्रेम में इस प्यारे से मौसम को, इस प्यारी सी दोपहर को विश कर देते हैं हम दोनों एक ही फ्रेम में।
5: शुभ दोपहरिया।
6: शुभ दोपहर दोस्तों, और मौसम है बहुत ही मस्त और आज समा है जबरदस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि समा जबरदस्त क्यों है? क्योंकि आज है बहुत ही प्यारा सा दिन।
1: प्यारा सा दिन? वो प्यारा सा दिन क्या होता है? प्यारा सा दिन तो सारे तो प्यारे से दिन होते हैं ना।
6: वो तो आपने सही कहा मैम, लेकिन आज प्यार का दिन।
1: प्यार का दिन,
6: अटूट प्यार का दिन।
1: जहाँ मेरा ध्यान जा रहा है, प्यार का दिन यानी कि कुछ गिफ्ट शिफ्ट लेने का दिन।
6: यस, ये होता है
1: किसी को तंग करने का दिन।
6: फुल ऑन,
1: फुल ऑन। तो भाई, आपका जो इशारा है, अंशिका का जो इशारा है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और आज जैसा कि दिन आप सभी को पता है, सुबह से हम बहनें भाइयों की कलाई का इंतजार करते हैं, उनके लिए थाली सजाते हैं और अपने आप को एक दिन पहले ही हम सजा लेते हैं। पूछो कैसे अंशिका?
6: कैसे?
1: दोनों हाथों में मेहंदी लगाते हैं, पार्लर शार्लर जाते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ भाई के साथ में फोटो खिंचाने के लिए या और भी कुछ?
6: गिफ्ट के लिए।
1: गिफ्ट के लिए कोई सजता नहीं है अंशिका। हाँ, कोई गिफ्ट के लिए सजता नहीं है। मतलब ये है कि आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन जैसे अभी आपने बताया कि प्यार का दिन है, तो ये जो प्यार है ना, ये सारे प्यारों से बिल्कुल अलग होता है। इसका एहसास ही कुछ अलग होता है। वो बचपन की लड़ाइयाँ, वो बचपन की तूतू मैं, वो भाई का बहन की चोटी खींचना और बहन का भाई के सारे बुक्स और कॉपीज को छितर बितर कर देना, फेंक देना, जो पर लड़ाइयां होती थी, ओ माय गॉड। तो जी हाँ दोस्तों, आज है रक्षाबंधन का प्यारा सा पर्व और एहसास का पर्व। आप सभी को पता है कि साल में एक बार यही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे लगता है कि मतलब मेरे भाई से लड़ाई तो नहीं होती है, मतलब मैं अपने लिए बता रही हूँ, बाकी मुझे हिंदुस्तान की जनता का नहीं पता है, बट छोटे बच्चे तो उस दिन भी लड़ते हैं यार। बहुत सारी मीम्स, बहुत सारे रील्स आते हैं ना कि वो थाली लेके बैठी हुई है मतलब राखी बांधने के लिए, और पहले उसने क्या किया कि हल्का सा उसको हाथ लग गया, बस भाई ने उसकी चोटी खींची और बहन ने उसको ऐसे धक्का दिया, लात मारी, बोली जाओ राखी वाखी कैंसिल,
6: लड़ाई शुरू। तो कुछ ऐसा ही होता है और आज इसी एहसास को बयां करेंगे। और कहते हैं कि जब एहसास को आवाज मिलती है तो वो और भी खूबसूरत बन जाता है।
1: बिल्कुल, और आवाज हम बताएंगे, और आज भाई बहन के रिश्ते के ऊपर ही आज मैं कविता लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि हमारी एक औपचारिकता होती है रास्ता देना, तो रास्तों पे फूल बिछेंगे, फिर मैं उस पे चलूंगी, फिर मैं उस पे बोलूंगी। हाँ जी,
6: आपकी राहों में फूल हमेशा बिछे रहे।
1: जी थैंक
6: यू। तो चलिए लिसनर्स करते हैं और रास्ता दे देते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत ही की थी कि प्यारी सी आवाज में आपको मिलने वाला है बेहद ही प्यारा सा एहसास, क्योंकि आज कर रहे हैं हम बेहद खूबसूरत दिन का आगाज। हाथों में बंधन होगा, हाथों पे बंधन होगा, दिल में होगा ढेर सारा प्यार, क्योंकि हर दिन हर बहन चाहती है अपने भाई का बहुत सारा प्यारा प्यारा वाला प्यार। तो आइए इसी के साथ करते हैं इस बेहतरीन कविता की शुरुआत। बहुत ही प्यारी सी बहन और बहुत ही क्यूट हैं जो हमारी आर्ज समता, उनके साथ।
1: थैंक यू सो मच। और मैं सभी लिसनर्स को चाहती हूँ कि आज मैं इस चीज को अनाउंस कर दूँ कि वाकई में ना आज आप मैसेज करेंगे ना तो प्यारी आरजे समता बहन के नाम से करेंगे, जितने भी लिसनर्स हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जिका कि मैं लिसनर्स को बोल रही हूँ कि मुझे क्या कहते हैं बहन बना लूँ। उसके पीछे भी एक रीजन है, मैं कविता बाद में बताऊंगी, मैं रीजन बता देती हूँ।
6: क्योंकि
1: तुम्हारा सेवेंथ आईक्यू होता है, एट्थ आईक्यू होता है, तुम्हारा आईक्यू पहुंचा वहां तक कि मैं लिसनर्स को क्यों बोल रही हूँ कि मुझे बहन बनाओ।
6: थोड़ा थोड़ा
1: क्या, देखें तुम्हारा गेस क्या कह रहा है, बताओ।
6: कि अगर बहन है तो कहीं भैया भी होंगे, समथिंग ऐसा कुछ।
1: ऐसा कुछ नहीं है, तुम हर चीज को उसमें इंक्लूड नहीं किया करो।
6: ओके ओके, मतलब मेरा
1: बहन क्यों मेरे भाई नहीं है क्या? तो क्यों, क्या इस एट्थ आईक्यू में क्या आ रहा है तुम्हारा? मुझे पता था तुम्हारे आईक्यू तो इतना लेवल अच्छा नहीं है। मैं बताऊं कि इसलिए क्योंकि लिसनर्स आप मेरी डांट से बच सकते हैं। क्योंकि अगर बहन मैं आपकी लीगली बहन बन जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करूंगी, डांटूंगी नहीं, क्योंकि आपके फालतू के मैसेजेस जो आते रहते ना। तो भाई ये ऑफर जो है ना ये बहुत लिमिटेड है, आज इसकी जो अवधि है केवल आज ही तक है। तो स्पेशली नागेश्वर जी हैं और बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो मेरी डांट बहुत ज्यादा खा चुके हैं, प्रमुख जी, तो आज उनको ये एक ऑफर दिया जा रहा है कि आज आप जब लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि हेलो एंड शुभ दोपहरिया आप मेरी प्यारी आरजे समता बहन। तो ये आप संबोधित मुझे कर सकते हैं ताकि आप मेरी डांट से बच सकते हैं। तो ये आज आप, और ये जो ऑफर है ना ये सीमित अवधि के लिए है। तो आइए चलते हैं इस ऑफर के साथ में आगे बढ़ते हैं, आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कविता के साथ। भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा होता है, इसमें रूठना भी है और मनाना भी होता है। बचपन की शरारतें, वो मीठी सी तकरार, यादों में बस जाता है हर एक पल बार बार। भाई तो बहन, भाई हो तो बहन की हंसी की वजह बन जाता है। बहन हो तो भाई के हर दर्द को समझ जाता है। दूरियां चाहे जितनी भी क्यों ना आ जाएं जीवन में, अपनापन हमेशा रहता है दिल के किसी एक कोने में। ये रिश्ता न धन से न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है, भाई बहन का प्यार तो बस दिल से जुड़ा होता है।
6: वाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी सी लाइंस, बहुत प्यारी सी कविता। और वाकई भाई बहन का प्यार हमेशा दिल से जुड़ा होता है।
1: एग्जैक्टली, तो बिना देर लगाए, बिना ज्यादा बकबक किए हुए, क्योंकि आज आपको सॉन्ग्स भी हम वही सुनाएंगे प्यारे से, रक्षाबंधन के स्पेशल सॉन्ग्स हम लोगों ने आज प्लेलिस्ट में लगा लिए हैं। लेकिन अभी बारी है हमारे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, तो आई थिंक कि अंशिका ने रेडी कर लिया होगा आज का सुपर से भी ऊपर वाला रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
6: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि जैसा भाई बहन का रिश्ता, तो वैसे ही हम रिश्तों पर ही बताना चाहते हैं आज के दिन का। कांच से भी नाजुक होते हैं रिश्ते, इन्हें एक ही झटके में तोड़ना नहीं चाहिए। टकरारें तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार से समझा लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना सिंपली हम कह देते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, और कहीं ना कहीं एक बचपन जो बीता होता है, लेकिन उन सभी के साथ में आज हम देखते हैं कि टकरारें भी काफी बढ़ गई हैं। लेकिन अपने रिश्तों को कांच से भी ज्यादा संभाल कर रखें, उनमें कभी दरार ना आने दें, और हाँ, प्यार को हमेशा पहले रखें।
7: तो लिसनर्स, आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन था। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से आज के ब्यूटीफुल से डे को सेलिब्रेट करेंगे। भाई आज कोई भी कंटेंट नहीं, कोई भी आज आपको समझाने वाली बातें नहीं, आज हम लेकर के आ रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो रक्षाबंधन के दिन हम कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर हम सुन कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज पूरा पूरा मौका है, आपकी सुनेंगे, हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे। अभी है कुछ बहुत कुछ बाकी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM पे आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी कि मैं हूँ आपकी आज समता
5: और मैं हूँ आज अंशिका।
4: चलिए तो फटाफट शुरू कर देते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई, आज मार्केट का आंखों देखा हाल आपसे कहना चाहते हैं, वो ये है कि अभी मैं जब आ रही थी ना अंशिका, दोपहर में आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज की तो छुट्टी होती है
5: जी मैम,
4: बट मैं अभी जब आ रही थी तो जहाँ पर मेरा घर है, जहाँ मेरा मैं रहती हूँ, मैं उस जगह को रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैं बताऊँगी, ऐसा नहीं है मैं कोई आगरा के ताजमहल में नहीं रहती हूँ, मैं भी गोंडा में ही रहती हूँ, लेकिन आसपास का जो एरिया है ना हमारा, गोंडा का जो आसपास एरिया है, वो भी दिन ब दिन बहुत खूबसूरत सा होता जा रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में पृथ्वीनाथ मंदिर जो है, जो कि अभी सावन भर में बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी वहां पर
5: जी मैम,
4: और मतलब इतनी ज्यादा तादाद में वहां पर श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है। और आप अयोध्या देख लें, आप जैसे अभी उत्तरी भवानी देख लें, तो काफी ऐसे मंदिर आसपास हैं हमारे गोंडा के कि काफी श्रद्धालु हर बार हर एक फेस्टिवल पर वहां जाते ही जाते हैं। तो अब हमारा गोंडा भी डेवलप कर रहा है, ये सभी को पता है। तो इसी डेवलप के कारण से मैं बता दूं कि हमारे गोंडा में लखनऊ का मिनी अमीनाबाद भी आ गया है। आपको पता है कहाँ पे है?
5: कहाँ पे?
4: अमीनाबाद आ गया है पीपल चौराहे के पास में, यानी पीपल चौराहा जो मंदिर है वहाँ से लेकर के जो कौन सा चौराहा आता है जहाँ पर वो प्रहलाद मंदिर को क्रॉस करते हुए, जहाँ पर राजा होलसेलर की शॉप है, वो भरत मिलाप चौराहा, उधर से जा करके पूरा एरिया जो है वो पूरा बन चुका है हमारा मिनी अमीनाबाद।
5: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, मतलब राखी की शॉप्स, मिठाई की शॉप और कपड़ों के लिए तो क्या ही कहें, पूरा दिन बाजार ऐसा, एक कह लें कि बाजार में ऐसी रौनक होती है ना कि बस मन करता है कि हाँ हम भी जाएं और उस रौनक का हिस्सा बने।
4: तुमने क्या क्या लिया ये बताओ मुझे?
5: मैंने राखी ली, मिठाई ली, कपड़े लिए
4: और
5: भी बहुत सारी चीजें ली।
4: तो भाई मैंने तो शॉपिंग ऑनलाइन करी है, हाँ मुझे पता है ऑनलाइन शॉपिंग कपड़ों की कम करनी चाहिए, लेकिन मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भरपूर कर ली कपड़ों की और राखी भी मैंने ले ली है। अब बस बारी है मिठाई की, तो जब मैं अब यहाँ से जाऊंगी और मिठाई लेते हुए जाऊंगी, और मेरे भाइयों को बुलाना पड़ता है भाई, क्योंकि ना दोनों बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, जैसे कहते ना बिजनेस यानी बिजी, तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और फिर अगर मैंने देर कर दी ना अंशिका जरा सी, तो फिर मुझे सुनने को मिल जाता है, और अगर उनकी तरफ से देर होती है तो फिर ये होता है कि लो हम अभी बैठे हुए हैं इतनी देर से, मैडम आई नहीं है और राखी नहीं बांधी है, सबके हाथों में देखो राखी बन चुकी है, और मैं हूँ कि अभी मैं शॉप पे ऐसे ही गया हूँ, दुनिया भर की बातें सुनने को मिलती है। और अगर मैंने थाली बना करके बैठ जाती हूँ तो फिर इंतजार रहता है कि हाँ भैया आइए जल्दी से, आइए आइए आइए,
5: ये तो होता ही है।
4: तो रक्षाबंधन की जो मार्केटिंग हो रही है हमारे मिनी अमीनाबाद में, मैंने इस बार देखा कि सूट की जो वैरायटीज आई हुई है, ओ माय गॉड, मतलब क्या वैरायटी आई हुई है। मुझे फिर बाद में लग रहा था कि शायद हमने ऑनलाइन मंगवा करके मैंने गलती करी, मुझे यहीं से लेना चाहिए था। फिर कहते हैं ना कि लड़कियों की सबसे पहली पसंद और आखिरी पसंद क्या होती है, वो होती है शॉपिंग। तो मैंने तो भरपूर कर ली, एंड फिर से जाकर के मैंने दो सूट लिए, एक कुर्ती ली, स्लीपर लिया, थोड़े से झुमके वगैरह लिए, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ना लगता है कि हाँ रेडी हो। तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं आई थी आपसे मिलने यानी शो करने, अब मैं यहाँ से जाऊंगी अच्छे से रेडी होंगी, क्योंकि मेहंदी तो मेरे हाथों में लग चुकी है, बट जाऊंगी रेडी होंगी और उसके बाद फोटो शूट होगा। एंड देन राखी तो बाद में बनती है, पहले फोटो
5: पहले वो इंपॉर्टेंट हो जाता है,
4: पहले वो इंपॉर्टेंट।
5: भाई इतना मेहनत करके अगर हम रेडी हुए हैं और फोटोज नहीं खींचे तो फिर खाक रेडी हुए,
4: बिल्कुल,
5: तो फिर तो मजा है ही।
4: एग्जैक्टली तो चलिए फटाफट अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, बताएंगे आपको आज की स्पेशल मिठाई के बारे में जो की है घेवर। तो भाई घेवर किसको किसको खाना है और कैसे?
5: मुझे
4: तुम्हें तो पहले ही खाना होता है। लिसनर्स मुझे बताएं कि आपको बनाना है, अगर जिन भी महिलाओं ने नहीं बनाया है, मैं स्पेशली महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी नहीं बनाया है तो आप अभी रेसिपी सुने और विद इन आधे घंटे के अंदर घेवर बनके तैयार हो जाएगा और 4 से 5 के बीच में आप उन्हें आप सबको खिला सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट लेंगे हम घेवर की रेसिपी को, तो बस हम यूं गए यूं आए।
5: तो चलिए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा रक्षाबंधन स्पेशल सॉन्ग, बस हम यूं गए यूं आए। स्टेडियम

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की रेसिपी को, यानी कि आज स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल गेवर की रेसिपी को, जो कि लेकर के आएंगे हम दोनों लोग, लेकिन बताएंगे आपको अंशिका।
1: तो चलिए बताते हैं गेवर की रेसिपी, हो जाइए बनाने के लिए तैयार। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि आपको चाहिए मैदा 2 कप, बेसन चाहिए 1 छोटा चम्मच, और उसके बाद में 1.5 कप देसी घी चाहिए, और तलने के लिए भी हमें देसी घी चाहिए। दूसरा आता है बर्फ के टुकड़े, 4 से 5 आपको बर्फ के टुकड़े ले लेने हैं, और ठंडा दूध आपको ले लेना है यानी कि रॉ मिल्क 1.5 कप, और उसके बाद में आपको ले लेना है नींबू का रस, जो कि नींबू का रस ले लेना है 1 छोटा चम्मच। ठंडा पानी ले लीजिए 3 से 4 कप, और उसके बाद में ले लेना है 1 कप चीनी हमें चाशनी के लिए, और फिर आपको ले लेना है इलायची पाउडर, और ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं डेकोरेट करने के लिए, जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट।
0: सबसे अच्छा सेक्शन मुझे ना ड्राई फ्रूट का लगता है, जिस चीज में ड्राई फ्रूट भर के डली रहती है ना, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: जी मैम। तो आइए लिसनर्स, अब बताते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक बड़ा सा कोई भी कंटेनर ले लेना है, और उसमें आधा,
0: अगर बड़ा ना हो तो छोटा नहीं ले सकते?
1: नहीं मैम, थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। फिर आपको ले लेना है 1/2 कप घी, बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छी तरीके से इसको फेटिएगा, मतलब कुछ देर तक फेटिएगा, मतलब 10 मिनट तक। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब ये बिल्कुल सफेद मक्खन जैसा क्रीमी हो जाए, फिर आपको क्या करना है कि अब बर्तन से जो बचे हुए बर्फ के टुकड़े होंगे उन्हें आपको बाहर निकाल देना है, और ये जो मलाई वाला पूरा एक बैटर बन के तैयार हुआ है ना, इसे में थोड़ा थोड़ा करके आपको मैदा, बेसन और ठंडा दूध मिलाना है। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा मैदा, फिर थोड़ा बेसन, फिर ठंडा दूध, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा।

0: अब आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके एकदम से ठंडा पानी डालें और लगातार फेंटते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब इसके बाद क्या करना है कि लास्ट में हमें इसमें नींबू का रस मिला लेना है और जो घोल तैयार होगा उसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो एकदम पतली होनी चाहिए।
1: बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, मैंने बनाया हुआ है, बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए,
0: मीडियम। अब इसके बाद में क्या करना है कि ठंडा रखने के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आप इसको ठंडा करना होता है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब आते हैं कि घेवर को तलना कैसे है, तो सबसे
1: अच्छी टेक्निक केवल तलने वाली होती है
0: जी,
1: मतलब अगर आपने तल लिया ना, तलना आपको आ गया तो इट मीन्स आपको घेवर बनाना ऑलमोस्ट आ गया
0: जी। तो अब आपको क्या करना है कि किसी जैसे कढ़ाई ले सकते हैं आप, इसमें तो वैसे ये है कि भारी तले की कोई भी गहरी कढ़ाई आपको लेनी है, या सॉस पैन भी आप ले सकते हैं, उसमें घी या तेल आपको गर्म करना है। अब आता है कि कितना तेल चाहिए, तो आधा या एक चौथाई तेल आपको तेज गर्म कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि घी जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको एक चम्मच या किसी छोटे बोतल में आपको बैटर को अच्छे से भर लेना है और ऐसे उसमें होल कर देना है कि बीच से बीच धार में जो है वो देसी घी जो है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा घोल जो है वो गिरता रहे देसी घी में। फिर आपको क्या करना है कि जब इसका जो झाग है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा तब आपको इसके बीच में जगह जो है वो बना करके बैटर की पतली धार आपको गिरानी है,
1: थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, थोड़ा डालना है, फिर आपको रुक जाना है, थोड़ा उसमें बैटर डालना है, तो वो अपने से ना जो आपने स्टैंड डाला होगा गोल वाला वो उसके पूरे किनारे किनारे वो जगह लेता जाता है, वो जगह लेता जाएगा, जैसे नहीं उसमें एक जाली बनती जाएगी और उसी और जब आप बीच में मतलब एक पतली धार करके डालेंगे तो पतली धार डालने का मतलब ही है कि वो बीच में वो होल छोड़ता जाएगा, होल छोड़ता जाएगा। ऐसे ही करके आपको कम से कम 20 से 25 बार वो धार डालनी है छोटी छोटी लेयर में, एक एक नहीं छोटी छोटी लेयर में डालनी है। एंड देन जब आपको लगे कि हाँ उसने कलर चेंज मतलब उसका कलर चेंज हो गया है तब आपने किसी बेलन की सहायता से या पतली सी कोई लकड़ी की डंडी हो उससे आपने इसको गैस को सिम कर देना है, मतलब गैस की जो आँच है उसको सिम कर देना है और उसी बेलन से या फिर कोई लकड़ी का कलछुन वगैरह हो उससे आप इसको निकालेंगे, इजिली ये निकल जाता है।
0: उसके बाद में आपको बस
1: बनानी है चाशनी।
0: यस, फिर हमें चाशनी बनानी है और चाशनी बनाने के आपकी चाशनी जो है वो बन जाएगी, लेकिन चाशनी जो होनी चाहिए वो एक तार की चिपचिपी चाशनी बनाने के लिए चीनी आधा कप और पानी को उबालें, आधा कप चीनी आपको डालना है उसमें पानी डाल के उसे उबालना है और उसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने तैयार जो आपने घेवर तैयार किया उसको लेना है और जाली पर रख के उसे ऊपर से हल्की हल्की गुनगुनी चाशनी जो है वो उस पर आपको पूरी डाल देनी है
1: और उसके बाद में अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको कम्प्लीट करेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अब हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के उस पार आएंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे और एक इम्पोर्टेंट बात भी इसमें अभी बाकी है, तो वो क्या है वो बताएंगे लेकिन ब्रेक के बाद।
0: तो आइए लिसनर्स सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी आज समता
3: और मैं हूं आज अंशिका।
2: तो फटाफट शुरू करते हैं, जो कि अभी ब्रेक में जाने से पहले घेवर की रेसिपी हम लोग बना रहे थे एंड लास्ट प्लेटिंग उसकी बाकी थी, तो आइए सुनते हैं उसकी लास्ट और प्लेटिंग।
3: लास्ट बट नॉट लीस्ट में जो प्लेटिंग हमारे पास है उसमें ये है कि अगर आप मलाई वाला घेवर पसंद करते हैं तो आपको क्या करना है कि जब वो पूरा रेडी हो गया है उसके बाद आप ऊपर से उसमें ठंडी ठंडी मलाई डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं, इससे वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आपका मलाई घेवर तैयार है, उसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल दीजिए और फिर इसे सर्व करें और आज के दिन अपने भाई को अपने हाथों से बना हुआ ये बहुत ही प्यारा घेवर ज़रूर खिलाएं।
2: और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ साथ ही साथ में कि आप रक्षाबंधन की थाली को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। भाई देखिए, घेवर बनके रेडी है, ठीक है। राखियाँ आपने मंगवा ली होंगी, जिसमें आपने रुद्राक्ष की ली होगी, और भी बहुत सारी आजकल राखियाँ आती हैं, और वो जो एक नजर बट्टू क्या कहते हैं उसको, जो
3: जी मैम
2: वो आता है, उससे आप ले सकते हैं, और मोतियों की माला आती है, मतलब काफी हद तक इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ मार्केट में मिलती हैं, आप राखियों को ले लें। अब आती है इसको प्लेट करने की, यानी कि थाली सजाने। तो थाली सजाने के लिए आपको नॉर्मल से घर में कोई भी थाली हो, जो नई थाली हो वो आपको ले लेना है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने गुलाब की पंखड़ियों को पूरा सा उसमें फैला दीजिए। गुलाब की पंखड़ियां जो बड़ी वाली होती हैं,
3: जी मैम,
2: उसको आप उसमें पूरे में प्लेटिंग करिए। एंड देन आपको बीच में दिया रखना है, क्योंकि दिए से आरती भाई की होनी चाहिए। उसके बाद में छोटी छोटी कटोरियां अगर आपके पास नहीं हो तो आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी छोटी जो ढक्कन होते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारी बॉटल्स होती हैं जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, पानी पीने के बाद में फेंक देते हैं, तो उसके ढक्कनों को आपने संभाल के रखना है, जो बड़े ढक्कन होते हैं उसको आपने एक ही कलर में पेंट कर लेना है, गोल्डन कर लें, सिल्वर कर लें। मैंने तो गोल्डन करके रख लिया है, क्योंकि प्लेटिंग ना जब आपने पंखुड़ी लगाएंगे आप क्या कहते हैं रेडिश की, तो उसके ऊपर सिल्वर या गोल्डन अच्छा लगता है वो, तो मैंने कम से कम 3 से 4 ढक्कनों को ले लिया है और ढक्कन को जैसे आपने पेंट कर लिया है। अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन नहीं है तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है जेम्स के जो ढक्कन होते हैं, जेम्स की बॉटल के ढक्कन होते हैं, जब वो आता है फ्रूट जेम्स आते हैं, या फिर आजकल बटर आते हैं तो बटर की भी बहुत बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं, तो उसके ढक्कन होते हैं वो आप ले लें। और क्योंकि बॉटल्स फिर किसी काम की नहीं होती है प्लास्टिक की, तो उन्हें हम फेंक ही देते हैं, पर उनके ढक्कनों से आप ये बना सकते हैं। क्या करना है, उसको आपने पेंट कर लेना है और एक मतलब 4 से 5 उसमें जो आपने ढक्कन ले लिए हैं
3: जी,
2: अब उसको प्लेटिंग करिए, प्लेट में रखिए। एक में रख लीजिए आप चावल, एक में रख लीजिए आप रोली, एक में रख लीजिए आप मिठाई, और एक में आप उसमें रख सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आपने चंदन रख लेना है। अब दिया, उसके बाद घेवर। घेवर भी आप छोटी सी अपने घर में बहुत ही प्यारी सी कोई कांच की अगर आपके पास शीशी प्लेट है तो उस पे आप उसको घेवर को रख दीजिए, और बहुत सारी जो राखियां, जो बहुत फेवरेट राखियां जो आपको बांधनी हो उसको रख लें। एंड देन आपने क्या करना है, बस आपकी प्लेटिंग रेडी है, आप अच्छे से अपने त्यौहार को मनाएं और इसका फोटो क्लिक करके एक बार जरूर से व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि मुझे लगे कि जो प्लेटिंग हमने आपको बताई वो प्लेटिंग आपने उसकी करी।
3: वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा मैम ने बताया ढक्कनों से, मतलब ये तो मैं भी आज जाऊंगी और जरूर करूंगी, बहुत ही अच्छी। तो आइए चलिए लिसनर्स, चलते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टेडियम

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। तो चलिए फटाफट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पौराणिक कथा हमारे पास है, जो कि रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं इसके पीछे की भी कहानी है। तो भाई चलते चलते मैंने सोचा कि आज की कथा को हम मतलब आज के दिन को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम सभी को पता होना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो एक कहानी जो मुझे याद आ रही है मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कुछ रक्षाबंधन के गिफ्ट्स भी जो आप अपनी बहन को दे सकते हैं और बहनें भी अपने भाई को दे सकती हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कहानी की ओर। महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट लग गई थी और बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। ये सब देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी महंगी रेशमी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया। इस स्नेह से विवित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आजीवन संकट से बचाने का वचन दिया जो उन्होंने चीरहरण के समय निभाया भी। इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा वाला एक, जैसे हम किसी को वादा दे देते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो एक भाई ने आकर के अपनी बहन की रक्षा करी और इसका प्रमाण महाभारत के उस अध्याय में आप सबने देखा होगा जब चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी ने सिर्फ और सिर्फ हे कृष्णा बोला था और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनकी रक्षा करी थी। तो ये पवित्र बंधन जो है ये बंधन इसीलिए माना गया है कि हर एक क्षेत्र में एक भाई होता है जो बहन की रक्षा करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर भाई बहन की लड़ाई हो जाती है तो फिर तो भी कोई बचा नहीं सकता है।
1: फिर कोई रक्षा नहीं कर सकता
0: और मारपीट ऐसी हद तक जाती है ना, फिर वो महाभारत हो कि कोई भी काल की लड़ाई हो, जितने भी काल की लड़ाई हो वो फिर नहीं सुधर सकते हैं। तो भाई मुझे भी एक याद है लड़ाई, एक बार मेरी बचपन में मेरे भाई से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हुई थी नॉर्मल सी एक कॉपी पे, मुझे याद आ गया इंसिडेंट, तो मैंने सोचा बता दूं। फाइल बना रही थी मैं और फाइल पे मेरी उसने क्या किया, सॉन्ग चला दिया, बड़े सिस्टम पे सॉन्ग चला दिया था और मैं फाइल बना रही थी म्यूजिक की। तो उसने मैंने बस इतना बोला कि बंद कर रहे हो कि नहीं बंद कर रहे हो। अब मैंने रिमोट उसका छिपा दिया था सिस्टम का। फिर उसने क्या किया कि उसने गुस्से में आकर के, मेरा बड़ा वाला भाई, उसने क्या किया गुस्से में आकर के उसने पानी का ग्लास रखा हुआ था पूरा उठाया और मेरी फाइल पे उसने गिरा दिया था। पूरी मेरी मेहनत खराब हो गई थी। चलो उस समय तो मैंने क्रोध का मैंने अपना वो जो घूंट था मैंने पी लिया, फिर मैं कहाँ शांत बैठने वाली। मैंने उसके जितने कपड़े रखे थे नए नए मैंने उठाया और मैंने बाहर फेंक दिए थे सारे। फिर उसने क्या किया कि मेरी अलमीरा खोली, मेरे पास बहुत सी पुरानी चीजें रखी हुई थी आदि अंतकाल से, पता नहीं कितने कितने मैं संभाल के रखती हूँ, वो पूरा डब्बा उठाया और पूरा ऊपर छत पे जहाँ टंकी लगी रहती है वहां फेंक दिया था। मैं बहुत रोई थी और तब आ रहा था रक्षाबंधन। तो हम लोगों ने एक दूसरे को कह दिया था कि जाओ मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी, उसने भी कह दिया था कि मैं राखी तुमसे नहीं बंधवाऊंगा। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि चुपचाप से वो आया, मैंने भी चुपचाप से बांधा और उसने मुझे जो वो सेलिब्रेशन का चॉकलेट का डब्बा होता है बड़ा वाला उसने मुझे दिया और फिर से हमारी दोस्ती हो गई थी।
1: वाह, ऐसा ही होता है भाई बहन का प्यार। देखा ना आपने लिसनर्स कि कितना भी लड़ लें, कितना भी एक दूसरे की चोटी खींच लें, कितनी भी मस्ती कर लें और कितना भी एक दूसरे को तंग कर लें, पर ये जो एक दिन होता है इस दिन कोई भाई अपनी बहन से बिना राखी बंधवाए न रह सकता है और न बहन अपने भाई को राखी बांधे बिना रह सकती है।
0: बिल्कुल, तो इसी प्यारे बंधन को हम सेलिब्रेट करेंगे। भाई हम लोगों को भी आज जल्दी है जाने की, आप समझ सकते हैं। तो आज के दिन की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाइयों को एक प्यारा सा तोहफा दे सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं वादा जीवन भर उनकी रक्षा करने का। और एक भाई तोहफे में भले पैसे गिफ्ट्स कपड़े ना दे करके उन्हें भी एक वादा दें कि वो ताउम्र निभाएंगे इस वादे को, उनकी रक्षा करेंगे चाहे वो किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो। तो इस प्यारे से गिफ्ट्स के साथ में हम दोनों को दो इजाजत, हम चलेंगे और कल आएंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। अंशिका कुछ कहना चाहती है तो भले।
1: कुछ कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि जाते जाते बस यही कहूँगी कि आज के दिन आप जो भी अपनी बहन को गिफ्ट्स तो सभी देते हैं, लेकिन छोटी सी बस बात ये है कि आज का ये दिन प्यार का होता है, तो आप हमेशा इसको प्यार में ही रखें, गिफ्ट्स में ना तोलें। जैसे कुछ लोगों के मन में ये होता है ना कि गिफ्ट्स कैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, तो वो मन में नहीं,
0: पैसे कितने मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं,
1: वो नहीं होना चाहिए।
0: तो इसको आप उसमें ना तौल करके एक एक एहसास और प्यार का जो एक रिश्ता होता है उसी में आपको इसको समेटना है, उसको संजो के रखना है आज जीवन। तो अब हम चलते हैं दोनों लोग, क्योंकि आज जाएंगे नहीं तो कल आएंगे कैसे भाई, आज हमें भी सेलिब्रेट करना है राखी का त्यौहार। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा।

सर चुंगी। अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स सर चुंगी। साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा कर गई लूंगी, अरे कब्जा कर गई लूंगी। तौबा तौबा आज पिछोरी बन गई एक ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे। ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे। और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा। माँ एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

क्यों ठीक है जवाब तो दे। अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने। सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने। अरे दुनिया वाले क्या जाने ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा। लुट गए मामा, लुट गए मामा।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे

लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, फिलहाल 3:15 हो गए हैं। काफी सारी फरमाइशें आ चुकी है और आपकी फरमाइश का इंतजार है। फरमाइशी प्रोग्राम कॉलरट्यून गोंडा सुनेंगे और सुनते ही रहेंगे। ऑफ कोर्स नंबर है 6393-316-429। इस नंबर पे आपको कॉल करना है और अपनी फरमाइश पूरी करनी है 89.6 एफएम गोंडा एफएम पर। फिलहाल आइए चलते हैं पहली फरमाइश की तरफ। और जो पहली फरमाइश आई है वो आई है रईस जी की, ईदगाह रोड से, गोंडा से ही सुनते हैं 89.6 एफएम को, बहुत सारा प्यार देते हैं। आज तो 3 झोले में भर के दिया है और फिलहाल उनके गाने की जो फरमाइश है वो सुन करके आप चौंकने वाले हैं। वाह, क्या गाना उन्होंने सेलेक्ट किया है। सो तू झूठी में मक्कार का प्यार होता होता होता कई बार, आइए देखते हैं भाई कितनी बार होता, आज हमको भी समझ में आ ही जाएगा वैसे ही।

हाँ जी, तो प्यार होता होता कई बार है, और कई बार तो होते होते रह जाता है, और कई बार होते होते हो ही जाता है, और कई बार अरे यार कई कंडीशन में, कितनी कंडीशंस आपको बताऊं बिलाल, कुछ हो या ना हो लेकिन 3 बजते ही जो है वो रिंग की घंटी लगातार आवाज़ देती रहती है भाई 89.6 FM पर। आप भी अपनी फरमाइशों को पूरा कर लेते हैं, और देखिए ना आपकी तरफ से लगातार कॉल्स आने का सिलसिला जारी हो चुका है, और लगातार आपसे फरमाइशें भी हम पूछे जा रहे हैं और आपकी फरमाइश पूरी भी किए जा रहे हैं। और ये वक्त है फ़िलहाल आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाने का, क्योंकि आपको बताया कि भाई हम जब आते हैं तो आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते ही करते हैं। और फ़िलहाल क्या क्या आपने फरमाइशों में किया है, चलिए ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग मूवी के अलग अलग मूड्स के आज कई अलग अलग सॉन्ग्स आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और लगातार आपकी कॉल्स भी आ रही है जो कि हम लेते भी जा रहे। फ़िलहाल देवी प्रसाद जी की रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि गोंडा से ही सुनते हैं क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। आइए आपको सुनाते हैं आपके गोंडा FM 89.6 FM पर आपके क्वालिटी गोंडा शो में आपके आरजे अदनान।

क्या बात है, तेरे जुल्मों सितम सब सलाखों पर बांध लिया है। फिलहाल ये हमने देवी प्रसाद जी की रिक्वेस्ट पर इतना बेहतरीन उम्दा सा गाना सुना। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे गाने की तरफ और देखते हैं कि भाई दूसरा गाना किसने रिक्वेस्ट किया है, क्या है, ये हम आपको सुनाने वाले हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा वाले प्रोग्राम में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल लेकर चल रहे हैं अगले रिक्वेस्ट की तरफ। शारदा प्रजापति जी हैं और आपने मौसम मस्ताना रिक्वेस्ट किया है फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अरे दिल है किसका, अच्छा मेरे बारे में नहीं, सॉरी। खैर जिसका भी हो वो अपना संभाल ले, फिलहाल आपने तो रिक्वेस्ट कर दिया है तो चलिए भाई आपकी रिक्वेस्ट को हम पूरा करते हैं आपके कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में। और आज है फ्राइडे, सो आज एक नहीं दो दो घंटे चलने वाला है आपका ये स्पेशल शो, सो इसलिए नाराज बिल्कुल मत होइएगा, बस सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए और अपनी रिक्वेस्ट पूरी करवाते रहिए।

बात तो ऐसी हो रही कि आज से तुम्हारा कल से किसी और का है क्या? हाँ, ये किरायेदारी नहीं चलेगी दिल के मामले में। फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने क्वालिटी गोंडा वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ, और अगली रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स पता था कि 110% टू 50% टू 10% टू 100% टू 200% ये गाना आने वाला है फूलों का तारों का। लेकिन अगर ये छोटा भाई गाए अपनी बहने के लिए, कैसे गाएगा? जस्ट इमेजिन कैसे गाए, वो क्या करेगा बताओ ऐसे। फूलो तालो ता छपता देना है, 1000 में मेली बहना है, छाली उमल तुमसे हमें झगलते लेना है। ऑफ कोर्स ये झगड़े तो भाई बहन का प्यार होते हैं। ना सिर्फ अनुज बल्कि हमारे नाम राम नरेश जी ने भी कौड़िया बाजार से छोटी बहन मूवी का यही राखी सॉन्ग ऑफ कोर्स किया हुआ है रिक्वेस्ट। तो चलिए आप दोनों लोगों की तरफ से आप दोनों छोटकी बहनों को ये वाला बड़ा ही खूबसूरत सा गाना जो कि राखी का कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग बन गया है, ये सुनाते हैं और वापस से आते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। तब तक ये एंजॉय करते रहिएगा।

0: हाँ जी, फूलों का तारों का सबका कहना है कि हम भाई बहनों को जिंदगी भर झगड़ते झगड़ते प्यार करते रहना है। अगर झगड़ा ना हो तो फिर भाई प्यार कैसा होगा, जाहिर सी बात है। इसी को बताने के लिए फिलहाल हमसे कॉलर जुड़ चुके हैं जो लाइव खुद गाना चाहते हैं। भाई विजय कुमार जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है।
1: जब फूल में
0: जी
1: फूल मुरझाए वो हो जाए बेकार,
0: क्या बात,
1: वर्षा आधी धूप फूल को तभी सुखाए, कोहरा धूप बादल आंधी कांटों को न छू पाए, जब आएंगे नए फूल होगी जब बहार, फिर से आएगी खुशियाँ जागेगा फिर से प्यार।
0: क्या बात है,
1: आज आपको प्यार भरा नमस्कार विजय पांडे के तरफ से।
0: विजय पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पचपिड़वा बलरामपुर से सुन रहे हैं और ये लाइव आपने जो बोला है वो सब तक पहुंचा है और आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद धन्यवाद। सुबह लगातार आपसे बातचीत का दौर जारी है और फिलहाल हम चल रहे हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। और आपको पता है भाई कि अगली रिक्वेस्ट किसकी है और क्या है? नहीं पता है ना? अरे हम काय के लिए मौजूद है। अब हम सुनाने जा रेनू तिवारी जी की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि सावन भैया अभी छाया हुआ है और जब पूरे जहां में और गोंडा में छाया रहेगा तो क्या लगता है, गोंडा एफएम पर रह जाएगा? गोंडा एफएम पर तो सबसे ज़्यादा छाएगा। तो चलिए सावन गीत सुनाते हैं आपकी रिक्वेस्ट पर और एक बार वापस से आप सभी को सावन की बहुत बहुत मुबारकबाद प्रेषित करते हैं।

देखिए ना, ये फैमिली इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बड़ी होती जा रही है कि हर रोज हमारे साथ बहुत सारे नए लिसनर्स जुड़ते आते हैं। फिलहाल एक नई रिक्वेस्ट, एक नया सॉन्ग, एक नए लिसनर की जुबानी। दीप बालाजी हमसे ऑफकोर्स जुड़ चुकी हैं और आपकी रिक्वेस्ट आई है, तुमसे बना मेरा जीवन। आइए भाई, ये खूबसूरत सा गाना आपकी रिक्वेस्ट पर हम प्ले कर रहे हैं आपके अपने शो कॉल ट्यून गोंडा में, सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड।

क्या बात है। और फिलहाल इसी के बाद राजू सलमानी साहब की रिक्वेस्ट पर चलिए हम चलते हैं अल्लम गुल्लम गल्लम सजना की तरफ। अब आप कहेंगे ऐसा नाम जो मैं खुद जल्दी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्ले कैसे करने वाला है? देखिए प्ले करने में मुझे आप जो है प्रो समझिए, गाने में आप मुझे यहाँ नौ सिखिया समझ सकते हैं, वो भी जब ऐसे शब्दों अल्लम गल्लम सजना। अभी अल्लम गल्लम का मतलब क्या है ये तो खैर आप ज़रा ख़ुद सोचिएगा, खुद ही इसके मायने निकालिए, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि इसके मायने निकाल के ज़रा समझिए।

0: हाँ जी, सो भाई ये राजू सलमानी जी की रिक्वेस्ट पे सॉन्ग था फिलहाल अल्लम गल्लम, जिसको मैं खुद भी नहीं गा पा रहा था गल्लम गल्लम करके। खैर इसी के बीच चलिए फिलहाल हमसे हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं और देखते हैं कौन है वो। हाँ जी हेलो।
1: सबसे पहले आपका ज्ञानाश्चली परिवार को हमारे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: जी मैं सबलू सावंत ही बोल रहा हूँ, मोतिहारी बिहार से।
0: मोतिहारी बिहार से सबलू सावंत जी, आपका स्वागत करते हैं गोंडा एफएम उत्तर प्रदेश से। आप क्या कहना चाहते हैं आज रक्षाबंधन पर?
1: एक प्यारी सी कविता है जिसे हम अपनी आवाजों से ज्ञानाश्चली के माध्यम से पेश करते हैं।
0: जी प्लीज सुना दीजिए।
1: कहते हैं माँ क्या रक्षाबंधन होता है, क्या भाई को होना जरूरी होता है। मेरी भी रक्षाबंधन मना दो, मेरे लिए भी एक भाई ला दो।
0: क्या बात है।
1: मेरी भी रक्षाबंधन मना दो, मेरे लिए भी एक भाई ला दो। सुना है कि वह बहनों की रक्षा करता है,
0: वाह,
1: सह कर भी उसका जीवन संवरता है।
0: क्या बात।
1: मेरी भी रक्षा तुम उससे करवा दो ना, मेरे लिए एक भाई ला दो। रेशम की डोरी में एक ताकत होती है और बहन की रक्षा इसमें पिरोती है। मुझे भी किसी बहन बना दो, मुझे भी किसी की बहन बना दो, मेरे लिए भी एक भाई ला दो। सुना है आज त्योहार भाई बहन का होता है, अगर बहन की तकलीफ हो तो भाई भी रोता है।
0: बिल्कुल सही।
1: आज मेरा भी त्योहार सजा दो ना माँ, मेरे लिए भी एक भाई ला दो ना माँ, मेरे लिए भी एक भाई ला दो ना माँ।
0: वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सबलू सावंत जी मोतिहारी बिहार से जुड़ने के लिए और 89.6 एफएम पर अपनी रिक्वेस्ट भी पूरी करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो भाई ये सबलू सावंत थे मोतिहारी बिहार से और फिलहाल हम चल रहे हैं अगली गाने की फरमाइश की तरफ, जो कि गुलफशान ने किया है रिक्वेस्ट। इतिहास मूवी का है दिल लेके यार दिल दिया जाता है। अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं था। खैर चलिए देखते हैं इसको भी सुन करके क्या कहना है इस गाने में, इस लिरिक्स के माध्यम से।

0: इतनी ज्यादा चोरी होगी कि भैया अब तो मुकदमा दायर हो सकता है। फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने सुपर डुपर हिट शो कॉलर ट्यून गुना में आपके आरजे अदनान। और फिलहाल वक्त हो गया है अनु पांडे की रिक्वेस्ट के गाने को सुनने का। तो चलिए भाई, एक जबरदस्त इन्होंने सॉन्ग जो है रिक्वेस्ट किया है, जो मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आता है। इस गाने को आप भी सुन करके कहने वाले मुझे पता था ये ट्यून सुनते ही आप कहेंगे वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। चलिए एंजॉय करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में।
1: दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

एक क्वेश्चन पूछना, जब मैं सवाल पूछूं तो जवाब आप दे ही जाना। तो चलिए भाई, एक सवाल है और सवाल ये कि आज कितनी बहनों को शॉक्ड लगा है। दो तरह का शॉक्ड होता है, दो तरह का करंट होता है। एक तो है कि लिफाफा खोलते ही ओ माय गॉड इतने सारे पैसे, और दूसरा अरे बस इतने। So, चलिए आप लोग बता सकते हैं फिलहाल चैट बॉक्स पर। सवाल बड़ा ही गहरा है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हम एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल कॉलर ट्यून गोंडा आपके गोंडा एफएम 89.6 एफएम पर। ये सवाल है आरजे अदनान की तरफ से, जवाब आपको देना है। फिलहाल हम चैट बॉक्स पर आकर के जरूर पढ़ने वाले कौन कौन मैसेजेस आ गए हैं, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। So, सबसे पहले जो आज आया उस्मान खान का है, गुड आफ्टरनून टू यू। नाजिया अंसारी लिखती है गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो के बाद दोपहर के क्वालिटी ऑन गोंडा प्रोग्राम में। सविता दुबे जी लिखते हैं शुभ दोपहरिया सभी को, आपको भी शुभ दोपहरिया। महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान, आपका भी स्वागत है, वेलकम है क्वालिटी ऑन गोंडा प्रोग्राम में। इसके बाद रिनी, हेलो सर गुड आफ्टरनून। हेलो नाजिया लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कॉल नहीं लग रही थी। ओके, और फिलहाल डिमांड आपकी पूरी हो चुकी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जुगल किशोर वर्मा जी हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश, सर जी फ़ोन लगाना पड़ेगा। जी हाँ बेशक, और आपने बता भी दिया है, आपकी रिक्वेस्ट भी ले ली गई, थैंक यू सो मच टू यू। फिलहाल इसके बाद जो अगला मैसेज आया है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आप लोग बातचीत, और इम्तियाज़ अहमद मौजूद हैं गुड मॉर्निंग के बाद। अब नून वाले शो में आपका भी स्वागत है, ऑफ कोर्स आफ्टरनून का सुपर हिट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा। सो सबलू सावंत जी हैं सांता क्रूज मुंबई से, आपका भी स्वागत है, और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर ली गई है, कॉल किया था आपने भी। सो भाई फटाफट से जिन लोगों ने कॉल नहीं की है और उनको रिक्वेस्ट पूरी करानी वो ज़रूर कराए, क्योंकि आज 5 बजे तक आरजे अदनान साथ हैं, अभी तो बस 4 ही बजने वाला है, इसके बाद 5 बजे तक का टाइम है। सो आपकी रिक्वेस्ट को हम ज़रूर पूरा करने वाले हैं, और आप लगातार एंजॉय करते रहिए 89.6 एफएम का कॉल ट्यून गोंडा प्रोग्राम। और फिलहाल अगली जो रिक्वेस्ट है वो है महेंद्र जी की, जी हाँ महेंद्र देपन जी की फ्रॉम राजस्थान। चलिए भाई आपकी रिक्वेस्ट पर किया गया ये सॉन्ग हम सुनाते हैं, अखियां मिलाऊं कभी। क्या बात है यार, ये सब सॉन्ग इतने मस्त हैं कि इनको सुनो तो मज़ा ही आ जाता है। फिलहाल एंजॉय दिस सॉन्ग।

बिना पायल के घुंघरू तब बचते हैं जब आप चलते चलते कहीं चौकी के कोने से लड़ जाएं, उसके बाद तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो दर्द का एहसास होता है, शदीद दर्द जिसके आगे कुछ भी समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता। फिलहाल कभी आपके तो नहीं हुआ है बिना पायल के घुंघरू बचते महसूस किया है आपने? जस्ट अ क्वेश्चन यार। फिलहाल चलिए अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं, और अगले सॉन्ग की जो रिक्वेस्ट वो हमारे सुरेश कुमार प्रजापति जी ने किया है, जो कि बहुत ही करीब से सुन रहे हैं दुख हरण नाथ मंदिर स्टेशन रोड गोंडा के पास से ही, और उनको आज फाइनली याद आ गया है कि आज पूर्णिमा है और आज गली में चांद निकलने वाला है, और इसका फायदा और सबसे तेजी से हमारे सुरेश जी ने उठाया और पहले ही इस सॉन्ग को रिक्वेस्ट कर दिया। अब देखिए कितनी समझदारी की बात है कि आज पूर्णिमा इतना बेहतरीन सॉन्ग आपने रिक्वेस्ट किया है। चलिए भाई इस गाने को एंजॉय करते हैं। आपकी कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और हाँ आज 5 बजे तक आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। आप चाहे तो कॉल करके अपनी रिक्वेस्ट पूरी करा सकते हैं 6393 316 429 6393 316 429।

बात कॉलर ट्यून गुंडा में आरजे ना निकला। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी दिन बाद आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा मजा आ रहा आप लोगों से मिल करके। वैसे तो हम आपको मिलते हैं सुबह 8 से 11 गायगा गुंडा विद आरजे अदनान संडे स्पेशल एंजॉय करते हैं, और आपको मिलते हैं गुड मॉर्निंग गुंडा शो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फिलहाल मौजूद है आपके साथ में कॉलेट्यूम गोंडा में, और अब हम चार तरह के भैया लोगों का नाम बताने वाले हैं, मतलब नाम नहीं, चार तरह के जो भाई होते हैं ना रक्षाबंधन में, उनके बारे में जरा हम बताने वाले हैं। आप कहेंगे वाह क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। सो देखिए चार तरह के कौन कौन से भाई होते हैं। अब जैसे द मिस्टर इंडिया वाला जो राखी का टाइम होते ही अचानक से गायब हो जाता है या अचानक सो जाता है, ऐसे भाई हैं। अगर हो सकता है आपका कोई ऐसा भाई हो, जो बहनें सुन रही हैं वो समझती हैं इस बात को कि हाँ ऐसा भाई होता है जो मिस्टर इंडिया वाला होता है, जब एकदम राखी का टाइम होगा ना एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पर जाके या तो गायब हो जाएगा या तो सो जाएगा। दूसरा होता है द CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बहन को राखी बांधने से पहले पूरे साल का हिसाब गिना देता है। याद है पिछले महीने 200 रुपये का रिचार्ज कराया था तुम्हें, याद है कि नहीं याद है? तो ये द CA वाला भाई होता है जो हिसाब किताब पहले ही करा देता है मारे डर के कि हो सकता है कम चूना लगे। दूसरा के बाद तीसरा आता है द इमोशनल ड्रामेबाज, जो 50 रुपये का लिफाफा देकर ऐसे गले मिलता है जैसे अपनी पूरी जायदाद नाप कर दी हो अपने बहन के, ऐसे भी पाई पाए जाते हैं। चौथे होते हैं द जेन्युइन भाई, जी जो साल भर तंग करते हैं लेकिन गिफ्ट ऐसा देते हैं कि बहन का दिल खुश हो जाता है। तो चलिए भाई अब आप खुद से बता दिए कि आप इन चार में से किस टाइप के भाई हैं, और बहनें फटाफट से आकर के बता दें कि उनका भाई आखिर चार में से कौन से कैटेगरी में आता है। द मिस्टर इंडिया जो अचानक राखी बांधने के टाइम पर गायब हो जाता है या सो जाता है, द CA वाला भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहन को राखी बांधने से पहले पूरे साल का हिसाब गिना देता है, और तीसरा है द इमोशनल ड्रामेबाज जो 50 रुपये का लिफाफा देकर ऐसे गले मिलता है जैसे पूरी जायदाद ही आपके नाम कर दी हो, और चौथा होता है जेन्युइन भाई जो साल भर तंग तो करता है लेकिन गिफ्ट ऐसा देता है कि भाई बहन खुश हो जाती है उसे देखकर। सो आप बता सकते हैं बहन है तो अपने भाई के बारे में, और अगर आप खुद भाई हैं तो बता सकते हैं कि भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी के भाई आप हैं। चलिए फटाफट से सोचिए और मुझे बताइए, मुझे पता है कि ये बात बिल्कुल सच है और इसमें कोई झूठी बात नहीं। फिलहाल हमारे धर्मेंद्र जी ने किया है रिक्वेस्ट, मोहन धर्मेंद्र मोहन जी जो आवास विकास गोंडा से सुनते हैं, और चंदारे मेरे भैया से आइए आपकी रिक्वेस्ट पर ये गाना जो है वो हम प्ले करते हैं, सुनाते हैं आपकी कॉलेट्यूम गोंडा प्रोग्राम में, और आप लोग फिलहाल बने रहिए और सवाल का जवाब दीजिए जरूर।

क्या बात है, बहना याद करेगी। फिलहाल हमने आपकी रिक्वेस्ट पर इस गाने को सुना। अब चूंकि हमने एक सवाल पूछा था और चार कैटेगरी के भाई बताए थे जो कि रक्षाबंधन पर पाए जाते हैं, इन चार में से आप कौन सी कैटेगरी है, जिस पर महेंद्र देपन जी फ्रॉम राजस्थान वाले बोलते हैं चौथे नंबर के द जेन्युइन भाई हैं, जो साल भर तंग करते हैं लेकिन गिफ्ट ऐसा देते हैं कि बहन का दिल खुश हो जाता है। क्या बात है, दैट्स वेरी ग्रेट। और नाजिया हंस रही कि भाई उनके भाई भी ऐसे ही हैं। फिलहाल सभी के भाई कहीं ना कहीं चार कैटेगरी में ज़रूर निकलेंगे। सो चारों कैटेगरी हमने बता दी थी कि भाई कौन कौन से हैं। पहली कैटेगरी हमने बताया था द मिस्टर इंडिया, जो कि एकदम राखी के टाइम पे गायब हो जाता है या सो जाता है। दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला भाई, जो बहन को राखी बांधने से पहले पूरा हिसाब किताब बताता है, कितना तुम्हें इससे पहले दिया था, इससे पहले कितना दिया था। तीसरा द इमोशनल ड्रामेबाज, जो देता है बहुत छोटा सा गिफ्ट लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा करके कि क्या बताए। और चौथा जो है जेन्युइन, जो तंग तो बहुत करता है लेकिन गिफ्ट ऐसा देता है कि भाई बहन का दिल खुश हो जाता है। इस पर फिलहाल आप लोगों ने के रिएक्शंस जो है वो लगातार आ रहे हैं और आप लोग बताते जा रहे हैं कि आप खुद किस किस्म के भाई हैं। और चौथा ये है कि भैया आप खुद बता रहे हैं कि हाँ मेरा भाई किस तरह का है जो बहन है। फिलहाल शमा लखनऊ फ्रॉम, आपका भी स्वागत है, वेलकम है ऑफकोर्स क्वालिटी गोंडा वाले प्रोग्राम में। एंड यस, अब फिलहाल चलते हैं अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ। मोहम्मद उस्मान खान ने रिक्वेस्ट किया है और ये गाना पर्सनली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आइए सुनते हैं इस गाने को, एंजॉय करते हैं क्वालिटी गोंडा प्रोग्राम में।

हाँ जी, तो फिलहाल नाजिया ने मुझसे ही पूछ लिया है कि सर आप कौन से वाले कैटेगरी के भाई हैं। सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे अंदर ये चारों कैटेगरी आती है। आप सोचेंगे चारों कैटेगरी कैसे आ सकती है। देखिए, पहला जो है कौन सा, द मिस्टर इंडिया वाला भाई। तो मैं अपनी बहन को सरप्राइज़ देने के लिए ऐसे हरकतें करता रहता हूँ कि अचानक सोने का नाटक करूँगा, क्योंकि उससे पहले थिएटर कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत अच्छी तो नहीं, बहुत गंदी वाली एक्टिंग आती है, लेकिन आती है थोड़ी बहुत, तो वो कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी में इस तरह से है कि अब उसको बताते भी, देखो इससे पहले तुमको हमने तुमको ये दिलाया था, फिर उससे पहले हमने तुमको ये दिलाया था, इतना दिया था, वो उधार के नाम पर दिया था, ये इसके नाम पर दिया था। तीसरा कैटेगरी होती है कि हम छोटा सा पहले गिफ्ट पकड़ाते हैं और फिर देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, और जब रिएक्शन मिल जाता है तो उसके बाद चौथी कैटेगरी में आ जाते हैं कि खूब सारा तंग करने के बाद एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट जो उसको चाहिए होता है, जो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से वो चाह रही होती है कि भैया कहीं से भी ये मिल जाए, उसके काम का हो, मे बी उसका कोई ऑफकोर्स कोई कैरी करने की कोई चीज़ हो या कुछ बनाने का कुछ हो, मतलब उसके लिए जो बहुत बेहतर हो। इस तरह से मैं चारों कैटेगरी से होकर के गुजरता हूं और ट्रेन की तरह करके निकल जाता हूं। सो फिलहाल ये तो मेरा रिप्लाई था। अब आप ख़ुद तय करिए कि आप चारों कैटेगरी में क्या आप भी आते हैं, या चार कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी से होकर गुजरते हैं। फिलहाल तो हम तो गुजर चुके हैं आपके सवाल के जवाब से। ऑलराइट, सो जुगल किशोर जी फ्रॉम मध्य प्रदेश, रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना, और साथ ही चितरंजन तिवारी जी आपको भी रक्षाबंधन का, ये दोनों लोगों को सॉन्ग हम डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी अपनी सिस्टर्स को ये सॉन्ग डेडिकेट किया है। तो आप दोनों की रिक्वेस्ट पर जुगल किशोर जी मध्य प्रदेश से और चितरंजन तिवारी फ्रॉम गोंडा, ये एक खूबसूरत सा राखी सॉन्ग आपकी रिक्वेस्ट पर हम प्ले कर रहे हैं।

भाई ये जो सॉन्ग्स हैं की लिरिक्स सुनकर के वाकई मतलब अपने भाई बहनों की याद आ जाती है, सिबलिंग्स की। और यार कुछ भी हो, मतलब जो रिश्ता हम लोगों का होता है फ्रेंड्स वाला, मतलब जो बहनों से होता है, भाइयों से होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। इसके इसके कोई मायने ही नहीं है, मतलब इसको हम क्या ही एग्जांपल मिला है। फिलहाल सविता दुबे जी ने मौसम बदलते देखा, ऊपर देखा काला काला बादल आ गया हरखापुर के ऊपर, फिर क्या था, कॉल मिला दिया और कहा कि उनको ये मौसम वाला सॉन्ग सुनना है। तो ज़रा चलिए भाई उनके साथ, हम सब लोग इस बदलते मौसम को ज़रा एंजॉय कर लें।

0: बादल छाया है।
1: जी हाँ, फिलहाल गोंडा पे बादल छा गया है और सच में मौसम बदल गया। मुझे नहीं पता था भैया तानसेन के गाने से ही खाली मौसम बदलता है, यहाँ तो सविता दुबे जी की रिक्वेस्ट से भी गोंडा का मौसम जो है वो बदल जाता है। फिलहाल चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ और सुरेश कुमार जी ने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में हम बहनों के लिए फ्रॉम दी मूवी गाना अनजाना से रिक्वेस्ट किया है। तो चलिए भाई, ये खूबसूरत सा गाना जो रक्षाबंधन को लेकर डेडिकेटेड है, हम सुनाए देते हैं। और साथ ही साथ जिन भी लोगों को रक्षाबंधन के लिए स्पेशली सुनना था ये सॉन्ग, उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था फ्रॉम द अनजाना मूवी, और सुरेश कुमार जी ने गोंडा से इस गाने का रिक्वेस्ट किया था। फिलहाल अगले गाने की रिक्वेस्ट है इरशाद अहमद जी की, जो कि हथियागढ़ से ही सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। अब देखते हैं भैया कि इरशाद जी इसमें कितना कामयाब होने वाले, लेकिन हाँ ठीक है, कोशिश तो की जानी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको?

क्या बात है भाई, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग रिक्वेस्ट किया और सभी को काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा आप लोगों ने एंजॉय किया इस गाने को और हमने खुद भी इस गाने को काफी ज्यादा एंजॉय किया। फिलहाल चलते हैं आज वाले नहीं पुराना वाला माहिर सुनने, किसकी रिक्वेस्ट पर? सबीहा की रिक्वेस्ट पर। फिलहाल इन्होंने गजब के सॉन्ग को जो है वो रिक्वेस्ट कर लिया है, तो चलिए फिलहाल सुनते हैं आखिर क्या है इस गाने में।

फिलहाल नाजिया जी ने हमको चैट बॉक्स पर जो लिखा है वो मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, उसको एज कॉम्प्लीमेंट मिलूँ या एज कॉमेंट। अदनान सर आप बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा सा मस्ती करने की आदत है, मन ना लगे कि कौन बुरी चीज़ हो गया मस्ती करना। खैर आप ज़रा सोच करके बता सकते हैं बाकी लोग कि अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट ले लूँ या कॉमेंट समझ के लूँ या कुछ मैशअप, जैसा आजकल जैसे हर चीज़ मैशअप में चली है वो कुछ सोच के ऐसा रख लूँ। फिलहाल सबलू सावंत जी की रिक्वेस्ट पर शत्रुघ्न सिन्हा जी के ऊपर फिल्माया गया राखी का ये ज़बरदस्त सॉन्ग ऑफकोर्स आपके लिए पेश खिदमत करते हैं। आई होप कि ये गाना पसंद आने वाला है आपको।

क्या बात है भाई। और फिलहाल चलते हैं अगली रिक्वेस्ट यानी अरमान के सॉन्ग की तरफ, उम्र कैद होगी मुझको फैसला अदालत का। ये अताउल्ला जी की आवाज़ का ये सॉन्ग है और आई होप कि आप लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

उम्र कैद होगी मुझको फैसला अदालत का, मुकदमा चलेगा यार। ओह भैया, ये अरमान जो है आज बात करते करते हम सभी लोगों को कचहरी तक फिलहाल ले गए हैं। थैंक यू सो मच अरमान इस सॉन्ग को डेडिकेट करने के लिए। और भैया फिलहाल नाजिया जी, आप क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे बुरा लगा? इवन मुझे मज़ा आया, मैं मस्ती करने वालों में से हूँ और मुझे तो फुटेज खाना था ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? एंड इवन मैं खुद मस्ती करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और ऐसी कोई गलत बात आपकी साबित नहीं हुई है। एंड इवन ऐसा माहौल हम बना के ही रखते हैं अपने 99.6 FM पर कि मस्ती जो है वो टॉप लेवल पर चलनी चाहिए, एंजॉयमेंट होता रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए और साथ ही ये फैमिली वाला एक माहौल जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए। और एक फैमिली में आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सभी लोग कंफर्टेबल रहें। फिलहाल इसी घड़ी में देखिए, फिलहाल चार नाम बचे हुए हैं जिनकी रिक्वेस्ट जाते जाते हमें पूरी करनी है। रिजू हैं, अविनाश जी हैं, शमा जी हैं फ्रॉम लखनऊ और रीना शर्मा जी हैं रुड़की उत्तराखंड से। आप चार लोगों की अभी फरमाइश जो है वो अब पूरी होने वाली है, हम उसको पूरा करने वाले हैं। सो फिलहाल अविनाश जी ने जो रिक्वेस्ट किया है सॉन्ग, और अनु पांडे को डेडिकेटेड है ये सॉन्ग, तो चलिए भाई इस सॉन्ग को सुनते हैं आपके अपने क्वालिटी हूँ गुंडा प्रोग्राम में और ज़बरदस्त माहौल के साथ। इसके बाद तीन और रिक्वेस्ट हैं जो पूरी होने वाली हैं, और रिक्वेस्ट अगर आएगी तो उसको भी पूरा कर ही लिया जाएगा। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना क्वालिटी गुंडा प्रोग्राम।

सो ये अविनाश जी ने रिक्वेस्ट किया था और ऑफ कोर्स आपकी रिक्वेस्ट का ये सॉन्ग प्ले हो चुका है। फिलहाल हम चलते अगली रिक्वेस्ट की तरफ और ये है भैया आतिफ असलम की आवाज़ में, जो कि बहुत दिन बाद मैं खुद भी इस सॉन्ग को सुनने वाला हूँ। एक टाइम का ये सेंसेशन बन चुका था ये सॉन्ग और फिलहाल रिजू ने मुंबई से इसको रिक्वेस्ट किया है। तो चलिए भाई कुछ इस तरह, क्या खूब गाना है, इसको साथ साथ गाएंगे, पक्का बता रहे हैं।

यार ऐसे गाने ना गुनगुना देने का मन करता है, मन करता है ऐसे गानों में हम कहीं खोते हुए चले जाएं। ऐसा इसलिए नहीं कि ये गाना कोई खास है, लगे बस एक गाने से जुड़ाव इसलिए कि शायद किसी वक्त बहुत सुना जाता था और कुछ गानों के साथ आपके इमोशन बन जाते हैं ना। ऑफ कोर्स अगर आपके भी इसके साथ कोई इमोशन बने तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इमोशंस तो होते ही हैं गानों में, क्योंकि गाने होते हैं जिंदा। जी हमारे साथ में नई नई जुड़ी नवाबों के शहर लखनऊ से शमा जी की रिक्वेस्ट पर हम गाना सुनाने वाले हैं। बहना हस्ती है तो अलका याग्निक मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में है। प्यार का देवता मूवी है, 1991 में आई थी और फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती पर ये मूवी फिल्माई गई थी। तो चलिए भाई इस गाने को आज रक्षाबंधन वाले दिन शमा जी की तरफ से आप सभी को डेडिकेट करते हैं।

भाई तो बहुत तरह के होते हैं, चार तरह के भाई होते हैं, हम तो पहले ही बता चुके हैं भाई साहब। फिलहाल एक बात और, पता है आज के दिन सस्पेंस सबसे ज्यादा कहाँ आता है? जब राखी बंधवाने के बाद जब भाई अपनी जेब में हाथ डालता है तो बहन की नजरें उसकी जेब की गहराई नाप रही होती है। वो जो कसम से बता रहे 5 सेकंड का सस्पेंस होता है ना कि जेब से 100 रुपए का कड़क नोट निकलेगा या 500 का, वही असली थ्रिल है भाइयों। सो आज बिल्कुल आप सच बताना, जब जेब में आप हाथ डाल रहे थे तो दिल की धड़कन बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? क्योंकि बहनें जो हैं वो हाथ डालने के अंदाज से समझ जाती हैं कि कितना रुपया जो है वो बाहर आने वाला है। फिलहाल मुझे लगता है कि ये बात तो बिल्कुल सच है। और चलिए फिलहाल अगली जो रिक्वेस्ट है वो हम पूरी करते हैं। अगली रिक्वेस्ट आई है रीना शर्मा जी की, रुड़की उत्तराखंड, ऑफ कोर्स पहाड़ों का राज्य उत्तराखंड से, और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, झूमता मौसम मस्ती महीना। सो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं आपके कॉलर ट्यून गोंडा वाले प्रोग्राम में, और रीना शर्मा जी की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं आपके गोंडा FM पर। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

याला याला आज तो मजा ही आ गया भैया। आज इतने गाने, इतनी रिक्वेस्ट, इतनी शरारत, इतने फन, इतना मजा, सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट सा लगा। देखिए रेडियो गाना स्थल 89.6 FM इसी का नाम है, जहाँ पे हम खुल करके हंसते हैं, खुल करके मस्ती करते हैं और खूब सारा फन करते हैं। और ज़िंदगी क्या है यार, ज़िंदगी तो मुझे लगता है बस इसी का तो नाम है कि जितना हंस लो, जितना गुनगुना लो, जितना मस्ती कर लो, क्योंकि किसी का नहीं पता होता है कि क्या परेशानी किसकी लाइफ में चल रही है। इसीलिए हंसने का मौका मिले, थोड़ा सा मजाक बनाने का मौका मिले, बिल्कुल करो और खुल कर करे, और हाँ पूरी ईमानदारी से करो। फिलहाल आइए चलते चलते, मोहम्मद अतीक खान की रिक्वेस्ट भी आई हुई है, आपने रिक्वेस्ट किया है गाना, सुन लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट का ये सॉन्ग, उसके बाद वापस आते हैं और बताते हैं कि लास्ट रिक्वेस्ट आखिर किसकी आई है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो गानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned.

क्या बात है। सो फिलहाल मोहम्मद अती खान की रिक्वेस्ट पर क्या झुकता नहीं, ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट थी और ऑफ कोर्स हमने आपको सुनाया। आई होप कि आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, मज़ा किया होगा। अब चूंकि कुछ मिनट्स बाकी हैं लेकिन आप लोगों के मैसेजेस आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया। क्योंकि वो दिल से जो दुआएँ निकलती है जब आप अपनेपन से हमसे कुछ कहते हैं, मजाक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लिटरली बता रहे हैं, ऐसा लगता है यार कि जैसे ये एक फैमिली है। तो सोचिए एक फैमिली से निकल कर दूसरी फैमिली में आना कितना खुश नसीबी की बात है, और ये बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें आप और हम दोनों एक साथ हैं। फिलहाल जाते जाते आवारापन 2 मूवी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है, और जाते जाते ये मेरा लास्ट में एक मेरी पसंद का सॉन्ग है, तो आइए सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे ले लेते हैं विदा। फिलहाल कैसा लगा प्रोग्राम हमको जरी बताइएगा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9 81 9 76। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
6: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ रचना शर्मा, लेकर हाजिर हूँ गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 27 अगस्त 2026 को स्वशासी मेडिकल कॉलेज गोंडा में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के नोडल प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही स्वयंसेवकों और युवाओं से सीधे संवाद भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वन एवं पर्यावरण विदेश राज्य मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा मेडिकल कॉलेज में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा देवी बख्श सिंह जी की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। इसके अलावा जिले के युवा और होनहार खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को खेल, सेवा और उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित ग्राम एली परसोली में करीब 80 वर्षीय श्यामलाल पुत्र रामदीन की अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सूचना मिलते ही राजस्व टीम और आपदा राहत दल ने तुरंत मदद पहुंचाई और उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। बताया गया कि सुबह करीब 9 बजे श्यामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बाढ़ के कारण गांव से बाहर निकलने का रास्ता प्रभावित था। ऐसे में उनके बेटे बलजीत उन्हें सरकारी नाव की मदद से घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित बांध तक लेकर गए। इसके बाद मौके पर मौजूद आपदा राहत टीम की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलसर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक श्यामलाल की तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी। प्रशासन की ओर से उनके परिवार को पहले भी बाढ़ शरणालय में सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिवार ने घर पर ही रहना उचित समझा। तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद एम्बुलेंस हेल्पलाइन से भी संपर्क किया गया। एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने पर मौके पर मौजूद राजस्व टीम और आपदा राहत दल ने सरकारी नाव और उपलब्ध संसाधनों की मदद से बुजुर्ग को सुरक्षित बांध तक पहुंचाया और फिर अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई। फिलहाल राजस्व टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत बचाव के काम में लगी हुई है। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत के अनुसार लोगों को राहत बचाव और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों और बाढ़ शरणालयों में जाएं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। तथ्य छिपाकर बनवाया गया चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त, जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। मामला ठेकेदारी के काम के लिए बनवाए गए चरित्र प्रमाण पत्र से जुड़ा है। पवन कुमार ने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और शपथ पत्र दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। इसी आवेदन और पुलिस अधीक्षक गोंडा की संस्तुति के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बाद में अमित कुमार पुत्र ब्रजेश कुमार निवासी गोंडा ने शिकायत की कि पवन ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर ये प्रमाण पत्र हासिल किया है। इसके बाद मामले की जांच अपर जिलाधिकारी गोंडा से कराई गई। जांच में सामने आया कि पवन कुमार उस पलालू के खिलाफ धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और धारा 506, धारा 504, 188 और 147 भादवी के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सम्मन भी जारी किया गया है। जांच में ये भी पाया गया कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की तारीख 4 जून 2025 को ये FIR पहले ही दर्ज थी। इसके बावजूद शपथ पत्र में इस मुकदमे की जानकारी नहीं दी गई थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच रिपोर्ट्स और सभी संबंधित दस्तावेजों को देखने के बाद माना कि मुकदमे की जानकारी छिपाकर गलत जानकारी वाला शपथ पत्र दिया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने पवन कुमार के नाम से जारी चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। वेंकटाचार क्लब में परिवहन विभाग की ओर से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष बसों को रवाना किए जाने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि झंझरी आशीष मिश्रा, महिला मोर्चा पदाधिकारी बीना राय समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा देना है। मुख्यमंत्री जी के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने देखा। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया और उन्होंने इस पहल की सराहना भी की। कार्यक्रम में शामिल 700 से अधिक महिलाओं को सम्मान के तौर पर साड़ी और मिठाई भी दी गई। उपहार मिलने पर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने महिलाओं से बातचीत करते हुए सरकार की अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और दूसरी महिलाओं को भी इनके बारे में जानकारी देने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सुविधाएं और सम्मान देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में ARM रोडवेज परियोजना निदेशक DRDA सुशील कुमार पांडे, DC NRLM JN राव, अपर जिला पंचायत राजाधिकारी GD जैन सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी से कार्यक्रम सफल रहा। गोंडा से नेपाल के लिए गैर बासमती चावल की पहली खेप रवाना। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के तहत जनपद गोंडा में कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजार तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नवीन गल्ला मंडी बहराइच रोड गोंडा से नेपाल के लिए गैर बासमती चावल की पहली खेप को जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने से किसानों और व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों और व्यापारियों से चावल की गुणवत्ता, जरूरी मानकों और निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं का ध्यान रखने को कहा। मंडी समिति के अधिकारियों ने बताया कि गोंडा से नेपाल को गैर बासमती चावल भेजने की शुरुआत जनपद में कृषि व्यापार को नई दिशा देगी। इससे किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे। गोंडा से नेपाल को चावल का निर्यात शुरू होने से भविष्य में अन्य कृषि उत्पादों को भी पड़ोसी देशों के बाजार तक पहुँचाने की उम्मीद है। इस अवसर पर मंडी समिति के संबंधित अधिकारीगण तथा व्यापारी मनीष अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। गोंडा के सेंट जेवियर स्कूल के खिलाड़ियों ने CBSE ईस्ट जोन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उन्हें सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। CBSE ईस्ट जोन ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन भदोही के BMG पब्लिक स्कूल सूर्यावा में किया गया था। प्रतियोगिता में सेंट जेवियर स्कूल के अंकुर आर्य ने अंडर 17 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन आगामी राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो हरियाणा के पानीपत स्थित बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में आयोजित होगी। वहीं अंडर 14 के 41 किलोग्राम भार वर्ग में आदर्श कुमार ने कांस्य पदक और अंडर 17 के 52 किलोग्राम भार वर्ग में जानवी मिश्रा ने कांस्य पदक हासिल किया। विद्यालय प्रबंधन ने अंकुर आर्य को 2500 रुपए और मेडल, जबकि आदर्श और जानवी को 1100 रुपए और मेडल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा अगस्त माह में लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में हुई राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विजेता आदित्य दीप पांडे को स्वर्ण पदक और सारांश राकेश भोगाड़े को कांस्य पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रबंधक सुजैन दत्ता ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। प्रधानाचार्य पायल दुबे ने भी खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षक प्रत्यूष राज की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी विजेता खिलाड़ियों को चेक और मेडल देकर सम्मानित किया और उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। विद्युत चालित चाक मशीन के लिए चयन साक्षात्कार 31 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की माटी कला टूल्स किट्स वितरण योजना के तहत जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और 20 अगस्त को हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 31 अगस्त को सुबह 11 बजे विकास भवन सभागार गोंडा में होगा। अभ्यर्थियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लेकर समय से पहुंचना होगा। निर्धारित समय पर साक्षात्कार में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों से तय तारीख और समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन के अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, नियमित टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, आयुष्मान कार्ड, NCD, RCH पोर्टल, OPD, IPD, हाई रिस्क प्रेगनेंसी तथा CHC, PHC की बेड ऑक्यूपेंसी सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी CHC अधीक्षकों को निर्देशित किया कि शासन के मंशानुसार जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं, अपने अपने CHC और PHC पर निवास करें और सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें, आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी, ई कवच पोर्टल अपडेट करने, प्रसव केंद्रों पर संस्थागत प्रसव बढ़ाने और सभी सेंटरों पर ANM की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण की समीक्षा में WHO के रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही मिलने पर 39 ANM को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जननी सुरक्षा योजना के भुगतान की खराब प्रगति पर नाराजगी जताते हुए CMS जिला महिला अस्पताल डॉक्टर शंभु दयाल तथा अकाउंटेंट प्रभात कुमार को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल एवं सभी CHC में गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले भोजन की व्यवस्था NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, CMO डॉक्टर संतलाल पटेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार, ACMO डॉक्टर आदित्य वर्मा, डॉक्टर CK वर्मा, डॉक्टर RP सिंह, DPM अमरनाथ, WHO के पदाधिकारी, समस्त CHC अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मिलेगा मंच, दीपावली मेले का होगा आयोजन। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री माधवी पांडे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य निधि योजना के तहत दीपावली पर्व पर दिव्यांगजनों के लिए दीपावली मेले का आयोजन प्रस्तावित है। मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए चित्रों, हस्तकला और अन्य उपयोगी उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से उनकी रचनात्मकता, हुनर, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा जिसके जरिए दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथ ही समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि मेले में आयोजन के लिए इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं अपना प्रस्ताव 3 प्रतियों में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय गोंडा के कमरा नंबर 35 में उपलब्ध करा सकती है। प्रस्तावों का परीक्षण करने नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए निदेशालय को भेजा जाएगा। गोंडा के पंडरी कृपाल ब्लॉक में करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी आवास शोपीस बनकर खड़े हैं। खंड विकास अधिकारी, BDO और ग्राम पंचायत सचिवों के लिए बनाए गए इन आवासों में कोई अधिकारी रहने को तैयार नहीं है। ये आवास पंडरी कृपाल ब्लॉक मुख्यालय से उत्तर दिशा में इंदिरापुर ग्राम सभा में स्थित है। कुल मिलाकर एक आवास खंड विकास अधिकारी के लिए और लगभग 15 आवास ग्राम पंचायत सचिवों के लिए बनाए गए थे। ये पूरा परिसर लगभग 10 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। अधिकारियों का दावा है कि ये आवास मुख्यालय से काफी दूर है। उनका मानना है कि वहां रहने से उन्हें कई समस्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण कोई भी अधिकारी इन नव निर्मित आवासों में रहना उचित नहीं समझता। गोंडा में देवीपाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल और सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खातून के बीच विवाद चल रहा है। अब इस मामले से जुड़ा एक पत्र सामने आया है। ये पत्र कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने

0: अवकाश पर रहेंगी और क्या छुट्टी आगे भी बढ़ाई जाएगी। आरोप है कि इस पर जज ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप मुझसे ये नहीं पूछ सकती। कमिश्नर ने पत्र में स्पष्ट किया है कि इस बातचीत में उन्होंने लंबित मुकदमे को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी। उन्होंने उसी दिन फोन पर हुई बातचीत की जानकारी जिला जज को दे दी थी। कमिश्नर ने जिला जज से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को मामले का जल्द निस्तारण कराने के लिए निर्देशित किया जाए। इसके बाद 3 अगस्त 2026 को उन्होंने जिला जज से फिर इस संबंध में अनुरोध किया, क्योंकि अगले दिन मामले की तारीख लगी थी। कमिश्नर के मुताबिक जिला जज ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। गोंडा के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र चौक बाजार और अंबेडकर चौराहा पर रक्षाबंधन त्योहार को लेकर रौनक चरम पर है। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक ये त्योहार नजदीक आते ही बाजार रंग बिरंगे धागों और आकर्षक राखियों से सज गए हैं। स्थानीय दुकानदारों ने कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके चलते मुख्य बाजारों में राखियों की सैकड़ों दुकानें सज चुकी हैं। बाजारों में सुबह से लेकर देर रात तक खरीदारी करने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार बच्चों के लिए छोटा भीम, डोरेमोन, लाइटिंग और म्यूजिकल राखियां विशेष तौर पर उपलब्ध हैं, जो उनके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं बहनों के लिए फैंसी रेशमी धागे, जरी मोती, कुंदन, चांदी के वर्क वाली राजस्थानी लुम्बा राखियों की भरमार है। गोंडा के नए पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय परिसर और विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वाचक कार्यालय, अकाउंटेंट शाखा, CCTNS प्रधान लिपिक, जन सुनवाई और IGRS शाखा सहित अन्य कार्यालयीन व्यवस्थाओं की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित शाखाओं में अभिलेखों के रखरखाव, कार्यों की प्रगति और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने डिजिटल वर्किंग को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया। निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्यों को डिजिटल माध्यम से किया जाए और ऑनलाइन पोर्टल सॉफ्टवेयर पर सूचनाएं समय पर अपडेट की जाए। गोंडा जिले के कटरा बाजार पुलिस ने GST फर्जीवाड़े के लिए मुख्य आरोपी कुंदन को बुधवार देर रात 10 बजे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और गोंडा ले आई है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे GST पंजीकरण कराकर सरकार को 1.60 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जालसाजों ने SR एंटरप्राइजेस नाम से एक फर्जी फर्म बनाई थी। इसके लिए कूट रचित और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। फर्म का GST पंजीकरण कराने के बाद बिना किसी वास्तविक खरीद बिक्री के बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर की गई। इस फर्जीवाड़े से सरकार को कुल 1,60,48,954 रुपए की राजस्व क्षति हुई है। इस वित्तीय फर्जीवाड़े का खुलासा राज्य कर विभाग की आंतरिक जांच के दौरान हुआ, जब फर्म के लेन देन और अभिलेख संदिग्ध पाए गए। राज्य कर विभाग के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने 17 जुलाई को स्थानीय थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने SR एंटरप्राइजेस और अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद कटरा बाजार थाने की पुलिस टीम ने डिजिटल सर्विलांस और बैंक खातों के विवरण के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। गोंडा जिले के तरबगंज विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत ब्योंदा मांझा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे घट रहा है। इससे ग्रामीणों ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा और खेतों में पानी भर जाने से पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया था। जलस्तर घटने के बावजूद ग्रामीणों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। बाढ़ के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा धान, गन्ने की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशुओं के चारे के लिए भी बोई गई फसलें नष्ट हो चुकी हैं। ग्राम प्रधान केशोरम यादव ने बताया कि बाढ़ के दौरान ग्रामीणों के आवागमन के लिए स्टीमर नाव की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने आशंका जताई कि जल स्तर घटने के बाद किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ होगा। गांव की सड़कें भी बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो आज के हलचल में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: सुनूंगा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, सांचे विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मोनिका। सांचे विरासत के माध्यम से हम लॉस्ट इंडियन फोक आर्ट्स को एक बार फिर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया के महानतम चित्रकारों में शामिल स्विस जर्मन चित्रकार पॉल क्ली ने कला पर एक बातचीत में कहा था कि हम में अभी भी अंतिम शक्ति की कमी है, क्योंकि हमें संपोषित करने वाली कोई संस्कृति नहीं है। पॉल क्ली के वक्तव्य की पृष्ठभूमि अलग थी, उसका संदर्भ अलग था। बावजूद इसके उनका वक्तव्य न केवल भारतीय आधुनिक कलाओं बल्कि लोक कलाओं की वर्तमान स्थिति पर भी सटीक बैठता है। बिहार की मंजूषा कला भी उनमें से एक है। मंजूषा पेंटिंग्स। मंजूषा पेंटिंग भारत की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। इस कला का विशेष प्रभाव प्रदेश की पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है, जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा कला अंग प्रदेश की एक बहुत बड़ी विरासतों में से एक है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की तरह मंजूषा कला भी है। इस कला को भी कपड़ों पर उकेरा जाता है। मंजूषा कला भारत की एक ऐसी अनोखी लोक कला है जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा अंग प्रदेश की बहुत बड़ी विरासतों में से एक। वैदिक इतिहासकारों की माने तो मंजूषा कला पर सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार ये कला प्राचीन अंग महाजनपद को इतिहास को उकेरती है। साथ ही ये पेंटिंग्स बिहुला विषहरी की कहानी को भी दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग्स एक ऐसी लोक कला है जो भारत के अंग क्षेत्र में विकसित हुई। इन्हें अक्सर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। उनके चमकीले रंग और उत्कारीगरी चित्रों को अलग बनाती है। मंजूषा पेंटिंग बेहद प्राचीन कालीन पेंटिंग है जो लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इस कला को वैश्विक पहचान भी मिली है। इस पेंटिंग को GI टैग तो मिला, फिर भी इस पेंटिंग को विशेष पहचान न मिल पाई। मंजूषा आर्ट इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्नेक पेंटिंग्स बाय फॉरेनर्स एज स्वर्लिंग स्नेक्स इन द आर्ट डिपिक्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इन बिहुला'स टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। मंजूषा आर्ट इज अ मैग्निफिशिएंट सागा ऑफ हाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अंग महाजनपद। अगर हम मंजूषा कला के स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो मंजूषा अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस कला रूप का पता 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता था, लेकिन 1931 के आसपास यानी करीब 1931 से 1948 के बीच के वर्षों में ये कला फली फूली। मंजूषा पेंटिंग की उत्पत्ति प्राचीन अंग प्रदेश से हुई जिसमें वर्तमान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मंजूषा कला की शुरुआत भागलपुर क्षेत्र के आसपास मौजूद वनस्पति और जीव के चित्रण के रूप में हुई थी। विहुला विषहरी कहानी ये भी कहते हैं। ये कहानी बताती है कि सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए, जो आयुर्वेद के महत्व को छूता है। पहले इस कला का निर्माण केवल दो परिवारों द्वारा किया जाता था। कुंभकार समुदाय बर्तन या कलश बनाते थे और उन्हें मंजूषा चित्रों से सजाते थे, जबकि मालाकार मंजूषा संरचनाएं बनाते थे और उन्हें मंजूषा रूपांकनों से सजाते थे। मंजूषा पेंटिंग्स 7वीं शताब्दी ईस्वी से चली आ रही है। चित्र मूलतः कुंभकार जाति जो कि व्यापार से कुम्हार थे उनके द्वारा बनाए गए थे। कुंभकारों ने विशिष्ट मंजूषा चित्रकला शैली विकसित करने के लिए अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के कौशल का उपयोग किया। वे मिट्टी की एक पतली चादर बिछाते थे और उसे पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों से रंगते थे। एक लंबे समय तक चलने वाला नमूना बनाने के लिए चित्रों को भट्टी में जला दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग को मिट्टी के बजाय कपड़े और कागज पर भी चित्रित किया जाने लगा। चूंकि मिट्टी की पेंटिंग अधिक नाजुक और ले जाने में जटिल थी, इसीलिए यह स्थिति बनी। 19वीं शताब्दी में अंग क्षेत्र व्यापार और कारोबार का केंद्र बन गया, तो मंजूषा पेंटिंग की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्षेत्र के तीर्थयात्री और यात्री अक्सर कलाकृति बेचते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग का चलन खत्म हो गया। यह विभिन्न परिस्थितियों के कारण था, जिसमें पश्चिमी कला रूपों का प्रवेश और व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अंग क्षेत्र का पतन शामिल था। मंजूषा पेंटिंग बिहुला बिशारी की कथा से जुड़ी लोक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये चित्र बक्सों पर बनाए गए थे, जिनका उपयोग भक्तों द्वारा बिशारी पूजा के लिए अनुष्ठानिक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। एक अन्य अनुष्ठान जिसमें मंजूषा पेंटिंग शामिल है, वो है जिसमें दूल्हे से सभी चार बिसहरियों को सिंदूर पाउडर या सिंदूर लगाने की उम्मीद की जाती है, और उसके बाद ही वो अपनी दुल्हन के साथ मंडप में शामिल हो सकता है। विशारी पूजा के दौरान कलश और मंदिर संरचित बक्सों की पूजा की जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि देवता की पूजा करने से उन्हें उनकी शक्ति और सुरक्षा मिलेगी। महिलाएं अपने जीवन साथी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिहुला से प्रार्थना भी करती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मंजूषा पेंटिंग की वापसी देखी गई है। ये इस ऐतिहासिक कला रूप के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित कलाकारों और संगठनों के प्रयास का धन्यवाद है। आइए जानते हैं कि क्या होती है मंजूषा कला। आखिर क्यों ये कला इतनी ज्यादा लोकप्रिय है और इतनी ज्यादा मैग्निफिशेंट आर्ट के तौर पर जानी जाती है। मंजूषा कला भारतीय कला का सबसे प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। ये कला आंध्र प्रदेश की विशेषताओं को वर्णित करती है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की लोक कथा बिहुला बिशहरी के बारे में भी मंजूषा कला के माध्यम से बताई जाती है। इस कला में एक मोटी और लंबी लाइन का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही बालों को लाइन के माध्यम से नहीं बल्कि रंगों से दिखाया जाता है। इस कला में देवी देवताओं और अंग प्रदेश के इतिहास के साथ साथ बिहुला विषहरी की कथा को दर्शाया जाता है, जिसमें पांच जहरीली बहनों के साथ एक सांप दिखाने की परंपरा है, जहां पात्रों के बाल खुले रहते हैं। चित्रों के माध्यम से बिहुला को उसके खुले केश और उसके सामने मंजूषा यानी नाग को चित्रों के द्वारा उकेरा जाता है। इस चित्र में एक ऐसी देवी को दर्शाया जाता है जो दाहिने हाथ में अमृत कलश लिए रहती हैं। इस कला में मुख्य रूप से गुलाबी, पीले और हरे रंग को उपयोग में लाया जाता है। इस कला में जो देवी देवताओं या महिलाओं की चित्र बनाई जाती है, उसमें उनकी सज्जा का बहुत महत्व रखा जाता है। कभी कभी इस कला में हरा और नारंगी रंग के जुड़े सामान्य सहायक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में केवल तीन रंगों का उपयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। एक महत्वपूर्ण और परिभाषित कारक इसकी सीमाएं हैं, जो पत्तियों, त्रिकोण और सांपों के पैटर्न से भरी हुई हैं। ये कला रूप मुख्य रूप से पौराणिक लोक कथाओं और रूपांकनों पर आधारित है, जैसे पद्मावती, मैना बिसाहरी, दोथिला भवानी, माया मनसा बिसाहरी, जया विशाहरी, चंदो सौदागर और कलश। मंजूषा पेंटिंग के ज्वलंत रंग और उत्कृष्ट जटिलताएं उन्हें अलग पहचान देती हैं। पौधों और खनिजों से उत्पन्न प्राकृतिक रंगों का उपयोग अक्सर चित्रों में किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में हरा, गुलाबी और पीला सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। इन रंगों का उपयोग अक्सर आकर्षक रचनाएं बनाने के लिए किया जाता है। पेंटिंग्स अपनी विस्तृत विशेषताओं के लिए प्रतिष्ठित हैं। कलाकार अक्सर लोगों, जानवरों और वनस्पतियों का विस्तृत चित्रण करने के लिए बारीक ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करते हैं। मंजूषा कला में तीन रंगों का उपयोग किया जाता है। मंजूषा कला में बॉर्डर का बहुत ज्यादा ही महत्व है। मंजूषा कला एक रेखा चित्र कला है, एक लोक कला है, एक स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि ये एक सूचीबद्ध कहानी कहने की कला है। मंजूषा कला पूरी तरह से बिहुला बिशारी की लोक कथाओं पर आधारित है। मंजूषा कला में पात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स लेटर यानी एक्स अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस कला के प्रमुख पात्र सांप, चंपा फूल, सूर्य, चांद, हाथी, कछुआ, मछली, मैना, कमल, कलश, तीर्धनुष, शिवलिंग, वृक्ष आदि हैं। इस कला के प्रमुख पात्र भगवान शिव, मनसा देवी, बिहुला, बाला, हनुमान, चंदू सौदागर, मंजूषा कला की सीमाओं में आते हैं बेलपत्र, लहरिया, त्रिकोण, मोखा और सांपों की श्रृंखला। बिहुला बिशहरी की पारंपरिक कहानी मंजूषा पेंटिंग का सबसे लोकप्रिय विषय है। कथा के अनुसार बिहुला नाम की एक युवा महिला अपने पति को नाग देवता से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। चित्रों में चित्रित कहानी में विशिष्ट दृश्यों में बिहुला की शादी, उसके पति की मृत्यु और उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की यात्रा शामिल है। मंजूषा पेंटिंग बिहुला और बिशहरी की कहानी के अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं और सामान्य जीवन की छवियों को भी चित्रित करती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा बात हो गई बिहुला बिशहरी की, बिहुला बिशहरी की, वही क्या है ये, क्यों सबसे ज्यादा मंजूषा पेंटिंग्स में बिहुला बिशहरी की कहानी बताई जाती है ये कहानी, तो आइए जानते हैं। बिहार के अंग प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला बिशहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला बिशहरी, जिसे कई लोग बिहुला बिशहरी भी कहते हैं, चूंकि वहाँ का एक्सेंट बदल जाता है, तो बिहुला बिशहरी में माता मनसा की पूजा होती है। माँ मनसा को शिव पुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे वासुकी की बहन बताया गया है। किसी समय में अंग प्रदेश में चंद्रधर नाग के एक सौदागर थे। वे चंपा नगर के बहुत बड़े व्यवसायी थे, साथ ही साथ वो एक शिव भक्त भी थे। बिशहरी, जो भगवान शिव की पुत्री कही जाती हैं, उन्होंने चंद्रधर पर दबाव बनाया कि वे शिव की पूजा ना करें बल्कि उनकी पूजा करें, लेकिन चंद्रधर इस बात से राजी नहीं हुए। इसके बाद गुस्से में बिशहरी ने सौदागर के पूरे परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे जिनका नाम बाला लखेंद्र था, उसकी शादी बिहुला नाम की एक लड़की से हो गई। मंजूषा पेंटिंग एकमात्र भारतीय कला है जिसमें अनुक्रमिक प्रतिनिधित्व है। मंजूषा कला बिहार के भागलपुर की एक लोक कला है। इस कला रूप को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए दी सर्प कम्युनिटी ने अनुश्री दत्ता के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कला पर एक आकर्षक कार्यशाला का आयोजन किया था। अनुश्री एक डिजाइनर और भावुक लोक कलाकार हैं, जो जर्मनी में स्थित हैं। लोक कलाओं के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें उनकी भारतीय जड़ों से निकटता से जोड़े रखता है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए फोक ट्रेंड नाम से अपना उद्यम शुरू किया है। कार्यशाला की शुरुआत अनुश्री और कला की दुनिया में उनकी यात्रा के संक्षिप्त परिचय के साथ हुई थी। अनुश्री ने मंजूषा कला का इतिहास समझाना शुरू किया और बिशहरी की पौराणिक कहानी भी सुनाई। उन्होंने अपनी एक रचना दिखाई जो कि शिवलिंग मंजूषा कला थी, और उन्होंने हरे रंग से शिवलिंग का बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। वह खूबसूरती से डिजाइन बनाती रहीं और पृष्ठभूमि को गुलाबी और पीले रंग से रंगती रहीं। सभी प्रतिभागियों ने मंजूषा कला के बारे में सीखने और विभिन्न डिजाइनों की अपनी कलाकृतियां बनाने में बहुत अच्छा समय बिताया, जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन और देखने में सुंदर थी। अनुश्री सभी कलाकृतियां देखकर प्रसन्न हुई और प्रतिभागियों की सराहना की। उपस्थित लोग देश के विभिन्न हिस्सों से थे, वे भी अलग अलग आयु वर्ग के थे, लेकिन कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक मंच पर ले आया। सर्कल समुदाय हमेशा की तरह कलाकारों को जोड़ने और एक जादुई और सकारात्मक माहौल तैयार करने में सफल रहा। मंजूषा पेंटिंग्स कई कारणों से उल्लेखनीय है। शुरुआत के लिए वो एक विशिष्ट और उत्कृष्ट कला रूप है जो अंग क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दूसरा ये कि पेंटिंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजन और त्योहार पर प्रदर्शित की जाती हैं। तीसरा, पेंटिंग अंग क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का एक आवश्यक रिकॉर्ड है। ये पेंटिंग दैनिक जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग अंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रमुख है। कलाकृतियाँ अक्सर धार्मिक आयोजनों और त्योहारों पर प्रदर्शित की जाती हैं। उदाहरण के लिए मंजूषा पेंटिंग का उपयोग विषहरी पूजा में किया जाता है, जो नाग देवता को समर्पित त्योहार है। अन्य धार्मिक आयोजन जैसे बपतिस्मा में भी छवियों का उपयोग किया जाता है। इससे पहले कि मंजूषा कला के वर्तमान पर चर्चा की जाए, बात जगदीश स्वामीनाथन की, जिन्होंने भारतीय लोक कलाओं को आधुनिक कलाओं के समकक्ष देखा और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहन भी किया। स्वामीनाथन ने भी पॉल क्ले के उपरोक्त वक्तव्य का उद्धरण देते हुए अपने लेख अस्मिता और प्रासंगिकता में लिखा कि भारत का आधुनिकतावादी आंदोलन पाश्चात्य आंदोलन के ही पीछे पीछे गया है। कभी कभार भारतीय परंपरा को खोजने तथा उस पर बल देने के अंत देशभक्त पूर्ण प्रतिक्रियाएं हुई हैं, किंतु ऐसे प्रयास एक वास्तविक दृष्टि के खुलने के कार्य में पूरी तरह से नुकसानदेह और व्यर्थ ही रहे हैं। स्वामीनाथन आगे कहते हैं कि परंपरा की कर्मकांडी समझ ने हमारे चित्रकारों की नकली आधुनिकता को मजबूत किया है। बेशक इसमें बाजार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर विकास के दूसरे क्षेत्रों में भी समान बात देखी गई, जो विचारधारा आधुनिक तकनीकी सभ्यता में चली आ रही है, उसे कमोबेश सबके लिए जायज मान लिया गया। लगभग 3 दशक पूर्व स्वामीनाथन ने आधुनिक और लोक कलाओं की तत्कालीन परिस्थितियों पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी मंजूषा कला को लेकर नहीं थी, संभवतः उनकी टिप्पणी में छुपी चिंताओं की परिधि में आधुनिक कलाएं और मध्य प्रदेश की लोक कलाएं रही हों। परंतु क्या उन चिंताओं की परिधि से बिहार की लोक कला, विशेषकर लोक चित्रकला का वर्तमान बाहर है? परंपरा की कर्म कांडी समझ ने लोक कलाओं में जिस नकली आधुनिकता को मजबूत किया है, जिसमें बाजार की कड़ी भूमिका है, क्या उसकी छाया मंजूषा और मधुबनी कला पर नहीं दिखती है? स्वामीनाथन जिसे भारतीय आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रवृत्ति कह रहे थे, क्या उस प्रवृत्ति से बिहार की लोक कलाएं अछूती हैं? स्वामीनाथन के कथन में 4 तत्वों की प्रधानता है। पहला, परंपरा की कर्मकांडी समझ। दूसरा, चित्रकारों की नकली आधुनिकता जिसे भारत के आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रकृति के नजरिए से देखने की जरूरत है। तीसरा, बाजार की भूमिका। और चौथा, वो विचारधारा जिससे आधुनिक तकनीकी सभ्यता संचालित होती है। मैं मंजूषा कला की वर्तमान को इन्हीं 4 तत्वों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी बात। किसी भी कला विधा के वर्तमान पर लिखना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है, खास तौर पर तब जब उसमें सरकार, गैर सरकारी संस्था, गैलरी और पूंजीपति का निवेश लगातार बढ़ रहा हो। ये जोखिम तब और बढ़ जाता है जब उसकी जिम्मेदारी एक युवा लेखक पर हो। इसीलिए मंजूषा कला के वर्तमान पर लिखने से पूर्व मंजूषा कला के वरिष्ठ कलाकारों, विशेषज्ञ, अंग क्षेत्र के विद्वान और उसे प्रोत्साहन दे रहे समाज सेवियों से विस्तार से बातचीत करना जरूरी है। उस बातचीत में उन्होंने मंजूषा कला के वर्तमान को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हमें अपनी कलाओं की सार्थकता और अर्थहीनता का परीक्षण तटस्थ रूप से करना होगा, तभी हम उसके वर्तमान को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मंजूषा कला के वर्तमान की चर्चा से पूर्व उसके विषय वस्तु पर चर्चा करना आवश्यक है, इससे परंपराओं की कर्मकांडी समझ का रहस्य भी खुल सकेगा। मंजूषा चित्रकला की मूल में बिहुला विषहरी की लोक गाथा है, ये हमें मालूम हो चुका है, जिसके मुताबिक शिव की 5 मानस पुत्रियां जो नाग कन्याएं हैं, पृथ्वी पर पूजित होने के उद्देश्य से चंपा नगर के शिव भक्त चांदू सौदागर के समक्ष उपस्थित होती हैं। चांदू उनकी पूजा से इनकार करता है और उन्हें अपमानित करता है। इससे गुस्साई नाग कन्याएं, जिन्हें विषहरी कहा जाता है, वो चांदू को श्रीहीन, संतानहीन कर देती हैं। इसी क्रम में चांदू की सबसे छोटी बहू बिहुला अपने कोबर घर में ही विधवा हो जाती है। वह अपने पति बाला लखेंद्र को जीवित करने का संकल्प लेती है और विषहरी की ही मदद से अपना संकल्प पूरा करती है। बिहुला के प्रण से विवश हो और महादेव की प्रेरणा से चांदू सौदागर बाएं हाथ से विषहरी की पूजा करता है। इस प्रकार विषहरी बहनें पृथ्वी लोक में पूजित होती हैं। इस लोक गाथा के विविध प्रसंग तथा सोनदह तालाब और विषहरी, पार्वती से विषहरी का परिचय, विषहरी का महादेव के सम्मुख जाना और पृथ्वी पर पूजा पाने की लालसा व्यक्त करना, महादेव का उन्हें चांदो के पास भेजना, चांदो का विषहरी को अपने दंड से डराना, विषहरी द्वारा चांदो का श्री संतान हीन करना, बाला और बिहुला का विवाह, ओबर घर में मनियार नाग द्वारा बाला का दंश, बाला की मृत्यु पर विलाप करती बिहुला, मंजूषा में बाला के शव के साथ बिहुला का इंद्रासन गमन, गोदा घटवार द्वारा बिहुला के संकल्प में खलल, बिहुला टुंडी राक्षसी का मिलना, टुंडी राक्षसी के हाथ में बच्चा और हड्डी, मैना विषहरी का आना, विषहरी बहनों का अपने अपने प्रतीकों के साथ दिखना, इंद्रासन में नृत्य करती बिहुला और चांदो द्वारा विषहरी की पूजा आदि की कथाएं और उसका कर्म कांड मंजूषा चित्रों पर उतरते रहते हैं। अपने मिथकीय और कर्म कांडीय स्वरूप में मंजूषा कला सर्प पूजा और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियों से जुड़ा है। भारत में ज्यादातर लोक कलाएं कभी मिथक के रूप में तो कभी अनुष्ठान के रूप में प्रकट होती हैं। इनका भारत की श्रमशील कृषक समाज से गहरा संबंध होता है और उसी संबंध की वजह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के बावजूद उनकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों में अनेक समानताएं मिलती हैं। इनमें प्रधान है तीन मूल रंगों की उपस्थिति। मूल रंग यानी गुलाबी या लाल, पीला और हरा, मंजूषा में इन्हीं का प्रयोग होता है। हालांकि मंजूषा कला के वरिष्ठ साहित्यकार जेसी शर्मा लोक कला में नीले रंग की उपस्थिति भी साबित करते हैं, जिस पर अंगिका के साहित्यकारों के मध्य अभी तक विवाद जारी है। मंजूषा कला में रंगों व आकृतियों को अपनी प्रतीकात्मकता है। ये आमतौर पर माना जाता है कि लाल या गुलाबी उत्सव का प्रतीक है, पीला रंग विवाह का प्रतीक है और हरा रंग विष दंश का प्रतीक है। इनके प्रतीकार्थ अनेक हैं। हरा रंग वंश वृद्धि का भी प्रतीक है। आकृतियों या पात्रों में बिहुला अक्सर खुले केश में दिखती है, उसके समक्ष एक सर्प होता है। विषहरी बहनें अपने नाम रूप प्रतीकों के साथ चित्रों पर उतरती हैं। विषहरी के रूप में मन के पंच विकारों की प्रतीकात्मक भी सामने आती है। पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मंजूषा चित्रों के बॉर्डर लहरिया आकृतियों से बनाए जाते हैं, जो बहुधा सर्प की लड़ियां होती हैं। इन्हें उपनाती गंगा या समुद्र माना जाता है। लोक गाथा में प्रयुक्त इन प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को पूरा मनोयोग से मंजूषा की सबसे चर्चित चित्रकार चक्रवर्ती देवी ने कागज पर उतारा और आज उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन चित्रों की असंख्य अनुकृतियां बनाई जा रही हैं। उन अनुकृतियों को देखकर मंजूषा चित्रकार और कला समाज इस कदर मंत्रमुग्ध है कि इस विषयों व पात्रों के संयोजन तथा प्रतीकों में जरा भी फेरबदल उन्हें उत्तेजित कर देता है। यथास्थितिवाद से इतर कुछ कलाकारों ने नए विषयों को भी अपने चित्रों पर जगह दी है या देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्रयोग बाहरी प्रभाव में है। ये उस प्रभाव का ही असर है कि कलाकार अब अंगराज कर्ण की गाथा पर आधारित चित्र बना रहे हैं, तो विष्णु का विश्व रूप भी मंजूषा शैली में कागज पर उतरने लगा है धीरे धीरे। मंजूषा कला में आ रहे इन बदलावों पर अंगिका के साहित्यकार डॉक्टर अमरेंद्र कहते हैं, जो गतिशीलता का विरोधी है, परिवर्तन का विरोधी है, वो मृत्यु का पक्षधर है, जड़ता का समर्थक है। लेसन माली ने जब पहली बार मंजूषा पर चित्रों को उभारा होगा, तब बेशक विषय वे ही होंगे जो आज भी हैं, लेकिन चित्र हूबहू ऐसे ही रहे होंगे, मुझे ऐसा मानने में संकोच है। नए कलाकारों को उन संदर्भों के बारे में ज्ञान नहीं है जो उन्हें नया गढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये चिंता मंजूषा गुरु मनोज पंडित के इन शब्दों में स्पष्ट झलकती है कि वरिष्ठ एवं युवा कलाकार बिहुला विषहरी लोक गाथा की कथानक पर नवीन अवेशर करें, आकृतियां गढ़ें, नए बिंब और प्रतीक का निर्माण करें, आज जरूरत इसी बात की है। उपरोक्त दोनों ही कथनों के आलोक में लोक कलाओं के जानकार और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रदर्श कला के प्राध्यापक रहे ओम प्रकाश भारती कहते हैं, इसका दायित्व किसका है, इसकी जवाबदेही किसकी है, फिर क्या वजह है कि मंजूषा कला के विद्वत्व जन अपनी चित्र कला की दुर्दशा देखने पर विवश है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वे मंजूषा कला और परंपराओं पर विमर्श करते, जिसका लाभ युवा कलाकारों को मिलता, इससे वे मंजूषा कला में नवीन प्रतीक की रचना कर पाते। वर्तमान में रचे जा रहे मंजूषा चित्रों के संदर्भ में मुझे मंजूषा कला के वर्तमान का सत्य वही दिखता है जिसकी तरफ ओम प्रकाश भारती इशारा कर रहे हैं। वो इस रूप में भी है, मंजूषा चित्रों में प्रतीकात्मकता ठहरी दिखती है, बिंब ठहरे दिखते हैं। मिथिला कला की वर्तमान प्रवृत्तियां आज मंजूषा कला को अपना ग्रास बनाने पर आतुर है। यही वजह है बाजार उनके बीच भेद नहीं करता है और मंजूषा चित्रकला का मिथिला चित्रकला के छाया चित्रों में रूपांतरण हो जाता है, किसी को विचलित नहीं करता है। वरिष्ठ कलाकारों और कला मर्मज्ञों के बीच यह वाद विवाद का विषय नहीं बनता कि किस कला का समकालीन हो जाना और बाजार के बनाए मानदंडों पर रची जा रही है कला एक ही विषय है या अलग अलग, या किसी लोक कला के समकालीन हो जाने का अर्थ समकालिक नवीन प्रतीकों बिंबों की रचना व उनका प्रयोग नहीं है, जिनके जरिए एक लोक कलाकार अपने अपने समय और समाज से ज्वलंत प्रश्न करता है, उनके समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वे प्रश्न चाहे आर्थिक विषमताओं से उपजते हों या जातीय धार्मिक। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार के समक्ष कला नीति का अभाव और उसके साथ साथ शिक्षा नीति में अभी भी कला का अभाव। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये भी है कि मिथिला कला के लोक ने तो उसे कला और शिल्प रूप में स्वीकार कर लिया है, अंग क्षेत्र का लोक मंजूषा को बतौर कलाकार कितना स्वीकार करता है, और जो लोग इस लोक कला के रूप में स्वीकार करता है उसका स्वीकार कहीं जातीय व वर्गीय मानसिकता के क्षेत्रीय की खोल में तो लिपटा नहीं है। ये प्रश्न करना जरूरी है क्योंकि लोक कलाओं का वर्तमान इसकी गवाही देता है कि जब लोक कलाओं ने क्षेत्रीयता के दायरे से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हुआ है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। गैर सरकारी संगठन दिशा, ग्रामीण विकास मंच और नाबार्ड ने इस लोक शिल्प को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए भागलपुर के सभी 16 ब्लॉकों में 3 साल का मंजूषा कला विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत 50 गतिविधि आधारित समूह और बड़े पैमाने पर मंजूषा शिल्प विकसित किए गए हैं। एक तरीके से संरक्षण हो रहा है नाबार्ड के जरिए, और हम अपने अपने लेवल पर सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स जो कि बेहद मैजिकल हैं, बेहद मैग्निफिशेंट हैं, उन्हें सांझे विरासत के माध्यम से संरक्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: अरे रे रे रे रे, घबराइए नहीं
6: डॉक्टर साहब,
5: आज मैं आपको ऐसी दवा दूंगी कि आप फिर से जवान हो जाएं।
6: ऐसी दवा मत दीजिएगा डॉक्टर साहब, वरना मेरी पेंशन बंद हो जाएगी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: टिकट टिकट टिकट, ये भैया टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ,
8: ये लो टिकट।
7: अरे ये तो पुराना टिकट है।
8: अरे तो रेलगाड़ी कौन सी शोरूम से निकलवा के लाए हो?
9: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आपके वाली शाम, गोंडा मैसेज मसाला वाली शाम में। और देखिए शाम के 6 भी बज चुके हैं और कितने ही जो घड़ियां हैं वो बीतने को तैयार हैं, पर कुछ खास दिन हैं जो ना बीते कभी, तो कितना बेहतर हो, खास तौर पे हम लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए भी। फेस्टिवल्स तो हमेशा से ही खास होते हैं, हमेशा मन करता है कि फेस्टिवल एक दिन का नहीं, कम से कम 5-6 दिन का होना चाहिए। और यही सोच के मेरे मन में कुछ लाइंस आ रही हैं आज के फेस्टिवल के लिए, कि यूं ही देखूं जो राखी को तो ये रंगीन डोरा है, यूं ही देखूं जो राखी को तो ये रंगीन डोरा है, जो देखूं गौर से इसको तो है जंजीर लोहे की, जो बढ़कर कैद कर देती है आफत अपने भाई की, मुसीबत की हकीकत क्या, मुसीबत आ नहीं सकती, मुसीबत कांप जाती है जो राखी देख लेती है किसी भाई के हाथ में, राखी के धागे में बहन ने प्यार बांधा है, इसलिए राखी है रिश्ता भाई बहन का, हवाला इसमें पोशीदा है सदियों से रिश्तों का, बंधा है प्यार इसमें बहन का और उसके पुरखों का, राखी निभाना लाज राखी की मेरे भैया, बहन का मन रख लेना बांध कर हाथ में राखी भैया, बहन के सुख के वास्ते तैयार हो जाना भैया, तुम्हारी जिंदगी तो बहन को दिल से प्यारी है भैया, सलामत तुम रहो भगवान से बिनती हमारी है भैया, जो चाहो नेक तुम दे दो मुझे सब स्वीकार है भैया, ना उठे फिर कोई दीवार नफरत की बहन भाई के आंगन में, नहीं व्यापार कुछ इसमें एक व्यवहार है भैया, नहीं है कच्ची डोर ये है एतबार भैया, ये है एतबार भैया। तो वही रक्षाबंधन का दिन है और आज का दिन हम सभी के लिए खास होता है, और मतलब खास इसलिए भी है क्योंकि इमोशनली जो लोग मतलब लड़कियों की शादी हो जाती है, शादी ना भी हो, पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, यानी कि हम लोग इस भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं, सबको दूर जाना होता है, पर राखी एक ऐसा रीज़न है जो हमें हमारे अपनों के पास भेजता है। और हमें मतलब कोशिश भी करनी चाहिए, ये नहीं कि फेस्टिवल्स पे भाई एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? मतलब मेरे लिसनर्स का भी मुझे लगता है यही ओपिनियन होगा कि राखी जैसे फेस्टिवल पे, रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल पे, या कोई भी इवन कोई फेस्टिवल हो, फैमिली को एक होना चाहिए। एंड ये ओकेजन्स ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉल पे मनाने वाले नहीं हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि वीडियो कॉल्स पे हम लोग ये फेस्टिवल्स मनाएं। इसके लिए त्यौहार नहीं है, हमारे कुछ काम होल्ड हो सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा हमें थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, हाँ एक दिन पहले ट्रेन करके अपने भाई के पास जाना पड़ सकता है, भाई को अपने बहन के पास जाना पड़ सकता है, पर कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही सही हम एक हो सकते हैं। क्योंकि जब बात रिश्तों की होती है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हम तैयार होते हैं। और कभी लड़ाई होती है, कभी शिकायत होती है, कभी एक दूसरे की चुगली भी होती है, लेकिन मुसीबत पड़ने पे सबसे पहले भाई बहन एक दूसरे को याद करते हैं। जी हाँ, बात हो रही है हमारे इस रिश्ते की जो सबसे ज़्यादा खास है, जिसमें लड़ाई बहुत ज़्यादा है और उससे कई गुना ज़्यादा प्यार है, मतलब इनफाइनाइट जिसे कह सकते हैं। और राखी की अगर बात करूँ, एक मतलब जिसको मार्केट में काफ़ी मतलब इसको एक कह सकते हैं मार्केटिंग टेक्निक, देखें कोई कह रहा आपके नाम वाली राखी, ये वाली राखी, वो वाली राखी, कोई राखी मतलब मुझे लगता है कि राखी वो डोर है जो कनेक्शन जनरेट करता है, उसमें पैसे या किसी भी चीज़ का मोल नहीं होना चाहिए। और बचपन में तो वो मुझे याद है कि वो जो गोल्डन कलर के जो कहते हैं ना गोटे वाली राखी होती थी, चमकती थी, उस राखी के आगे आज की सारी राखियां फेल हैं। मतलब मुझे आज भी वो कागज़ पे जो बनी, वो चमकीले का चमकीला पेपर होता था मतलब प्लास्टिक वाला, और उसके किनारे वो सस्ता वाला गोटा आता है अभी भी मिलता है, मतलब उसका प्राइस ज़्यादा नहीं होगा, और उसके किनारे किनारे गोल्डन गोल्डन धागे निकले होते हैं, वो वाली राखी, उसका कोई मोल नहीं भाई, वो मेरी स्पेशल राखी है और वो मिलती नहीं मुझे मार्केट में। तो मुझे इस बात का दुख भी है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस आपको दिख सकती है, अगर आप लोगों के पास कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, गिफ्ट कीजिएगा मुझे, बल्कि मुझसे प्राइज़ ले लीजिएगा, क्योंकि वो जो राखी है वो प्राइजलेस है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता ये कलाई पे धागे बांधने से ही है, और उससे कहीं बढ़ के है, ना सिर्फ धागे से, मैं कहूँगी कि बचपन की शरारतें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, चोरी से खाई गई चॉकलेट के टुकड़े, और मम्मी इसने मुझे मारा वाली शिकायतें, ये सब पूरी कहानी है इस राखी की। कहते हैं ना कि आज की शाम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि राखी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है भाई बहन की मुस्कान का, या बल्कि ये एक कह सकते हैं एक सिंबल है जो दोनों को एक साथ खड़े रहने के लिए एक इमोशनल बैलेंस बनाने का मौका देता है। और हमें भी इस बात को ज़रूरी तरीके से समझने की है, बात है कि आज हम सिर्फ भाई द्वारा बहन की रक्षा की बात नहीं कर सकते, बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है, भाई भी बहन की रक्षा कर सकता है, और ये दो तरफा सहारे का रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है। और ये रिस्पेक्ट जो है, मैं समय के साथ देख पा रही हूँ कि कम हो रही है, रिस्पेक्ट कम हो रही है, रिश्तों के मायने कम हो रहे हैं, और भाई बहन का हौसला बढ़ाने का काम करता है, बहन भाई का हौसला बढ़ाने का काम करती है, दोस्त बनती है, कई बार उसके जख्मों पे मरहम बनती है, कई बार उसकी फाइनेंशियल सपोर्टर बनती है, और कभी कभी भाई भी भाई अपनी मतलब हर सेविंग को अपनी बहन पे न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो खास है ये रिश्ता, खास है। और कहते हैं कि राखी का धागा छोटा सा पर रिश्ता बहुत महान, भाई की मुस्कान में बहने, बहन में भाई की जान, बचपन की वो मीठी लड़ाई, वो रूठना और मनाना, राखी आते ही याद आता है वो प्यारा सा जमाना, राखी आते ही याद आता है वो प्यारा सा जमाना। आगे बातें कंटिन्यू रखेंगे, किसने पहली बार राखी मानी है सब पता है, लेकिन तब भी बात करेंगे आगे। और मैं स्पेशली कोट करना चाहूँगी आज कृष्ण की वो कहानी ज़रूर बताऊँगी, जो एक कह सकते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी, और कृष्णा ने आके मतलब अपनी बहन द्रौपदी को कैसे मतलब सेव किया था, जहाँ पे पूरे उसके खास खास रिश्तेदार मतलब उसके पति पति क्यों बोलूँ पतियों ने उसको मतलब दाव पे लगा दिया था और वो असहाय बैठे थे। मतलब कोई भी रूल तोड़ा जा सकता है अगर एक स्त्री की इज्जत की बात हो, तो वो सारी बातें भी होंगी। आगे सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून। अगर आप कुछ बेहतर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला सुन रहे हैं।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

तो भाई इस बंधन वाले त्यौहार की आपको वापस से शुभकामनाएं। आपके साथ वापस आ चुकी है आरजुबीना। शाम ढल रही है लेकिन हमारी बात नहीं रुकने वाली, हम लोग बातें करते जाएंगे क्योंकि अक्सर मतलब भाई बहन की जब बात होती है तो उनकी नोक झोंक की बात भी होती है। और अगर मैं भाई बहन की एक अदालत लगाऊं तो मेरे पास कुछ भाई बहनों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं। तो सबसे पहला केस जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस है जो आपके बहन से जुड़ा है या आपके भाई से जुड़ा है तो बिल्कुल मुझे शेयर कीजिए, मैं यहाँ पे उसकी वकालत करने के लिए तैयार बैठी हूँ। तो पहला केस जो है केस नंबर में 1 में दफा 101 के तहत बहन का ये आरोप है कि मेरे भाई ने बचपन में मेरी बहुत सारी चॉकलेट्स खाई थी। मतलब जब भी रक्षाबंधन आता था तो चॉकलेट्स इनको मिलने के लिए मतलब आती थी, कि अक्सर बहनों को चॉकलेट लड़के देते हैं ना, गिफ्ट खरीदते खुद नहीं थे, मम्मी पापा ही लाते थे, लेकिन गिफ्ट में मिलने के लिए आती थी, लेकिन वो मिलने से पहले ही चुक जाती थी, यानी कि उड़ जाती थी। तो ये जो है प्रॉब्लम है। तो मैंने इनके भाई को फ़ोन ऑन किया, पूछा तो कह रहे हैं कि मैम देखिए चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के कहते नहीं कि जी ललचाए रहा ना जाए, बस किसी तरह चॉकलेट मुँह में आ जाए, ये वाला हाल था। और फ्रिज में उस समय हमारे ताला नहीं

था इस वजह से चॉकलेट उड़ जाती थी। सिर्फ दोष मेरा नहीं है, उस समय फ्रिज में ताला ना होने का भी दोष है। तो वैलिड बात बताई है, चॉकलेट अगर घर में आए तो जी बिल्कुल लल जाएगा, रहा नहीं जाएगा और मुंह में सीधे पानी आएगा। तो भाई बहन को थोड़ा समझना पड़ेगा, आप थोड़ी आप बड़ी हो गई हैं, हो सकता है चॉकलेट की क्रेविंग आपकी कम हो गई हो। और चलिए अब दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरा केस क्या है भाई? दूसरा केस बहन का फिर से है कि बहन कह रही है कि भाई ने मेरी फोटो बचपन की सबको भेज दी मेरे बर्थडे पे, जिसमें मैंने उसके साथ मतलब राखी बांधी है, लेकिन मैं बहुत गंदी लग रही थी क्योंकि मैंने उसमें अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, क्योंकि जो मेरी फ्रॉक थी वो मुझे बहुत फिटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने गुस्से के मारे फ्रॉक पहनी ही नहीं, बिना पहने राखी बांधी और मेरे भाई ने वो फोटो वायरल कर दिया और मुझे इस बात का गुस्सा, और इसलिए मैं इसको राखी नहीं बांधना चाहती हूँ। तो मैंने कहा भाई देखिए ये याद है तभी तो आज एक दूसरे से हम लोग आर्ग्यूमेंट करें, अगर ये याद ही ना होती तो वो आर्ग्यूमेंट किस बात का करते। तो भाई कहते ना वो हमने सर्फ एक्सेल वाला देखा है ना कि दाग अच्छे हैं, जो दाग आपको एक दूसरे के करीब ला रहे हैं तो दाग अच्छे हैं। तो ठीक है भाई, आपने नहीं पहना था, वो फोटो खिंच गई थी, मज़ा आ गया, तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। और मतलब क्या है, मतलब अब तो आप बढ़िया से पोजेस देती हैं। मतलब उसका कहना ये है कि भाई उसकी अच्छी अच्छी फोटोज़ है उसको भी शेयर करो। तो भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगी यार, मतलब अच्छी अच्छी फोटोज शेयर करो, मतलब क्या है, क्यों बेइज्जती कराते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला केस जो है वो भाई का है। भाई का कहना ये है कि मेरी बहन ने रक्षाबंधन के एक दिन पहले मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरी मम्मी को बता दिया और मुझे इतना गुस्सा आया कि माना कि रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी बहन की, लेकिन मेरे बहन की भी कुछ जिम्मेदारी होती है मेरे पेरेंट्स से मेरी रक्षा करने की। उसने इस मतलब वादे को नहीं निभाया और एक दिन पहले जाके मम्मी से मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया, जो कि मेरे कास्ट की नहीं है। मम्मी ने सीधे मतलब लंका लगा दी, रक्षाबंधन का त्यौहार बहन का तो सही बीता लेकिन भाई की ऐसी तैसी हो गई। तो बहनों प्लीज रक्षाबंधन के पहले ये सब काम ना करो, उसके बाद जो करना है करो भाई, कर लो जो करना है करो, लेकिन भाई रक्षाबंधन के पहले नहीं यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे मतलब जो कहते हैं ना केसेस होते हैं जिनको हम लोग छुपा के रखते हैं अपने बहनों के और भाइयों के, मम्मी पापा से प्रटेंड करते हैं कि बचाएं ये वो, मतलब ध्यान देना चाहिए। अगला केस भी एक दुखियारे भाई का है। उसका कहना है कि उसकी बहन हर बार राखी भेज देती है, खुद नहीं आती, और वो भी पेटीएम से पैसे भेज देता है, और जब वो आती है तो उससे कपड़े मांगती है। मतलब जब उसने राखी भेजी उसके बदले उसने पेटीएम से पैसे भेज दिए, उसके बाद मतलब फिर वो कपड़े क्यों मांग रही है, ये वाली प्रॉब्लम है। अरे यार कपड़े मांगे या ना मांगे यार राखी बांधने आ जाया करो, इतने मतलब बार बार राखी भेजना आई डोंट थिंक सो कि बहुत कूल है। आपको अपने भाई को राखी बांधने जाना चाहिए, उसको भी अच्छा लगेगा, उसकी कलाई पे वो खुद राखी बांधे, इट डजंट सूट। अगर थोड़ा सा भी मतलब शेड्यूल निकल पाए तो आप जाएं अपने भाई को राखी बांधने। तो जिनके जिनके जो जो केस मैच कर रहे हैं वो जरा अपना चैट रूम में हाथ उठा लें कि भाई ये वाला तो मेरा भी है। और चलिए एक बहन का तो भाई बड़ा लॉजिक वाला वो है कि उसका भाई उसको गिफ्ट नहीं देता। भाई ये वाला सीन सही है कि उसका भाई रक्षाबंधन पे उसे गिफ्ट नहीं कहता, कहता रक्षाबंधन रक्षा का त्यौहार है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, गिफ्ट नहीं दूंगा। बहुत सही है यार, ये वाला तो बिल्कुल सही था कि रक्षाबंधन रक्षा का त्यौहार है तो गिफ्ट देने का क्या ही सीन है। लेकिन यार जब मेरी बात आती मैं तो गिफ्ट ले लेती हूँ। अरे यार कुछ गिफ्ट दे दिया करो, कंजूसी अच्छी नहीं है, कुछ गिफ्ट दे दिया करो अपने बजट से। ये सही था। अच्छा ये वाला अगला वाला जो है ना ये थोड़ा सा खतरनाक वाला है, भाई का है। भाई कह रहा है कि मेरी बहन जब आती है तो अपनी पसंद की मिठाई लेके आती है, जब आ रही हो तो मेरी पसंद की मिठाई लेके आओ, मेरे लिए तुम ला रही हो, तुमको जो पसंद होती है वो तुम लेके आती हो, मुझे जो पसंद है वो तुम लाती ही नहीं हो। तो बहनों प्लीज़ अपने भाई की पसंद का ख्याल रखें, अगर अच्छी मिठाई लाएंगी तो अच्छा नेक मिलेगा, अच्छा नेक मिलेगा तो अच्छी शॉपिंग होगी। तो इस बात को ध्यान रखें, एक मिठाई के लिए अपना मतलब टेस्ट कुर्बान कर दें और लड़कों के लिए जो उनकी फेवरेट मिठाई वो लेके आए। तो ये तो भाई आज की अदालत की बात हो गई। तो भाई बहनों की जिनकी जिनकी जो जो प्रॉब्लम अभी शॉर्ट नहीं हुई है वो जल्दी से मुझे चैट रूम में लिख के भेज सकते हैं, बाकी का तो बात करते रहेंगे। और चलिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और वापस से आएंगे हमारी अदालत में। अगर कुछ है बताने के लिए तो बिल्कुल बता सकते हैं आप। अगर आप कुछ बेहतर सुन रहे हैं डेफिनेटली आर्जबीना के साथ शो
गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला सुन रहे हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरी ब्रदर एंड सिस्टर। और भाई जिसका भाई या बहन नहीं है, तो भाई जिसके भाई भाई जिनकी बहन नहीं है उनको मुझे अपनी बहन बना लूँ, मैं राखी बांध दूंगी, नहीं तो इमेजिन कर लूँ। और जिनके भाई नहीं है वो भी मुझे अपना भाई समझ लो, तो सारी चीजें पॉसिबल है। तो मुझे अपना भाई समझ लो, और भाई समझने के साथ मैं आपकी रक्षा करूंगी। जो प्रॉब्लम्स है मुझे शेयर करो, आई हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जिनका सोल्यूशन नहीं होगा उनका सोल्यूशन मैं ढूंढ के बताऊंगी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बचाते रहो 89.6 FM।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

सो वापस से आरजुबीना आपके साथ लाइव है आपके वाले फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, इसे समझो ना, इसे समझो ना,

क्या बात है यार, ये सब गाने कितने अच्छे होते थे और रेडियो पे जब बजते थे तो हम लोग का फेस्टिवल स्पेशल हो जाता था। हम लोग की बचपन वाली राखी बहुत स्पेशल थी, और मतलब वो सफ़ेद वाले गुलाब जामुन, वो सफ़ेद वाले रसगुल्ले, ब्लैक वाले गुलाब जामुन, इन सबको खा के मतलब त्यौहार एकदम मीठा हो जाता था। अब तो कोई मीठा नहीं खाता, ऐसे वो ऐसे चम्मच से थोड़ा सा उठाते हैं। मैं तो अभी भी बढ़िया दम के खाती हूँ, मतलब दम लगा के, मतलब फेस्टिवल मतलब मिठाई और क्या, मतलब त्योहारों पे भी नहीं खाएंगे ऐसे ही। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और भाई कितना भी दूर चला जाए बहन की आवाज़ कभी कभी सुनाई दे, मतलब फ़ोन कभी कभी करे, रिश्ता वैसा ही रहेगा। भाई बहन जब पास आते हैं तो बचपन याद आता है, और दुनिया में मतलब मुझे लगता है कि बचपन को दोबारा जीना इज़ द बेस्ट थिंग। हम कुछ भी करें या ना करें, लेकिन अगर हमें बचपन दोबारा जीने का मौका मिलेगा ना, हम सभी अपने हाथ उठा लेंगे। कोई ऐसा बच्चा यहाँ नहीं दिखेगा मुझे जो ये ना कहे अरे मुझे बचपन में नहीं। हाँ, कोई एक बार बचपन में ले चले। तो भाई बहन एक दूसरे को, एक दूसरे का बचपन याद दिलाते हैं, और जिन बहनों के भाई आज उनके पास, उनके करीब नहीं हैं, तो वो राखी के त्यौहार को दिल से मनाएं, अपनी बचपन की यादों के साथ मनाएं। राखी भेजिए तो उनसे बात करें, अगली राखी बिल्कुल जाने की कोशिश करें, और ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए अगर हम थोड़ा सा इतिहास की ओर चले, मैंने पहले भी बताया था कि रक्षाबंधन की परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी है। इसके साथ भारतीय संस्कृति की अनेक कथाएं जुड़ी हैं। माँ भारत की एक ऐसी कथा, ऐसी परंपरा जो द्रौपदी और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि कहानी ये है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी आत्मीयता और स्नेह का भाव व्यक्त किया था, और ये प्रसंग भाई बहन के संरक्षण का प्रतीक बना। और कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, और द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के और कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। और फिर जब कौरवों ने मतलब पांडवों से, मतलब जब वो राजपाट सब कुछ ले लिया, और उसी समय ये पांडव जो हैं द्रौपदी को भी हार गए थे जुए में, तो उस समय जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अपना जो राखी का जो दायित्व है वो निभाया अपनी बहन के लिए, और स्वयं आ गए अपनी बहन की लाज बचाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी कहानी है जो भाई बहन के जो रिश्ते हैं उसको जोड़ती है। अब एक छोटी सी मतलब एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक बहन हर साल अपने भाई को राखी भेजा करती थी, और भाई नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहता था। हर बार जो राखी के साथ बहन एक छोटा सा पत्र भी लिख के भेजती थी। पत्र में सिर्फ एक लाइन होती थी, भैया अपना ख्याल रखना। एक साल राखी पहुंची लेकिन बहन का पत्र नहीं था। भाई ने घर पे फोन किया, माँ ने कहा कि इस बार उसने सोचा कि तुम बड़े हो गए हो, बार बार समझाने की जरूरत नहीं। भाई कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि माँ कुछ रिश्तों में बड़े होने का मतलब ये नहीं कि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। उसने बहन से फ़ोन लिया और कहा, मतलब बहन को फ़ोन देने के लिए कहा, और कहा कि अगली राखी के साथ वो एक लाइन ज़रूर भेजे। बहन हंसते हुए बोली कौन सी? भाई बोला भैया अपना ख्याल रखना। क्योंकि कभी कभी चार शब्द जो होते हैं वो दुनिया की जितनी भी गिटपिट है उन सबसे खास होते हैं। ये एक अच्छा रिश्ता है, ये एक अच्छी मतलब कह सकते हैं स्टोरी है जो मतलब हमें प्रेरित करती है। एक बार की बात है कि पुरानी कहानी मैंने बचपन में न्यूज़ में या कहीं पढ़ी थी, आई थी। एक लड़की थी, उसका भाई नहीं था, और एक बार ये हुआ कि जो लोग राखी भेजना चाहें तो वो सरहद पे अपने भाइयों के लिए राखियाँ भेज सकते हैं। और पहले चिट्ठी का ज़माना था, चिट्ठियाँ लोग भेजते भी थे। तो बच्ची छोटी थी, उसका भाई नहीं था, तो उसकी माँ ने बोला यार तुम भी भेज दो, देखो रेडियो पे सुनाई दे रहा है, भाई को अपनी चिट्ठी भेजी जा सकती है, तुम भी भेज दो। तो उसने भाई अपने भाई को चिट्ठी लिख के भेजी कि मुझे एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए, ये राखी उसको बांध लेना भैया, ये मिठाई खा लेना, और मुझे आपसे ना एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए। अच्छा, उसने राखी भेज दी, बात गई, रात गई, कई सालों बाद, मतलब कई महीनों बाद, इवन अगली राखी तक शायद, एक चिट्ठी आई, और चिट्ठी के साथ एक बड़ी सी प्यारी सी गुड़िया आई। तो जब देखा तो चिट्ठी थोड़ी सी फटी भी हुई थी, पुरानी सी लग रही थी। तो उसमें लिखा हुआ था, गुड़िया थी, गुड़िया दे दी बहन उसको, लड़की को। उसकी माँ ने कहा देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए गुड़िया भेजी है। पढ़ा उसको, मतलब खत में लिखा था कि ये बहन तुम्हारे लिए है, और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं तो सरहद पे हूँ, पर ये समझना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।
फिर उसी चिट्ठी के साथ एक और चिट्ठी थी और उसमें लिखा था कि ये आर्मी ऑफिसर, इनकी चिट्ठी है, विजय या कुछ नाम था, और ये पिछले ही साल जब ये चिट्ठी पोस्ट करने वाले थे उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, चिट्ठी इनके पास रह गई थी और ये गुड़िया भी, और हमने इस अधूरे काम को पूरा करने का सोचा और आप तक ये पहुंचा दिया। इतक पढ़ के उस माँ को ऐसा लगा कि जैसे उसका बेटा ही इस दुनिया से चला गया हो, और वो हर साल जिस दिन वो राखी पहुंची थी हर साल उसके लिए मतलब दिए जलाती और राखी एक जरूर सरहद पे भेजती अपने भाई के नाम। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई कहीं भी होगा उस राखी को तो जरूर देख रहा होगा। तो राखी के मायने सबके लिए अलग अलग हैं, पर जो प्रेम है वो सबके लिए जैसा है। तो चलिए थोड़ी देर में और मिलते हैं, थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी थी यार, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें जान के समझ के सुन के मजेदार लगती हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बजाते रहो 89.6 FM।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
10: ए जय माताजी, माताजी ने हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे, वादल फरे, ने वायरो फरे, पण एक वार बोले पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने।

वापस से आप सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपने स्पेशल त्यौहार को, भाई बहन का ये मतलब कह सकते हैं स्पेशल कनेक्शन, और भाई बहन की एक गुप्त डिक्शनरी भी होती है, उसके बारे में बताना था मुझे कि अक्सर भाइयों को दुख ये होता है कि भाइयों का सही नाम बहनें नहीं बोलती। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो भाई को हमेशा कुत्ता कह के बुलाती हैं। बहुत गलत बात है। मतलब पता नहीं क्यों, एक एड भी मैंने देखी थी कि बेटा अपने माँ से बोलता है कि आपने मेरा नाम राहुल रखा क्यों, जब कुत्ता ही कहना था। माँ भी कुत्ते, मतलब उसकी भी आदत हो गई, तो अपना नाम सुन के बोलता ही नहीं था। तो कई बार भाई बहनें जो है भाई का बहुत उल्टा सीधा नाम रखती हैं। अब भाई के पास अगर पैसे ना हो तो भाई जो है उल्टे सीधे बहाने भी बनाता है, जैसे कि भाई कहेगा कि यार पैसे तो हैं लेकिन मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है, तू कहे तो मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा, कुछ दिन में कर दूंगा। बहन कह देगी कि अरे यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना सुनने का ही बस देर है। वास्तव में बहन ये कह जरूर रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब नहीं को हटाइए, उसे सब कुछ चाहिए। सब कुछ मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसको कपड़े, कैश भी चाहिए, चॉकलेट का डब्बा भी चाहिए, और ऊपर से अगर चप्पल जूता कुछ मिल जाए तो वो भी चलेगा। ठीक है, फिलहाल एक कविता बोल के अपनी बात को विराम की ओर ले जाऊंगी, लेकिन कविता सुन लीजिए ध्यान से। भाई के लिए राखी का मतलब राखी, मिठाई, गिफ्ट, आशीर्वाद, और बहन के लिए भैया इस बार कुछ अच्छा सा दिला देना। राखी आई, थाली सजी, बहन बैठी मुस्काए, भैया बोला प्यार से बहन क्या चाहिए बताए, बहन बोली कुछ नहीं बस प्यार तुम्हारा चाहिए, भैया बोला चैन से तो फिर ये बिल किसका है भाई। और कुछ सवाल है जिनका आपके मन में, मतलब कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बताओ जरा ये रक्षाबंधन कौन सी तिथि को मनाया जाता है। भाई रक्षाबंधन सावन में मनाया जाता है, तो सबको पता है सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा दिखता है। जी हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम पूर्णिमा तो नहीं है, जरा मुझे चैट रूम में बताइए। आगे सुनिए, रक्षाबंधन को भाई के लिए जो त्यौहार है उसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, कहीं कहीं इसको राखी बोलते हैं, कहीं कहीं रक्षाबंधन बोलते हैं, और पंजाब में इसको रखड़ी बोलते हैं, रखड़ी आ गई रखड़ी। सो आपको नहीं पता रहा होगा ना, मुझे पता है क्योंकि मैं पंजाब से मतलब थोड़ा सा बिलोंग करती हूँ। आगे मैं बताऊँ आपको कि कोई बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो रक्षाबंधन पे बनी है, आप लोग बताइए अगर आपको याद है तो। मुझे तो वाली याद है, मैं रहूँ ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, धागों से बांधा। जी हाँ, ये वाली अक्षय वाली फिल्म बहुत अच्छी, इमोशनल भी है, और सच में भाई अगर बड़ा होता है, छोटा या बड़ा कोई, मैंने तो देखा छोटे भी ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बड़ा या छोटा वो रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है, स्पेशली अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है तो अपने बारे में नहीं सोचता, ये तो मैंने देखा है। जितने भी भाई होते हैं जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो अपने आप को भूल जाते हैं, एंड दैट इज द वेरी स्वीटेस्ट थिंग ऑफ अ ब्रदर। बहुत सारी शुभकामनाएं भाइयों को, और मतलब मेरी तो उम्र लग जाए, सारे दुनिया भर के भाइयों को, मेरे भाई को तो लग ही जाए मेरी पूरी उम्र, और बाकी सारे भाइयों को भाई बहुत सारी लंबी उम्र की दुआएं। तो चलिए, अगर एक भाई अपनी बहन को चिट्ठी भेजे तो कैसे भेजेगा, वैसे चिट्ठी का जमाना ही चला गया है। वो गाना सुना आपने, ओ

बस एक पटरी पे चलने लगे। जैसे वो पुराना घर, वो आंगन, वो लड़ाई, वो बारिश में एक दूसरे की नाव को गिराना, पानी डालना एक दूसरे पे, सुबह देर से उठना और पहले बाथरूम में जाने की लड़ाई करना, सब याद आता है। बस एक बात कहनी है कि रिश्ते की राखी हर साल नहीं, दिल में हमेशा बंधी रहनी चाहिए, इसे कभी मत टूटने देना। क्या बात है यार, कौन से भाई ने ये चिट्ठी लिखी है ना, हम नहीं बताऊंगे यार, बड़े आप लोग मतलब इमोशनल करने वाले लोग हैं। तो आज अगर आपका भाई या बहन आपके पास बैठा हुआ है तो आप उसका हाथ पकड़िए और उससे बोलिए कि हर साल राखी हम एक दूसरे के साथ मनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कोशिश करने का मतलब हर वो बड़ी बाधा को दूर करते हुए हम भागते हुए एक दूसरे के पास आएंगे और अपने इस स्पेशल कीमती दिन को एक दूसरे के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पोस्ट मत कीजिए, मैंने तो देखा राखी आजकल सिर्फ पोस्ट के लिए मनाई जा रही है। नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के हर मुसीबत पे ढाल बनके उसके साथ खड़े रहिए। हर हफ्ते एक फोन पे बात कर लिया करिए, कोशिश तो हर दिन करिए लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार अपने भाई से बहन से बात कर लिया करिए, क्योंकि कई बार रिश्ते कई चीजों से ज्यादा कीमती होते हैं। बस एक छोटी सी आवाज कैसे हो, ये हमें ऐसा फील कराती है जैसा लगता है कि कोई है जो हमें बस जानने के लिए, हमारे बारे में जानने के लिए कॉल कर रहा है। बहुत रिसोर्सेज हैं अब, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिसोर्सेज किस काम के जब हम अपने अपनों को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आरजे बीना की तरफ से आप लोग को यही मैसेज है कि रक्षाबंधन स्पेशल तभी बनेगा जब ये धागा कलाई पे बंधेगा और दिल में भी बंधेगा। लड़ाई रहे थोड़ी सी, प्यार रहे बेहिसाब, भाई बहन का रिश्ता रहे हर जन्म लाजवाब। और मैं आरजे बीना आप लोगों से आज गुंडा मैसेज मसाला में अब विदाई लेती हूँ, लेकिन ये जानिए कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। ये भी रिश्ता हमारा अटूट है, ये बंधन भी अटूट है, ऐसा ही चलता जाएगा। और आगे सुनिए अपनी पसंद के गीत और मुस्कुराइए बेहिसाब बेमिसाल और मनाइए त्योहार हर साल, क्योंकि आपके साथ आरजे बीना है। आप सुन रहे हैं शो गुंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

Welcome in your show for my shi video. Our just simple is not so simple. और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन. Stay tuned everyone and happy happy happy happy वाला रक्षाबंधन.

सांझ के सुरमई उजाले, रिश्तों की मिठास और रेशमी धागों की वही अटूट डोर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका, आप सभी का इस खास शाम में। मैं हूँ आपकी अपनी साथी, आपकी अपनी दोस्त आर जे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा शो फरमाइशी, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। दोस्तों, आज की ये शाम बेहद खास है क्योंकि आज हवाओं में वही एकदम सेम टू सेम वही वाली पुरानी शरारतें हैं, थोड़ी तकरार और ढेर सारा प्यार घुला हुआ है। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व सिर्फ कलाई पर धागा बांधने तक सीमित नहीं है, ये तो उन खट्टी मीठी यादों का फेस्टिवल है जो बचपन की गलियों से शुरू होकर जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। तो बस अपनी अपनी कलाई के धागों को टटोलिए, अपनों की मुस्कान को महसूस कीजिए और अगले कुछ घंटों के लिए थाम लीजिए हमारा हाथ, क्योंकि आज की शाम आपके और आपके भाई बहन के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं सुरों का ये खास नजराना, और फिलहाल जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की कटरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की कटरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए और लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, आवाज विकास गोंडा से, रवि महेंद्र राजस्थान से, और इसी के साथ में सुरेश कुमार जी चौक से, निपर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सो लेट्स गो टू पहले वाली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशा मिश्रा जी लखनऊ से आपका स्वागत है, नमस्ते, और इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, धर्मेश त्रिपाठी की है गोंडा से पहली फरमाइश और उनको सुनना है गाना तू मिला दे। तो एंजॉय करते हैं सावन का ये गाना सोनू निगम की आवाज में हमारे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ये बात तो एकदम पक्की कही गई है कि मोहब्बत है तो हम हैं और मोहब्बत है तो दुनिया है। अगर मोहब्बत नहीं होता तो भाई कितना कत्लेआम हो रहा होता ना। एक ही घर में बहन भाई का बात, बहन भाई की बात नहीं मान रही, लो तलवार निकाली गला काट दिया, है ना, कितना बढ़िया होता ना दोस्तों। सो फिलहाल हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी धर्मेश त्रिपाठी की, और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कुछ और भी कहना है, जरा गौर से जरा कान लगा के सुनिएगा। इनका कहना है कि डियर सिंपल जी, आज मेरी बेटी साक्षी तिवारी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। और आपसे गुजारिश है कि साक्षी के लिए अपनी पसंद का कोई प्यारा सा गाना जरूर बजाइए। आपकी आवाज में उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं उसके लिए हमेशा खास रहेंगी। साक्षी की मुस्कान और खुशियां यूं ही हमेशा बनी रहे। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी साक्षी तिवारी। तो साक्षी, आपको भी आपके जन्म दिवस की ढेर सारी, बहुत सारी, बहुत ज्यादा वाली इतनी सारी शुभकामनाएं आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से। और डेफिनेटली इनकी पसंद, इनके लिए मेरी पसंद का गाना जरूर बजेगा। लेकिन उसके पहले हम इंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश, क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की, और उनको सुनना है हाउ मोटिवेशनल गाना। ओ माय गॉड, मदर इंडिया का ये गाना हम एंजॉय करने जा रहे हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर दर्द तो पीना ही पड़ेगा। व्हाटएवर इज दिस, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनम। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा मदर इंडिया का सुपर डुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग मां, एंड वंस अगेन हैप्पी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, टू माय ऑल लिसनर्स, टू माय ऑल लवली गर्ल्स, टू ऑल माय लवली आंटीज एंड एवरीवन। ओ माय गॉड, आज तो बहुत ढेर सारे गिफ्ट्स मिले होंगे ना आज, मतलब लाइक मेरा स्केड्यूल थोड़ा रश वाला हो जाता दोस्तों, बैक टू बैक नहीं तो फिर। मैंने तो आज सोचा था कि गोंडा मैसेज मसाला आज तो जरूर कवर करूंगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही रश हो जाता और फिर तो मजा ही नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं फरमाइशी में ही बातें करेंगे, ढेर सारी गॉसिप्स करेंगे, गाने तो आपके बजते रहेंगे, रोज बजते हैं यार, सेलिब्रेशन कभी कभी होने को मिलता है ना। तो कौन कौन सी मिठाई आप लोगों ने खाई, किस, अगर आपने गोंडा से मिठाई ली है तो कौन से मिठाई वाले से मिठाई ली है, कौन सी मिठाई ली है, कौन सी मिठाई आपकी फेवरेट है, और कौन कौन कौन से गिफ्ट आपको मिले हैं, कौन से गिफ्ट आपके प्रीशियस हैं, और क्या क्या हुआ है आज। तो जो भाई बहन बाहर रहते होंगे वो भी मिले होंगे, कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा ना। तो मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों से जाननी है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं आवाज़ विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। जी हाँ दोस्तों, आवाज़ विकास गोंडा से रवि को सुनना है गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में धांगों से बांधा। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा रवि की फरमाइश पर, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है हम सभी को, आरजेस को। सो थैंक यू सो मच रवि, हम सभी आरजे दीदी की तरफ से। स्टे ट्यून।

वाह, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत संगमा रक्षाबंधन स्पेशल वाला हमारे आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले रवि का कहना है कि अरे क्या ही बताऊं दीदी, आज तो मैं लुट गया। जो हमारी मम्मी ने पैसा दिया था वो सब बहनों ने छीन लिया। ओ माय गॉड, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, साल में एक बार ही ऐसा होता है। और वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, दुनिया में चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना बन जाएं, एक बहन भाई वाला जो रिश्ता होता है ना, उसका लेवल ही अलग है। बचपन में टीवी के रिमोट के लिए लड़ना, माँ से एक दूसरे की शिकायत करना, और शाम होते ही साथ बैठकर एक ही प्लेट में मैगी खाना या फिर कुछ भी ऐसा खाना, ये सब यादें आज अचानक से सामने आ जाती हैं। इनफैक्ट हर रक्षाबंधन, हर बर्थडे, हर सेलिब्रेशन में हमारा ये बचपन जरूर याद आता है। मुझे याद आता है वो दौर जब रक्षाबंधन के एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। बाजार में हर तरफ रंग बिरंगी राखियां, घेवर और मिठाइयों की खुशबू। ओह माय गॉड, और सबसे बड़ी टेंशन भाइयों की कि इस बार बहन को तोहफे में क्या दिया जाए ताकि पॉकेट मनी भी बच जाए और दीदी या फिर छोटी बहन खुश भी हो जाए। तो आप लोगों की भी पॉकेट एकदम ढीली हो गई है आवाज विकास गोंडा से रवि की तरह, या फिर आप लोग की पॉकेट अभी की अभी भरी हुई है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नाजी अंसारी, आकाश पंडित, और इसी के साथ में प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका भी स्वागत है। मोहित मालवे नगर गोंडा से स्टे ट्यून्ड, दीपक कुमार स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना जिंदगी का सफर। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

लेकिन जो होता है वो भूल कहाँ जाता है। भूलने वाली कोई टेबलेट आती हो तो बता दो तो सब कोई भूल जाएगा, लेकिन ऐसे कोई कुछ भी नहीं भूलता है, बस भूलने का नाटक करता है। क्यों सही कहा ना मैंने। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि है आवास विकास गोंडा से। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले महेंद्र का कहना है कि दिल में जगह हो तो मुलाकात जरूरी नहीं, दिल में जगह हो तो मुलाकात जरूरी नहीं होती, सच्चे रिश्तों में हर बात बतानी जरूरी नहीं होती, दूर रहकर भी जो दिल के सबसे करीब रहें उससे खूबसूरत कोई सौगात नहीं होती। बहुत खूब, बहुत उम्दा, एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश भी है महेंद्र की और उनको सुनना है गाना अब है नींद किससे अब है चैन कहाँ। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

बेचैन कहा। हम एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। ये तो फरमाइश थी महेंद्र की राजस्थान से, और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे। आपके गानों का, सुरों का, तानों का, सबका सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी दोस्तों। तो अर्ज किया है, मैं पुरानी तहजीब का कायल हूँ मेरी जान, तुम अपने इस अंदाज में थोड़ा सा अदब रखा करो। हवाएं भी यहाँ शरारती हो जाती हैं अक्सर, तुम कंधे पर वो रेशमी दुपट्टा संभाल कर रखा करो। और अगर चाहते हो कि धड़कनें बेकाबू ना हो मेरी, अगर चाहते हो कि धड़कनें बेकाबू ना हो मेरी, तो यूं अचानक नजरों के सामने ना आया करो। मैं खूब जानता हूँ इस दुनिया के इरादों को, तभी तो कहता हूँ खुद को सिर्फ मेरी पनाह में रखा करो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, मींस प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश जो कि है बहराइच से। उनको सुनना है गाना तारे कितने नील गगन में। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रीति जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तारे कितने नील गगन में सारे, हमने एंजॉय किया ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुनहरा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आज है साक्षी तिवारी का बर्थडे, धर्मेश त्रिपाठी जी की बेटी का बर्थडे, और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम एंजॉय करेंगे उदित नारायण की आवाज में 90s का ये सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये सिर्फ और सिर्फ साक्षी के लिए। हैप्पी बर्थडे।

जैसे जादू घोल दिया है मेरे दोस्तों। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे धर्मेश त्रिपाठी की बेटी के लिए, हम सब की बेटी के लिए, साक्षी तिवारी के लिए। वंस अगेन हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला पोते। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले और बहुत अगले वाले डिमांड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है दीपक कुमार की। दीपक कुमार को सुनना है गाना चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ दीपक कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। इसी के साथ में धर्मेंद्र मोहन का कहना है कि भरोसा रखो हमारी दोस्ती पर, हम किसी का दिल दुखाया नहीं करते, आप और आपका अंदाज हमें अच्छा लगा, वरना हम किसी को दोस्त बनाया नहीं करते। थैंक यू सो मच। इंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना।

एंजॉय किया भाई बहन के प्यार वाला ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और इसी के साथ में मैं कहना चाहूंगी कि कच्चे धागों में सिमटी एक

की आस है। इरशाद इरशाद तो करो ना दोस्तों, करो ना। कच्चे धागों में सिमटी एक पक्की आस है, दूर होकर भी तू हर पल मेरे पास है। मांगती हूँ हर दफा तेरी ही सलामती की दुआएं, मेरे भाई तू ही तो मेरी खुशियों का एहसास है। लड़ना झगड़ना और फिर हंस कर गले लगा लेना, इस दुनिया में सबसे खास अपना ये लिबास है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना फूलों का तारों का सबका कहना है और एक हजारों में मेरी बहना है। सो एंजॉय करते हैं वंस अगेन रक्षाबंधन स्पेशल वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को। अगली फरमाइश हमारे पास में सुरेश कुमार जी की चौक से, और सुरेश कुमार जी को चौक से सुनना है गाना, आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई तू चल और मैं ऑब्वियसली आई। सो एंजॉय करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा।

0: नसीब है।
1: हमने एंजॉय किया सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। अगली फरमाइश हमारे पास मेरे दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है गाना रोते रोते हंसना सीखो। सो एंजॉय करते हैं अंधा कानून का ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे

एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो अगली फरमाइश आकाश पंडित की, उनको सुनना है गाना जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, जाइए अच्छे अच्छे डिशेस बने होंगे, खाइए पेट फुल करिए और फिर से आ जाइए एंटरटेनमेंट की महफिल में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये गाना।

0: के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवंगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
8: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
9: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
10: योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 180 4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
12: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
13: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 3री उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और मैं तो सच में आ जाऊंगी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल ऑन तो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक, एंजॉय किया हमने बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। राजन सिंह को सुनना है गाना सजन राजी, सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट पंजाबी वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ राजन सिंह की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

अगली फरमाइश हमारे पास में है सिर्फ और सिर्फ सबीहा की पटेल नगर गोंडा से। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

की आंखों से हो ही जाता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है इश्क नामा का नरक। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निशा की फरमाइश।

कि उनको सुनना है गाना सनम रे। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कल मैं डॉक्टर लव और फरमाइशी दोनों में आपको मिलूंगी। तो चलते हैं अभी, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: हमारी जिंदगी एक ऐसी दौड़ है जहाँ हम मंजिल तो ढूंढ लेते हैं पर रास्ते में अपने आप को कहीं छोड़ आते हैं। वक्फा सिर्फ एक ब्रेक नहीं बल्कि एक आईना है जहां हम अपनी रूह से मिलते हैं। जब हम रुकते हैं तभी हमें अपनी खामोशी की गूंज सुनाई देती है। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आपके अपने फ्राइडे स्पेशल बहारे गजल में। आज जिस वक्फे की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा ही खूबसूरत सा शेर है कि रुक कर देखो अपने कदमों के निशा को, कौन चला है साथ और कौन छोड़ गया है। आज की रात इसी वक्फे के नाम, जहां हम अपनी जिंदगी के ठहराव को महसूस करेंगे। आइए पहली गजल के साथ इस सफर खामोशी का आगाज करते हैं।

तस्मय अजीब क्या कहना, मैं उनसे दूर वो मेरे करीब क्या कहना। ये तीरगिये मुसलसल में एक वक्फ़े नूर, ये जिंदगी का तिलिस्मय अजीब क्या कहना। तुम जो हो बरक़े नशेमन तो मैं नशेमन बर्क, उलझ पड़े हैं हमारे नसीब क्या कहना। हुजूम रंग फरावा सही मगर फिर भी बहार नौहे सद अंदलीब क्या कहना। हजार काफिले जिंदगी की तीरा शबी, ये रोशनी से उफक के करीब क्या कहना। लरस गई तेरी लौ मेरे डगमगाने से, चरागे गोशे कुए हबीब क्या कहना क्या कहना। ये शेर अपने आप में वक्फे की बहुत बड़ी बात कहता है। रिश्तों की दुनिया में वक्फा एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर दूरी समझकर घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रिश्तों में थोड़ा सा वक्फा उन्हें ताजगी देता है। जैसे एक तस्वीर में खाली जगह उस तस्वीर को उभार देती है, वैसे ही रिश्तों में दी गई थोड़ी सी आज़ादी उन्हें मजबूत करती है। अगर हम हर पल चिपके रहेंगे तो जज्बात की गर्मी खत्म हो जाएगी। इसकी नज़ाकत को आप इस शेर से समझ सकते हैं कि नज़दीकियों में भी थोड़ा सा वक्फा ज़रूरी है, मोहब्बत की सांस लेने के लिए जगह ज़रूरी है। रिश्तों को घुटने से बचाने के लिए कभी कभी एक छोटा सा वक्फा लेने में कोई हर्ज नहीं। और एक ऐसी ही आपको गजल हम सुना रहे हैं जिसका मफहूम है, जिसका कंक्लूजन है कि ये खूबसूरत सी उदासी को समेटे हुए है। ये याद दिलाता है कि जिंदगी में ख्वाहिशें करना जितना आसान है, इस जालिम दुनिया में अपने ही दिल को समझा कर खामोश रखना उतना ही जरूरी और उतना ही मुश्किल।

सब लहू जम गया उबाल के बीच, कौन याद आ गया विसाल के बीच। एक वक्फा है जिंदगी भर का जख्म के और इंदमाल के बीच। आन बैठा है एक अंदेशा गुफ्तगु और अर्ज़ हाल के बीच। ताल देती है जब कभी वहशत, रक्स करता हूँ मैं ख्याल के बीच। कभी मातम मियाँ रक्स किया, कभी सजदा किया धमाल के बीच। एक पर्दा है बेसबाती का आईने और तेरे जमाल के बीच। एक बरस हो गया उसे देखे, एक सदी आ गई साल के बीच। मेरे दामन को धोने वाला है एक आंसू है जो रुमाल के बीच, एक आंसू है जो रुमाल के बीच। जिंदगी में जब हम कभी किसी बड़ी मुश्किल में फंसते हैं तो हमारा पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है तेज भागना। मगर तभी वक्फा लेने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये वक्फा यानी ये थोड़ा सा टाइम लेना हार नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रुकावट है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको वापस से जगाने वाली है। जब आप रुकते हैं तो आपकी सोच साफ होती है और आपके सामने नए रास्ते खुलते हैं। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार भी कई बार होता है। तभी तो मीर तकी मीर साहब ने भी क्या खूब कहा था कि हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। जब दुनिया एक धोखा लगे तो वहां रुककर अपनी असलियत को पहचानना ही वक्फा है। ये ठहराव आपको टूटने नहीं देता, बल्कि संभलने का हौसला देता।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: आपने कभी सोचा है कि एक गजल में शेर के बाद जो वक्फा होता है वही तो उस गजल को मुकम्मल करता है ना? अगर सिर्फ अल्फाज ही हों और खामोशी ना हो तो वो शेर नहीं, बस एक कहानी बन जाएगी। जिंदगी भी वैसी ही है, इसका असली रंग वक्फे में छुपा है। हम इतनी जल्दी में हैं कि हमने मौसम बदलना देखना ही छोड़ दिया। हमने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह नहीं देखी। जब हम रुकते हैं तभी तो जिंदगी का असल खूबसूरती नजर आती है। इसी बात को लेकर इकबाल साहब ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मगर सफर के बीच में जो रुकना है वही आपको अपनी मंजिल के काबिल बनाता है। जैसे आप जो अगली गजल सुनने वाले हैं, दरअसल इस गजल में लगातार सफर और मुश्किलों के बाद इंसान थक जाता है, तब उसे किसी बड़ी कामयाबी या ख्याली चंद सितारों की चाह नहीं रहती, बल्कि वो सिर्फ एक पल के ठहराव और सुकून की तलाश करता है जहां वो अपनी थकान मिटा सके।

ये कुछ बदलाव सा अच्छा लगा है, हम एक दूसरा अच्छा लगा है, समझना है उसे नजदीक जाकर, जिसे मुझसा बुरा अच्छा लगा है। ये क्या हर वक्त जीने की दुआएं, यहां ऐसा भी क्या अच्छा लगा है। सफर तो जिंदगी भर का है, लेकिन ये वक्फा जरा अच्छा लगा है। मेरी नजरें भी हैं अब आसमां पर, कोई महवाए दुआ अच्छा लगा है। हुए बर्बाद जिसके अश्क में हम, वो अब जाकर जरा अच्छा लगा है। वो सूरज जो मेरा दुश्मन था दिन भर, मुझे ढलता हुआ अच्छा लगा है। कोई पूछे तो क्या बतलाएंगे हम, कि इस मंजर में क्या अच्छा लगा है। दोस्तों, वक्फा जिंदगी का दुश्मन नहीं है, एक ऐसा साथी है जो हमें जीना सिखाता है। इस रात के आखिरी हिस्से में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना सीखिए। जिंदगी कोई रेस नहीं जिसे आपको जीतना है, ये एक सफर है जिसे आपको महसूस करना है। तभी तो गालिब साहब ने कहा था कि कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। मुझे उम्मीद है कि आज का ये स्पेशल शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते इसी फ्राइडे स्पेशल में किन्हीं नई बात के साथ हम वापस से हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के बीच का वक्फा जो है, आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला साबित हो।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार श्रोतागण, रात की इस खामोशी में आपका मैं स्वागत नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनमें कदम रखा जाता है लौटने की उम्मीद लेकर नहीं, बल्कि सच जानने की जिद लेकर। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम का लेट नाइट हॉरर शो। आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की नहीं, किसी शमशान की नहीं, बल्कि एक ऐसे अपार्टमेंट की है जहां हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन एक सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आइए धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के उस रात की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है फ्लैट नंबर 1107। एक कैब एक अत्यंत आधुनिक अपार्टमेंट आर्या हाइट्स के सामने रुकती है। ड्राइवर सामान नीचे रखता है और कहता है, मैडम ये है आपका सामान, पेमेंट कर दीजिए। नैना मुस्कुरा के कहती है, थैंक यू। अपना ट्रॉली वाला बैग खींचते हुए गेट की तरफ जाती है। मुख्य गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर आगे बढ़ाता है और पूछता है, नई शिफ्टिंग है मैडम? हाँ जी, आज ही से। गार्ड रजिस्टर देखते हुए देख फ्लैट नंबर पढ़ता है 1107। कुछ पल के लिए रुकता है और कुछ देर तक नैना को देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, वेलकम मैडम। नैना बस मुस्कुरा के अंदर चली जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अंदर से एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई दिखाई देती है। दोनों हल्की मुस्कान का आदान प्रदान करती है। महिला पूछती है, नई आई हो बेटी? जी, कौन सा फ्लैट? नैना कहती है, 1107। महिला की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी 11th फ्लोर का दरवाजा खुल जाता है। महिला बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। नैना थोड़ी देर हैरान होती है, फिर कंधे उचकाकर अपनी फ्लैट की ओर बढ़ जाती है। चाबी से ताला खोलती है। नया घर, खाली कमरों में हल्की सी गूंज। नैना खिड़की खोलती है, बाहर पूरे शहर की रोशनियाँ। वो मुस्कुराती है। नैना धीरे से कहती है, परफेक्ट। श्रोतागण, अगले दो दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। ऑफिस, घर, कॉफी, कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स और देर रात तक लैपटॉप। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद मैं आज आपको ये कहानी सुना भी नहीं रही होती। तीसरी रात थी, दीवार पे घड़ी टिक टिक कर रही थी और मोबाइल स्क्रीन पर 2:42 दिखा रहा था। नैना अभी भी जग रही थी, अपना ऑफिस का काम कर रही थी। वो लैपटॉप बंद करती है, कमरे की लाइट धीरे से ऑफ करती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है। पूरे घर में पूर्ण सन्नाटा और अचानक डोरबेल बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग। नैना तुरंत उठ बैठी है, मोबाइल की ओर देखती है, 2:43। इतनी रात को वो वीडियो डोर स्क्रीन ऑन करती है। कॉरिडोर पूरी तरह खाली, एक भी इंसान नहीं। वो कुछ सेकंड देखती रहती है, फिर दरवाजा खोल देती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कॉरिडोर से सफेद रोशनी दिखाई देती है और दूर से कहीं लिफ्ट बंद होने की आवाज। कोई नहीं। वो बाहर निकलकर दाएं देखती है, फिर बाएं। सन्नाटा, बहुत अजीब बात है, कहके वो वापस अंदर आ जाती है। अगली सुबह लिफ्ट में वही बुजुर्ग महिला एक बार खुद नैना से बात करना शुरू कर देती है। नैना हंसते हुए कहती है, कल रात किसी ने मेरी बेल बजा दी, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं। महिला का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है और धीरे से पूछती है, तुमने दरवाजा खोला था? नैना कहती है, हाँ आंटी। महिला की आंखों में जैसे एक पल के लिए
डर उतर आता है, लेकिन अगले ही क्षण लिफ्ट रुक जाती है। वो जल्दी से बाहर निकल जाती है, एक शब्द नहीं बोलती। उस शाम ऑफिस से लौटते समय गार्ड फिर मिलता है और पूछता है, मैडम सब ठीक है ना? नैना ने पूछा, हाँ हाँ क्यों? गार्ड कुछ सोचता है, फिर धीरे से कहता है, मैडम बस रात में अगर बेल बजे तो पहले स्क्रीन जरूर देख लीजिएगा। नैना हंस पड़ती है, अरे पहले कल तो देखा ही था, कोई था ही नहीं। गार्ड की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो धीमे स्वर में कहता है, जी बस यही तो बात है। नैना को कुछ समझ में नहीं आया, वो अपनी फ्लैट में चली गई। उस रात घड़ी में 2:42 हुए, फिर 2:43, टिंग टोंग, फिर से कॉल बेल बजी। इस बार नैना बिस्तर से नहीं उठी, वीडियो स्क्रीन ऑन करती है। कॉरिडोर फिर खाली, लेकिन स्क्रीन के सबसे नीचे ऐसा लगा मानो किसी के नंगे पैरों की उंगलियां फ्रेम के ठीक बाहर खड़ी हो। नैना स्क्रीन के और करीब जाती है और तभी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। पूरा कमरा सन्नाटा से डूब जाता है और उसी पल बाहर से बहुत हलकी धीमी 3 दस्तक होती है, ठक ठक ठक। नैना बिल्कुल स्थिर हो जाती है, उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती है, लेकिन इस बार डोरबेल नहीं बजी थी। श्रोतागण, अगर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था तो दस्तक किसने दी, और अगर कोई था तो कैमरे में दिखाई क्यों नहीं दिया? इन सवालों के जवाब अगले हिस्से में मिलेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। इस दौरान अगर आपके घर में भी अचानक डोरबेल बज जाए तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। हम जल्दी ही लौटते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, अगर इस छोटे से विराम के दौरान आपने अपने घर का दरवाजा एक बार भी देखा है तो यकीन मानिए आप भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो आपका इंतजार करती हैं। आइए लौटते हैं फ्लैट नंबर 1107 में। कमरे में गहरा सन्नाटा था। नैना दरवाजे के सामने खड़ी थी। बाहर कोई हलचल नहीं। मोबाइल हाथ में वो धीरे से वीडियो स्क्रीन दोबारा ऑन करती है। स्क्रीन चालू होती है। कॉरिडोर एकदम खाली। दरवाजे के ठीक सामने कुछ भी नहीं। नैना धीरे से सांस छोड़ती है। मैं शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। वो वापस मुड़ती है। तभी मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। उसकी दोस्त रिया का मैसेज। जाग रही हो? नैना तुरंत वीडियो कॉल कर देती है। रिया हंसते हुए पूछती है, अरे इतनी रात को कॉल किया? अरे मत पूछो यार, कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। वो पूरी बात बताती है। रिया जोर से हंस पड़ती है। नई जगह है, दिमाग खुद डर बना लेता है। कल छुट्टी ले, आराम कर। दोनों हंसते हैं। नैना का डर थोड़ा कम हो जाता है। अगले दिन ऑफिस। लेकिन पूरे दिन नैना का ध्यान बार बार मोबाइल पर जाता है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम को वो जल्दी घर लौट आती है। इस बार लिफ्ट में सिर्फ नैना है। वो 11 का बटन दबाती है। दरवाजा बंद। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, धीरे से 10th फ्लोर आती है और फिर अचानक लिफ्ट झटके से रुक जाती है। लाइट एक पल के लिए टिमटिमाती है। नैना घबरा जाती है। फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर 10वीं मंजिल का कॉरिडोर पूरी तरह खाली। किसी ने लिफ्ट बुलाई ही नहीं थी। नैना बाहर झांकती है, कोई नहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लिफ्ट फिर चल पड़ती है। 11th फ्लोर, दरवाजा खुलता है। नैना तेजी से बाहर निकल जाती है। उस रात करीब 9 बजे डोरबेल बजती है। इस बार सामने वही बुजुर्ग महिला है, हाथ में चीनी का छोटा सा डिब्बा। सोचा नई पड़ोसन है, मिलती चलूं। दोनों बैठते हैं। थोड़ी देर सामान्य सी बातें होती है। फिर महिला की नजर दरवाजे पर टिक जाती है। वो धीरे से पूछती है, रात में क्या बेल अभी भी बजती है? नैना चौंक जाती है, अरे आपको कैसे पता? नैना कुछ सेकेंड चुप रहती है। फिर धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि तुमसे पहले जो लड़का यहाँ रहता था उसने भी यही बात कही थी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नैना पूछती है, फिर क्या हुआ? महिला गहरी सांस लेती है। एक सुबह वो फ्लैट खाली मिला। सारा सामान जैसा का तैसा मोबाइल टेबल पर रखा था। लैपटॉप चालू था, लेकिन वो लड़का कभी नहीं मिला। नैना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस आई? बहुत बार आई थी, कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी? महिला की आंखें नीचे झुक जाती है। जिस रात वो लड़का गायब हुआ, उस रात 11वीं मंजिल का कैमरा ठीक 2:43 पर बंद हो गया था। महिला अचानक उठ खड़ी होती है और कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। दरवाजे तक पहुंचकर बिना पीछे देखे कहती है, एक बात याद रखना, अगर रात में डोरबेल बजे तो दरवाजा मत खोलना, लेकिन अगर 3 बार दस्तक सुनाई दे। महिला की आवाज कांप जाती है और कहती है, तो बिल्कुल भी जवाब मत देना। ये कह के वो चली जाती है। रात को 2:42 पर नैना अभी तक जाग रही थी। कमरे की सारी लाइट जल रही थी। हाथ में मोबाइल, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। घड़ी पे 2:43 हुए। कोई डोरबेल नहीं। नैना राहत की सांस लेती है। शायद सब खत्म हो गया, अब सब ठीक होगा। तभी बिजली चली जाती है, पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी और उसी पल ठक ठक ठक, इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं थी। वो आवाज नैना के बेडरूम के अंदर लगी अलमारी से आई थी। नैना धीरे धीरे मोबाइल की रोशनी अलमारी की ओर करती है। अलमारी तो बाहर से बंद है, लेकिन अंदर से जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। श्रोतागण, दरवाजे के बाहर का डर शायद झूठ था, लेकिन अगर आवाज घर के अंदर से आने लगे तो इंसान भागे कहाँ। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची भी नहीं है। एक छोटे से संगीत विराम के बाद हम लौटेंगे और शायद उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, अगर अब तक आपने इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझकर सुना है तो अब अपने मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी डर बाहर से नहीं आता, वो आपके अपने घर के भीतर आपका इंतजार करता है। लौटते हैं फ्लैट नंबर 1107 में। बिल्कुल गहरा सन्नाटा है, बिजली अभी भी नहीं आई है, मोबाइल की टॉर्च सीधे अलमारी पर पड़ रही है। इस पर अलमारी के भीतर से एक हल्की सी खरोच की आवाज। नैना की सांसें तेज हो रही है, वो खुद को समझाती है शायद बैठ रही होगी, लेकिन तभी अलमारी का हैंडल धीरे धीरे अपने आप हिलने लगता है। किसी धातु की बहुत हल्की सी खनखनाहट सुनाई देती है। नैना पीछे हट जाती है, उसका हाथ कांप रहा है। अचानक बिजली वापस आ जाती है, पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, अलमारी बिल्कुल बंद, सब कुछ सामान। नैना साहस करके आगे बढ़ती है, धीरे से अलमारी खोलती है, अंदर सिर्फ कपड़े और कुछ भी नहीं। और वो फिर थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराती है, मैं सच में बहुत डरने लगी हूँ। जैसे ही वो अलमारी बंद करती है, उसे आईने में एक क्षण के लिए ऐसा लगता है मानो उसके पीछे कॉरिडोर की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास कोई खड़ा था। वो तुरंत मुड़ती है, वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह नैना सीधे सोसाइटी के ऑफिस पहुँचती है, वो बिल्डिंग मैनेजर बैठा हुआ था। वो पूछती है, मुझे फ्लैट 1107 के बारे में कुछ जानना है। मैनेजर चौंकता है, क्यों, बस जानना है। मैनेजर कंप्यूटर खोलता है, कुछ फाइलें देखता है, फिर कहता है, पिछले 5 साल में इस फ्लैट में 4 किराएदार आए और चारों 6 महीने से पहले ही चले गए। नैना पूछती है, क्यों। मैनेजर ने धीरे से सिर हिलाया, हर किसी ने मैडम अलग वजह बताई, लेकिन क्या, सब ने जाते समय सिर्फ एक शिकायत लिखी थी क्या। मैनेजर स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देता है, हर जगह एक ही पंक्ति लिखी थी, रोज रात 2:43 पर कोई दरवाजे तक आता है लेकिन कैमरे में दिखाई नहीं देता। नैना का गला बिल्कुल सूख जाता है, वो तुरंत पूछती है, क्या पुलिस को बताया गया। मैनेजर मुस्कुराता है, कई बार बताया गया मैडम, फिर उन्होंने पूरे बिल्डिंग के कैमरे बदल दिए, तो क्या उससे कोई फायदा हुआ। मैनेजर खिड़की के बाहर देखने लगता है, कहता है, नहीं, क्योंकि जिस चीज को कैमरा पकड़ ही नहीं सकता उसे बदल कर क्या मिलेगा। उस रात नैना ने एक फैसला किया, आज वो दरवाजा नहीं खोलेगी, वो सिर्फ रिकॉर्ड करेगी। मोबाइल कैमरा दरवाजे की ओर रख देती है, घड़ी में फिर 2:42। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, 2:43। टिंग टोंग टिंग टोंग डोरबेल बजती है, इस बार वो बिल्कुल नहीं हिलती। 10 सेकेंड 20 सेकेंड सन्नाटा, फिर दरवाजे पर ठक ठक ठक 3 दस्तक। लेकिन इस बार उसे लगा ये आवाज दरवाजे से नहीं, ठीक उसके पीछे से आ रही थी, कमरे के भीतर से। नैना धीरे धीरे मुड़ती है, मोबाइल की स्क्रीन पर उसे अपने कमरे का लाइव दृश्य दिखाई दे रहा है। कमरा खाली है, लेकिन स्क्रीन के एक कोने में मानो किसी की छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। नैना घबराकर पीछे देखती है, कमरे में कोई नहीं। वो फिर मोबाइल स्क्रीन देखती है, परछाई अब पहले से और करीब है। दोस्तों, अगर आपकी आंखें कहें कि कैमरे में कोई नहीं है लेकिन कैमरा कुछ और दिखाए, तो आप यकीन किस पर करेंगे? बस अब एक आखिरी दरवाजा खुलना बाकी है और उसके बाद शायद कोई जवाब नहीं बचेगा। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: श्रोतागण, कुछ दरवाजे इसलिए नहीं डराते कि उनके पीछे कौन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वे आखिरी बार खुले कब थे। लौटते हैं फ्लैट नंबर 1107 में। कमरे में घड़ी की आवाज आ रही है और मोबाइल में अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। नैना की नजर एक बार मोबाइल स्क्रीन पे पड़ती है, एक बार कैमरे पर। स्क्रीन में जैसे कोई हल्की सी परछाई उसके पीछे खड़ी हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, कमरा शांत खाली। नैना कांपते हाथों से कैमरा बंद कर देती है। वो कहती है, बस अब बहुत हुआ। वो दरवाजे की ओर बढ़ती है, कुछ पल रुकती है और पहली बार धीरे धीरे दरवाजा खोल देती है। कॉरिडोर पूरी तरह शांत, सफेद रोशनी, लिफ्ट बिल्कुल बंद, कहीं कोई नहीं। नैना राहत की सांस लेती है, धीरे धीरे बाहर निकलती है। इसी दौरान उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। वो ठिठक जाती है। कॉरिडोर की धूल पर गीले पैरों के निशान बने हैं, लेकिन वे बाहर से अंदर नहीं आ रहे। वे फ्लैट 1107 के भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं। नैना की सांसें रुक जाती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपने घर के अंदर देखती है। कमरा पहले जैसा खामोश, लेकिन अब उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद जिसे वो बाहर ढूंढ रही थी, वो कभी बाहर था ही नहीं। सुबह नैना बिना किसी से कुछ कहे फ्लैट छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद ब्रोकर नए किरायेदार को वही घर दिखा रहा था और हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया फ्लैट है सर, खुला खुला, हवादार, और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल शांत। नए किरायेदार खुशी से मुस्कुराते हैं। दरवाजा खुलता है, परिवार अंदर चला जाता है। दरवाजा बंद, जिंदगी फिर थोड़े दिनों के लिए सामान्य हो जाती है। श्रोतागण, समय बीतता गया, लोग बदलते गए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। 11वीं मंजिल के कुछ पुराने निवासी आज भी लगभग रात के 2:30 बजे अपने दरवाजे की कुंडी एक बार जरूर देख लेते हैं। कोई वजह नहीं बताता, बस आदत कह के मुस्कुरा देते हैं। इस कहानी में आपको शायद कोई भूत नहीं मिला, कोई चेहरा नहीं मिला, कोई नाम नहीं मिला, लेकिन शायद यही इसकी सबसे डरावनी बात है। जिन चीजों का चेहरा नहीं होता, वो याद सबसे ज्यादा रहती है और सबसे ज्यादा डराती है। अब इस कहानी का एक आखिरी सवाल है। जब भी रात में डोरबेल बजती है, हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि बाहर कौन होगा। लेकिन अगर किसी रात आप दरवाजा खोलें और बाहर कोई भी ना हो, तो लौटते समय एक बार अपने घर के फर्श पे जरूर देखिएगा, कहीं पैरों के निशान बाहर की ओर तो नहीं जा रहे। मैं चलती हूँ। अगली शुक्रवार की रात ठीक 10:30 बजे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ 89.6 FM पर। तब तक अपना ख्याल रखिए।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाए उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया। 1995 था जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाए ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाए की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाए भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाए को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में तो करती लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती है। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाई के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं